संताप औ हट पट्टण में है भी क्या करे सो अवतूती सेवपुर चढ़े बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्द करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े न कंध बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो पाखंडी जे काया पखाली काया की अगन ब्रह्म पर जाली सुपने बिंद न दे झरना तिस पाखंडी जरा न मरना बोले चरपट सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मह रूपै थम अहनस अंतर रह ध्यान

जाय काहे भीखिया मंगण जाय पौड़ी हर मंदिर सोई आखी है जिथों हर जाता मानस दे गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता बाहर मूल ना खोजी घर माहे बधाता मनमुख हर मंदिर की सार ना

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाण सदा दुख दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खुहु केहु संयम करना, गुरमुख हो सो करे विचार उस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे उस पिछे डुब दे पी तरना, नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता हुसी आए तई, आवन जान ना सुजई पीड़ी गली फही। कूड़न खुटे नानका ओड़क सच रही, पौड़ी हर का सब शरीर है हर रब रहया सब आपे। हर की कीमत ना पवे किस कहन ना जापे, गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापे। सब मन तन हरिया होया अहंकार गुआपे, सब किस हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई। श्लोक महला पहला सहंसर दान दे इंद्र रोआया, परशुराम रोवे घर आया अजय सो रोवे भीख्या खाए। ऐसी दरगाह मिले सजाए रोवे राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया रोवे दह सिर लंक गवाए। जिन सीता आंदी दौरू वाए रोवे है पांडव पये मजूर, जिनकै स्वामी रहत हदूर रोवे जनमेजा खोए गया। एकी कारण पापी भया रोवे है सेख मसाइक पीर, अंतकाल मत लागे भीड़ रोवे है राजे कन पड़ाए। कर कर मांग है भीख्या जाए रोवे है किरपन संच है धन जाए। पंडित रोवे है ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जन जाए औरी कर्म ना लेखे लाए। महला दूजा जप तप

काया हंस तुर मेल करता लिख पाया, सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरै गुण माही सुमाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया। सब किसे आपे आप है आपे दे वड़ियाई, श्लोक महला दूजा नानक अंधा होए कै रत्ना।

तेरी गुथली रतनी खोली आई वखर तै बणजारिया दुहां रही समाई जिन गुण पल्ले नानका माणिक वणजह से रतना सार ना जाननी अंधे बतह लोए पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखीजै बज्र कपाट ना खुलनी गुर शब्द खुलीजै अनहद वाजे धुन वज दे गुर शब्द सुनीजै तित घट अंतर चानना कर भगत मिलीजै।

तिन को सतगुरु मिलिया जिन्ना तुरे पया परवाना महला पहला साहिब मेरा उजला जे को चित करे नानक सोई सेवी है सदा सदा जो दे नानक सोई सेवी है जित सेवै दुख जाय अवगुण वंजन गुण रवह मन सुख वसै आय पौड़ी आपे आप वरतदा आप ताड़ी लायन आपे ही उपदेश दा गुरमुख पतियायन एक आपे उजड़ पायन एक भगती लायन जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे नाए लायन नानक नाम त्याई है सच्ची वड्याई शुद्ध राम कली की वार महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पंजवा जैसा

जन नानक सो प्रभ सेविया तिस जेवड़ अवर ना कोई पौड़ी देवन हार दतार कित मुख सलाहिय जिस रखै कृपा तार रिजक समाहिय कोई ना किस ही वस सबना एक तार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा अनद बनोद किशु ना जानिए सर्ब धार समरथ हो तिस कुरबाणी है गाय रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा लहुड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवा बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो भवजन तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै जिसे जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै सलोक महला पंजवा धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए जो रते रंग गोविंद कै हो तिन बलिहारै जाउ आखा बिरथा जी की हर सज्जन में लोहराए गुरपूरै मेलाया जन्म मरण दुख जाए जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाए महला पंजवा तन सो वेला घड़ी तन तन मूर्त पल सार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलिया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौ बलिहारी तिन जे खसम है पाणिया सलोक महला पंजवा हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सजनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसते मुह मैला करै ना भंग जाने बिरता जी की कदे ना मोड़ै रंग हर इको मेरा मसलती पन्नन कर्ण समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक तर कै हाथ
वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग महला पंजवा मन मुखा केरी दोस्ती

उबरे जो सतगुरु सरन परे पौड़ी जो रते दीदार से सच हाक जिन्नी जाता खसम ज्यों लभे तिना खाक मन मैला वेकार होए संग पाक दिसे सच्चा महल खुले भरम ताक जिसे दिखाले महल तिस ना मिले ताक मन तन हुए निहाल बिंदक नदर झाक नौ निद नाम निदान गुर कै शब्द लाग किसे मिले संत खाक मस्तक जिसे भाग सलोक महला पंजवा हरनाखी कु सच वैन सुनाई जो तव करे उदाहरण सुंदर बचन तुम सुनो छबीली फिर तैढा मन साधारण दुर्जन सेती निहुर चायू

लाई तहों लगी तू सुन सच संदेशा साई सुहागण साई भागण जय फिर कृपा धारी फिर औगण तिसके सब गवाए गल सीती लाए सवारी कर्महीन धन करे बेनंती कद नानक आवै वारी सब सुहागण मान है रलिया एक देव हो रात मरारी महला पंजवा काहे मन तू डोलता हर मन सा पूर्ण हार सतगुर पुरख त्याए तू सब दुख वसारन हार हर नामा आराध मन सब किल विख जाहे विकार जिनको पूर्व लिखिया तिन रंग लगा निरंकार उन्नी छड़िया माया सुआवड़ा धन

सुवारिया जिस तू आवह चित्त सो परवान जन जिस तू आवह चित्त बहुता तिस धन जिस तू आवह चित्त सो वड परवारिया जिस तू आवह चित्त तिन कुल उधारिया। सलोक महला पंजवा अंदरो अन्ना बारो अन्ना कूड़ी कूड़ी गावे देही तो वै चक्र बनाई।

जनो नाम कर्म हो जुगता तोह कुटे क्या फल पावे हंसां विच बैठा बग न बणी नित बैठा मच्छी नो तार लावे जां हंस सुभा विच

साहि सब सैनु कृपाल सुमाली साहि साहि बिरथा कोई न जाय जे आवे तुदयाहि। श्लोक महला पंजवा दूजा तिस न बजायो पार ब्रह्म नाम देहो आधार अगम अगोचर साहिबो समरथ सच दातार तू निश्चल निर्वैर सच सच्चा तुद दरबार कीमत कहन ना जाइए अंत ना पारावार प्रभ छोड़ होर जे मंगना सब बिखिया रस शार से सुखिए सच साहसे जिन सच्चा व्यवहार जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार नानक एक अर

ना तू आवह वस बहुता दान दे सब को तेरे वस अगम अगोचरा तू भगतां कै वस भगतां तान तेरा। श्लोक

होगा हरख आनंद हुक्मी जपे निरोधर गुरमंद हुक्मी आवन जान रहाई नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौ तिस ढाडी बलिहार जे गावे गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार ओह ढाडी तुद त्याई कलाने दिन रैनार मंगै अमृत नाम ना आवै कदे हार कपड़ भोजन सच रहंदा लिवै धार सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो हो सच्चा यह सुआओ। जन्म पदार्थ सफल होए मन में लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजे दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुरपूरा मत दे। भाणे जप तप संयम भाणे ही काढ ले। भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे। भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे। भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे।

कोई जाचक सदा जाचो है महला पंजवा देह सजंदड़ी ऊण मचूणा गुर सज्जन जियो तराया हब्बे सुख सुहेलड़ा सुता जिता जग सवाया पौड़ी वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुध तखत सिर शाह पातशाह निश्चल चौर छत जो पावे पार ब्रह्म सोई सच न्याऊ जे पावे पार ब्रह्म

मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली महला पंजवा हठ मंजाहू मैं मानक लद्दा मुल ना किदा मैं कू सतगुर दिता ढूंढ वजाई थिया थिता जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिसका मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुरमिल कमल परगासिया सुवन दिन जागा लगा रंग चरनार बिंद सब भ्रम पौ भागा आत्म जिता गुरमती आगंजत पागा जिसह त्याया पार ब्रह्म सो कल मह तागा साधु संगत निर्मला अठ सठ मज नागा जिस प्रभ मिलिया आपना सो पुरख सुभागा नानक तिस बलिहार ने जिस एवड भागा।

ज्ञान में लो, गुर का शब्द गुड़ की नरे, तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दीन रे, कोई है रे संत सहज सुख अंतर, जाको जप तप देव दलाली रे, एक बूंद पर तन मन देवो, जो मद दे कलाली रे, रहाओ पवन चतर दस पाठी कीनी, ब्रह्म यगन तन जारी रे, मुंदरा मदक सहज धुन लागी, सुखमन पोचन हारी रे, तीर्थ बरत नेम सुच संयम, रव सस गहन देओ रे, सुरत प्याल सुधा रस अमृत, एहो महारस पेओ रे, निचार धार चोवै अत निर्मल, एह रस मनुआ रातो रे, कह कबीर सगले मद छूछै, एह महारस साचो रे, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ, पौ पाठी मन धारा, सुख मन नारी सहज समानी, पीवै पीवन हारा, औधू मेरा मन मतवारा, उन मद चढ़ा मदन रस चाखिया, त्रे भवन भया उजियारा रहाउ, दोए पुर जोर रसाई पाठी, पियो महारस भारी, काम क्रोध द्वे किए जलेता, छूट गई संसारी, प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, सतगुर ते सुध पाई, दास कबीर तास मत माता, उचक ना कबहू जाई, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी।

कै कर जानी हम निर धन ज्यो एहो धन पाया मरते फूट गमानी करै गमान चुभ है तिस सूला को काढ़न को नाही अजै सो चोभ को बिलल बलाते नरके घोर पचाई कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो रादे हम काहू की कान ना कटते अपने गुर पर सादे अब तो जाए चढ़े सिंघासन।

जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाउ बुद्ध बेपूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी।

जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावले धर्म तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाऊ भगत नहीं साधी रहा पर तन परती निंदा पर अपवाद ना छूटै आवा गवन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

जाहि पलाई, जे सिमरन तुझ पूहै ना माई। सिमर सिमर हर हर मन गाइए, एहो सिमरन सतगुर ते पाइए। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास। जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइए संयोग। जेहे सिमरन नाही तुझ भार,

कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदच बंदन पाया मुक्त गुर अनल बुझाया जब नक सिख इहो मन चीना तब अंतर मज्जन कीना।

भी आकाश मदे परम यले पंच जना स्यों बात बतौआ चीत सो डोरी राखी अले मन राम नामा वेदी अले जैसे कनक कला चित मांदी अले रहाव आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखी अले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखी अले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडी अले अंतर बाहर काज विरुद्धी चीत सो बारक राखी अले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कबित न गावो गो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावो गो बैरागी रामह गावो गो शब्द अतीत।

घर दूजा बनारसी तप करै उल्ट तीर्थ मरै अग्न दह काया कल्प कीजै असमेध जग कीजै सोना गर्भदान दीजै राम नाम सर तऊ ना पूजै छोड़ छोड़ रे।

जो गोदावर जाइय, कुंभ जो केदार नहाइय, गोमती सहस गऊदान कीजै, कोट जो तीर्थ करै, तन जो हिवाले।

हारी असुर नदी का बंदे मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजर जरे सोन झर झरे जगन्नाथ स्यों गोष्ट करे चौ मुख जीवा ज्योत द्वार पल्लू अनत मूल बिचकार सर्ब कला ले आपे रह मन मानक रतना मह गुह मस्तक पदम द्वालय मणि माही निरंजन त्रे पवन धनी पंच शब्द निर्माल बाजे ढुलके चवर शंख कन गाजे।

जप अहन सुनाम हरि कोट कोट दुख बहु कीने सब पर हर पास तरी रहाउ हर हर नाम जपह आराध सेवक भाई खरे किल बिख दुख गए सब नीकर ज्यों पानी मैल हरे खिन खिन नर नारायण गावह मुख बोलह नर नर हरे पंच दुख असाध नगर मह एक खिन पल दूर करे वड भागी हर नाम त्यावह हर के भगत हरे तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों मैं मूड मुग्ध निस्तरे किरपा किरपा धार जग जीवन रख ले वो सरन परे नानक जन तुमरी सरनाई हर राख हो नाज हरे नट महला चौथा राम जप जन राम नाम रले राम नाम जपियो गुरबचनी हर धारी हर किरपले रहाउ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन कै बल बलले पुरखोत्तम हर नाम जन गायु सब दालद दुख दलले विच देही दुख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई ज्यों देखै सस कमले उनवै कन कन कन हर गरजै मन बिगसै मोर मुरले हमरै स्वामी लोच हम लाई हम जीवह देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाई हर मेल हो आनंद भले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम त्यायु हम सतगुर चरण पखे रहाउ उत्तम जगन्ना जगदीश्वर हम पापी सरन रखे तुम वड पुरख दीन दुख भंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सखे।

अवगणियारी पाथर भारी हर तारी संग जनखे जिनको तुम हर राखो स्वामी सब तिनके पाप क्रिखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारी हर नखे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीश्वर हर त्यायो जन

मालक स्वामी हमरा कोह बड़ पाप गे तुमरी संगत हर को ना उधरेओ प्रभ किए पतत पवगे गुण गावत शीपा दुष्टारेओ प्रभ राखी पैज जनगे जो तुमरे गुण गाव है स्वामी हौ बल बल बल तिनगे भवन भवन पवित्र सब किए जह धूर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम तुम वड वड पुरख वडगे।

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाउ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानहु हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानहु प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेतियो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन काल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्याव है हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सलल सलल उठ है बहु लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौर देवस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांछ है हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पगरे नरवाल सब दाल पांच दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रहु हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आवते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद भये हर आवते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले भये गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कलयुग विच उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण।

मन प्यास बहुत दरसावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद त्यावे। कमन योग कमन ज्ञान।

सुख पायो। हर गुण सद ही गावे, देखियो अचरज महामंगल रूप, किस आन नहीं दिसटावे। कहो नानक मोर्चा गुर लाहियो, तह गर्भ जोन कह आवे। नट नारायण महला पंजवां दुपदे,

जम की त्रास मिटी सुख पाया, निकसी हो मैं पीर रहाउ, तप्त बुझानी अमृत बानी, तृप्ते ज्यो बारक खीर, मात पिता साजन संत मेरे, संत सहाई वीर, खुले ब्रह्म पीत।

जन कै संग बस्यो मन ते नाही बसारियो रहाउ वर्ण चिन्ह नाही किश पेखियो दास का कुल ना बिचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुपाए सुवारियो महा बिखम अग्न का सागर तिस ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुनः पुनः बलिहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहियो कोट अपराध मिट है खिन पीतर ताका दुख न रहियो रहाउ खोजत खोजत भयो बैरागी साधु संग लहियो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गहियो कहत मुकत सुनते निस्तारी जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद पयो नट महला पंजवा चरण कमल संग लागी डोरी सुख सागर कर परम गत मोरी रहाउ अंचला गहायो जाने अपने को मन बीतो प्रेम की खोरी जस गावत भगत रास उपजियो माया की जाली तोरी पूर्ण पूर रहे कृपा निद आना पेखो होरी नानक मेल लियो दास अपना प्रीत ना कबहू थोरी नट महला पंजवा मेरे मन जप जप हर नारायण कबहू ना बिसरहो मन मेरे ते आठ पहर गुण गायन रहाउ साधु तूर करो नित मज्जन सब किल बिख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समा

काल उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दर्शन हाल नाटक।

मंदिर पाया, हर हर नाम उरतारी, हर हर कथा बनी अत मीठी, ज्यों गूंगा गटक संहारी, रसना साध चखे पाए दूजे, हत फीके लोभ बिकारी, जो गुरमुख साध चखे है राम नामा, सब अनरस साध बिसारी, गुरमत राम नाम धन पाया, सुन कहतियां पाप निवारी, धर्म राय जम नेड़ नाया।

दीन प्रभ सरनी मोको हर जन मेल प्यारी नानक दासन दास कहते हैं हम दासन के पनिहारी नाट महला चौथा राम हम पातर निर्गुण यारी कृपा कृपा।

दहलिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन सम्हारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिए संक उतारी सतगुर मिले परम पद पाया हौं सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवै जम काल खड़ा सिर मारी उगवै दिनस आल जाल संभालै बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिख सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़ै के खलवारी साकत नार सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख कर्ज चढ़िया बिख भारी उतरै शब्द विचारी जितने कर्ज कर्ज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर अपाई नख खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खींच

गुर सरल प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए फकर चलायो, कर ऊपर कढ निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत अतनीके, मन श्रद्धा कर हर तारे, मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भावे।

सब एका नदर निहारी, हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई, सब चेरी जगत समारी, आप दयाल दया दान देवे, विच पाथर कीरे कारी, अंतरवास बहुत मुचकाई, प्रम पूला मिर्ग सिंगारी।

जन मान प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए।

आप निस्तारी नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी रहाउ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोह कहो हर गुर मेल सवारी साकत कर्म पानी ज्यो मथी है नित पानी झोल चुलारे मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारी नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारी मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारी मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारी गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुर अलख लखारी नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन भारी श्रद्धा श्रद्धा अपाई मलाई मोको हर गुर गुर निस्तारी पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको।

मन धीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग भृंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत सबल है देही गुर सतगुर।

सतसंगत गुर निस्तारी, प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारी, मेर समेर मोर बहु नाचे, जब उनवै कन कन हारी, साकत को अमृत बहु सिंचो, सब डाल फूल बिस्कारी, ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती, छेड़ छेड़ कड्डे बिख खारी, संतन संत साध मिल रही है, गुण बोले है पर उपकारी, संते संत मिले मन बिगसे, ज्यो जल मिल कमल सवारी, लोभ लहर सब सुवान हलक है, हलकियो सबह बिगारी, मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारी, राख राख राख प्रभ मेरे, मैं राखो कृपा तारी, नानक मैं तारी।

प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अघम अगम अगाद बोध अदेश हर प्रबराया रहाउ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो

ठाकुर हर गुरमति प्रब पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हार।

राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाउ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुरमत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म वधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाईए बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिव लायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागियां नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गाली है, ज्यों लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो, हर राम नाम मैं रहो लागो।

तज हर हर नाम गोपाला। मेरा मन तन लीन भया राम नामे, मत गुरमत राम रसाला रहाऊ। गुरमत नाम त्याइए हर हर, मन जपिए हर जपमाला। जिनकै मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला। जिन हर नाम त्याया तिन चूके सर्ब जंजाला। तिन जम नेड़ ना आवई गुर राखे हर रखवाला। हम बारक किशु ना जानहू हर मात पिता प्रतपाला। पर माया अगन नित मेलते गुर राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किल बिख हर जस जाला। मन अंध भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा मेरे मन हर भज सब किल बिख काट। हर हर उरतार्यो गुरपूरै मेरा सीस कीजै गुरवाट रहाउ। मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावै तिस मन देवो कट काट। हर साजन मेलियो गुरपूरै गुरबचन बिकानो हट हाट। मकर पराग दान बहु किया शरीर दियो अध काट। बिन हर नाम को मुक्त ना पावै बहु कंचन दीजै कट काट। हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट। त्रिकुटी फोर भरम पौ भागा लजपानी मटकी माट। कलयुग गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिख।

सदा सुख पाइए जीवन का मूल रव रहे सरबत ठाई सुख मोह असथूल आल जाल बेकार तज सब।

जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच्छल सदा सदा कृपाल रहाउ आदि अंते मद तू है प्रभ बिना नाही कोई।

ते आए। गज हस्ती के प्राण उधारी अले, दुःशासन की सभा द्रौपदी, अंबर लेत उबारी अले, गौतम नार अहल्या तारी, पावन केतक तारी अले, ऐसा अधम अजात नाम देव, तौ शरणागत आई अले, सब है कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे रहाओ, एकल माटी कुंजर चीती, भाजन है बहु नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम।

सलाही है जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा इन तन की ते भोग वे जोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करता लेख लिखाया लिख दात जोत वड़ियाई मिल माया सुरत गवाई मूर्ख मन काहे कर सहमाना उठ चलना खसमै भाणा रहाऊ तज साध सहज सुख होई घर छड़ने रह ना कोई किस खाजै किस धर जाइयै जे बहुड़ दुनिया आइयै सज काया पट हंडाई

मारू महला पहला कर पहला करनी कागद मन मसवाणी बुरा पला दुहे लेख पई ज्यो ज्यो किरत चलाए त्यों चलिए तौ गुण नाही अंत हरे।

निर्मल मुजार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे पद्मन जावल जल रस संगत संग दुख नहीं रे दादर तू कबह न जानस रे पक्षस बाल बसस निर्मल जल अमृत ना लक्ष रे रहाउ बस जल नेतना वस्त अलियल मेर चचा गुण रे चंद कुमुंदनी दूरों निवसस

ना छोड़स किसन प्रीत ज्योरे पंडित संग वसह जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कबहु ना छोड़स स्वान पूछ ज्योरे एक पाखंडी नाम नाराच है एक हर हर चरण।

होकर पतत पनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

किस्सा एही, बिन दर्शन कैसे रहूं सनेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाऊ सभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना। जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई।

जाई, ना यह धन डूबै ना इस धन को मिलै सजाई। इस धन की देखो वडियाई, सहजे माते अन दिन जाई। एक

अजर गहो जार लै अमर गहो मार लै प्रांत तज छोड़ तौ अप्यो पीजै मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है उड़ै नह हंस नह कंध सीजै भणत नानक जनो रवै जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पीजै मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है।

दर ढोई झूठा आवण जान साचा नाम सलाही है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांझी है बहुड़ न मैला होए जब लग साहिब मन वसै तब लग बिघन न होए नानक सिर दे छुटी है मन तन साचा सोए।

सहसा तोड़े परम चुकाए, सहजे सिफती तनख चढ़ाए। गुर कै शब्द मरे मन मारी, सुंदर जोगा तारी जियो। हम है जलिया मनो विसारी,

जा चूकै मन अभमाना तास तास धर्म राय जपत है पए सच्चे की सरना मारू महला।

गुर कै शब्द त्याए तू सच लगी प्यार रहाओ ऐथे नाम भुलिया फिर हाथ कथाऊ ना पाए जोनी सब पवाईयन बिष्टा माहे समाए वडभागी गुर पाया पूर्ब लिखिया माए अनदिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मनाए आपे सिष्ट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडियाईया जय पावै तैं दे मारू महला तीजा पिछले गुनाह बख्शाए जियो।

पियो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परी दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरी।

गण गंधर बीज पियो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपियो मुख हर हर नाम जपिया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपिया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसिया ते गुरमुख पार पया अंत तरंगी नाम जिन जपिया मैं गणत ना कर सकिया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया।

सुगुण सुजानी जन नानक शरणागती कर कृपा नाम सुमानी मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदायु पुजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख गुर पूरै हर पाया हलत पलत पत राख रहाउ हर हर नाम त्याई है हर कीरत गुरमुख चाख तन धरती हर बीती है विच संगत हर प्रभ राख अमृत हर हर नाम है गुरपूरै हर रस चाख मनमुख तृष्णा भर रहे मन आसा दह दिस बहु लाख बिन नामै त्रिग जीवन दे विच बिस्टा मन मुख राख ओए आवह जाहे पवाई है बहु जोनी दुर्गंध पाख त्राहे त्राहे शरणागती हर दया तार प्रभ राख संत संगत में

साग हर हर भगत परे पंडहारा गुरमुख राम करे निसतारा जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावै जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा संभाली हर हर नाम जपो मेरे जियड़े।

कर हर का मन मानिया सो सेवक चौ जुग चौ कुंट जानिया जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेख अपने चलता जिस हर राख है तिस कौन मारे जिस करता आप छडाई दियो हम अन दिन नाम लई करतारी जिन

सो सुखिया सो सदा सुहेला, जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ। देह धार अर देवा दर्पह, सिद्ध साधक डर मोया। लख चौरासी ही मर मर जन्मे, फिर जो नी जोया। राजस सातक तामस डरपह, केते रूप उपाया। छल बपरी ये कौला डरपै, आत डरपै धर्म राया। सगल समगरी डरह ब्यापी, बिन डर करने हारा। कहो नानक भगतन का संगी, भगत सोह है दरबारा। मारू महला पंजवा, पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक। हर सिमरत अमरे अटारी, पुत्र हेत नारायण कहियो। जम कंकर मार बदारी, मेरे ठाकुर केते अगणत उदारी। मोहे दीन अल्प मत निर्गुण, परयो सरण द्वारी रहाओ। वाल्मीक सुपचारो तरयो, बदक तरे बेचारी। एक निमख मन माहे अरादेव, गजपत पार उतारी। कीनी रखिया भगत प्रहलाद, हरनाखस नखह बेदारी। विदर दासी सुत भयो पन।

राम नानक ओट हर की लीजै पूजा पसारी मारू महला पंजवां वेतन वेत भ्रमयो बहु भांति अनक।

सुनत भव तरी ता स्यो रंग ना लाभ सरी थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटका।

भोगह तपत थम गल लाय रे नर काय पर ग्रह जाय कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ विकार पात्र गलह बांदी निंद पोट सिराय महासागर समुंद लंघना पार न परना जाय काम क्रोध लोभ मोह व्यापियो नेत्र रखे फिराय सीस उठावन न कबहू मिलई महादुत्तर माय सूर मुक्ता ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाय स्वभावत जैसे बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाय जिस कर्म खुलिया तिस लहया पड़दा जिन गुर पह मन

अखुट भंडार समाया था, चरण चरण चरण गुर सेवे, अघड़ घड़ो रस पाया था, सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खिलाया था, कहो नानक परम गुर खोया, ता हर महली महल पाया था, मारू महला पंजवा, जिसह साज निवाजिया।

परम मन का सतगुर सरणी जाय, कर्म जिस कौ तुरहुं लिखिया सोई कार कमाई, पाओ लागा गोबिंद सिंह काल पाई थाई, खेत मेरे जमिया नखुट न

मुख राग अलापे मन नहीं हर हर गावा हर कसोग लोभ मोह रहत है निर्मल हर के संता।

सब किश जाने मेरे जी का प्रीतम, बिसर गए बकबाया रहाउ दूजा। मारू महला पंजवा, कोट लाख सर्ब को राजा, जिस हृदय नाम तुम्हारा, जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर, से मर जन्म है गावारा। मेरे सतगुर ही पत राख, चीत आवह तब ही पत पूरी, बिसरत रलिया खाक रहाउ, रूप रंग खुशियां मन।

माया रंग बिरंग खिन मह ज्यो बादर की छाया से लाल पये गूड़े रंग राते जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड्याई सुबा नानक खसम प्यारा मारू।

को मात गर्भ में है जिन प्रित पारिया जियो पिंड दे साज सवारिया सोई बधाता खिन खिन जपिया जिस सिमरत अवगुण सब ढकी चरण कमल उरे अंतर तारू बिठिया बन ते जियो उधारू।

सच मूड अज्ञानी काम क्रोध लोभ मद माता कौडी बदले जन्म गवाता अपना छोड़ पराया राता माया मद मन तन संग जाता त्रिशन ना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला पाए ठगौरी आप पलायो नानक किरत ना जाए मटायो पास पंखी।

उठ उठ फिर तावे, मन तन बासना बहुत बिस्थारा, अहम में मूठो बेचारा, अनक दुख अर बहुत सजाई, तां की कीमत कहन ना जाई, प्रभ बिसरत नरक में पाया, तह मात ना बंद ना मीत ना जाया, जिस को

गर्भदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंधकूप ते काढ नहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साद रूप अपना तन तारिया महा अग्न ते आप उबारिया।

पतत उदारन तारन बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई भेटै संत जित हर हरे हर त्याइए मोको कोई ना जानत कहियत दास तुम्हारा एहा ऊट आधारा रहाउ सर्व धारण प्रित पारन एक बिनो दीना तुमरी बिद तुम ही जानो तुम जाल हम।

मोहन अलख अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवां।

लाल अमोला लालू अगह अतोला नामो रहाउ अवगत सिंह मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो पेखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभमानो निचल तिनका ठाणा गुरते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन त्रिपत अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हार।

चेत मन मह हर हर निधाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक तिस संग बीद मारू महला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन भज संग साधु भव सागर उतर है पार मेरे मन नाम हृदय धार कर प्रीत मन तन लाए हर सिउ अवर सगल विसार रहाउ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक।

हाथ महापौजल माहि तुलहु जाको लिखियो माथ डूबे नाम बिन कन साथ करन कारण चेतना आवे देकर राखे हाथ रहाउ साध संगत गुण उच्चारण।

पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो, एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो, मारू अष्टपदियां महला पहला कर पहला।

अठसठ तीर्थ बहु कणा प्रम था के भिखा साचो साहिब निर्मलो मन मान एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए

गाले अवगण पारा मानस दात न होवई तू दाता सारा अगम अगोचर तू तनी

सो पार गुण नहीं, बिन गुण क्यों घर जाओ। सहज शब्द सुख उपजै, बिन भागा तन नाही। जिनकै नाम ना मन वसै,

कार है तुर खसम फुरमाई लाले हुक्म पछाणिया सदा रह रजाई आपे मीरा बख्श ले वड्डी वड्याई आप सच्चा सब सच है।

नानक नाम रखे से निर्मले साक्या रहे समाई मारू महला पहला हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे चीर एहो मन अवगण बांधिया सहो दे शरीर पूरे गुर बख्शाई है सब गुनहा फकीर क्यों रही है उठ चलना बुझ शब्द।

चलना मुख अमृत नाम। मेरे ठाकुर हथ वडियाइया मेल है मन चाओ, कीता क्या सलाही है

खार समुंदर कंडो लिए एक मनिया पावे दोए दिन चार सोहावना माटी तिस खावे गुरसागर सत सेवी है।

थीऐ पारस संग पीजै वन्नी साचे लाल की किन कीमत कीजै पेखी हाथ न लभई तीरथ नहीं दाने पूछो वेद पढ़ंतिया मूठी बिन माने नानक कीमत सो करे पूरा गुरु ज्ञानी मारू महला पहला मनमुख लहर कर तज बगूचै अवरा के कर हेरै ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना भेटै दुर्मत कुमन घेरै दसंतर भवै पाठ पढ़ थाका तृष्णा होए बधेरै काची पिंडी शब्द ना चीनै उधर भरै जैसे ढोरै बाबा ऐसी रवत रवै सन्यासी गुर कै शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते त्रिपतासी रहाओ कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेख पेखारी कापड़ फार बनाई खिंथा चोली माया तारी घर घर मांगे जग प्रबोध मन अंधे पतहारी परम पलाना शब्द ना चीनै जुए बाजी हारी अंतर अगन ना गुर बिन बूजै बाहर कुवर तापै गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीन से आपै निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापै अठ सठ तीरथ परम बगूचै क्यों मल धोपै पापै छाणी खाक बेभूत चढ़ाई

हर पव जल क्यों तरे, गुरमुख नाम निरंजन पाईए, अफरे उपार अफार टरे, रहाऊ ते गुण विसर गए अपराधी, मैं बौरा क्या करूं हरी, तू दाता दयाल सबै सिर, एहन सदात सुमार करी, चार पदार्थ ले जग जन्मिया, सिर शक्ति घर वास तरी।

पावे, इत्युत टूंडत थाक परे, काम क्रोध अहंकार व्यापे, कूड़ कतंब स्यों प्रीत करे, खावे भोगे सुन सुन देखे, पहर दिखावे काल करे, बिन

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे, गुर कै

सोई। सतगुर मिले मरे मंदा होवै ज्ञान बिचारी दियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख कृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु ना पाई कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने घर आया। अंजन माहे निरंजन जाता जिनको नदर तुम्हारी जियो। गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचो गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावे वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फिरे अहंकारी

अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद लाख चौरासी भ्रमते द्राब जन्म अब पायो रे मुंगे तू हो रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या स्यो उर्जायो रहाओ रत्न जवे हर बन जन आयो कालर लाद चलायो जे कर्म है तुद रहना बसना सो कर कीत न आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमुख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान वसारियो एक निमुख नहीं मन लायो पुत्र कलत्तर ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर्जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो भयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारू महला पंजवा कर अनुग्रह राख लीनो भयो साधु संग हर नाम

जिन यो पायो शरण प्रभ की गही गुर प्रसादी प्रभ आरादी जम कंकर किशना कही मोख मुकत द्वार जाके संतरिदा पंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसै मन माहे मृत नरक अस्थान बिखड़े

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह ओचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासत मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान इशनान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण।

तीर महासागर नह व्यापै खिनह उतरियो तीर चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीता।

मित्र सत्धर ना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश पवित्र अपवित्र है।

शंका मान सुपाए अपाए जो निकट आवे सीत ता का जाए आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुपाए चरण सरन सनाथ इहु मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाउ नानक पए प्रभ किरपाल मारू महला पंजवां घर चौथा अष्टपदियां।

टीका हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्रापते जा कह मस्तक भागना कहो नानक तिस सब कि

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ, तुदे आवत मेरा मन तन हरिया। हर जस तुम संग गावना, संत किरपा ते हृदय वासै, दूजा पाओ मिटावना। भगत दया ते बुद्ध परगासै, दुर्मत दुख तजावना। दर्शन भेट तो होत पनीता, पुनरप गर्ब ना पावना। नौ निद रिद सिद पाई, जो तुमरै मन पावना। संत बिना मैं थाओ ना कोई, अवर ना सूजै जावना। मोहे निर्गुण को कोई ना राखै, संता संग सुमावना। कहो नानक गुर चलत दिखाया, मन मदे हर हर रावना। मारू महला पंजवां, जीवना सफल जीवन। सुन हर जप जप सद जीवना रहाउ, पीवना जित मन आगावे। नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख ना लागे। संतोख सदा तृप्तीवना, पहनना रख पत परमेश्वर। फिर नांगे नहीं थीवना, भोगना मन मदे हर रस। संत संगत महलीवना, बिन तागे बिन सोई आनी। मन हर भगती संग सीवना, मातिया हर रस महराते। तिस बहुड़ना कबहू औखीवना, मिलो तिस सर्ब निदाना। प्रभ कृपा

उठ स ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिर परमंता, दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सोहेला पाली है, ग्रह राज मह नरक उदास करोदा, बहु विद वेद पाठ सब सोदा, देही मैं जो रह अलिपता, जिस जन की पूर्ण काली है, जागत सूता परम भगूता, बिन गुर मुक्त न होइए मीता, साध संग टुट है हो बंधन, एको एक निहाली है, कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

भओ मन माही। इस ही मह जिसकी पत राख है, तिस साधु चौर टाली है। जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जो नी फिरना। जो वरताए सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है। जित जित लाभ है तित तित लगना।

सब जनते इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे हस्त अधोत पया उठ चले ज्यों ज्यों औद बिहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दोजक पाए सिर जनहार लेखा मंगै बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन तन छोड़ वंजेसा करन करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुस खुस लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लभ पया खात अंदर

अनाह ध्यान देन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो आपे परखे पूरा तोलो आपे किस ही कस

हे देवानी शब्द सहज रस अंतरमानी आपे मुकत तृप्त वरदाता भगत भाए मन भाई हे आप निरालम गुर गम ज्ञाना।

साहिब सबना सिर भाई मिले भव जाई हे भूले चूके मार्ग पावह आप भलाए तू है समझावह।

त्रिवेणी संगम 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी, आपे राजन पंचाकारी। तख्त बह अगली प्रभ आपे, परम भेद पहु जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुल ना कबहू पुल्ला। आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बहराई है। जिस बख्शे तिस दे वडियाई, सब सहदाता तिल ना तमाई। पर पुर धार रहया ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या सलाही अगम।

गगन जलै पड़कारी मनमुख तके कुंडा चारी बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है साचे हाथ वडाई हे काम क्रोध अहंकार निवारी तस्कर पंच शब्द संघारी ज्ञान खड़गलै मन स्यों लूजै मनसा मन है समाई हे माँ की रकत पिता बिद धारा मूरत सूरत।

जमण मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पहु खाया, तावत राखे ठाक रहाया। कमल बिगास हरे सरस पर,

राती। हर प्रभ संगी पहो ना प्रांति, श्रवण स्रोत रज्जे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मलाई हे। रख रख पैर तरे पौ तरना, जत कत देखो तेरी सरना, दुख सुख देह तू है मन भाव है।

साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई त्रेतै धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी गुरमुख हो सो साच पछाणै मनमुख पचै अवाई हे मनमुख कदे ना दरगाह सीजै बिन शब्द क्यों अंतर रीजै बांधे आवह बांधे जावह सोजी बूझ ना काई हे दया दुआ पर यदि होई गुरमुख विरला चीन कोई दोए पग धर्म धरे।

ठाके कर्म कमाई है, कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न हुई, परपंच कर परमाई है, माया ममता छोड़ी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है, एक जप तप कर कर तीरथ नावे है, ज्यों तुद भावे तिवें चलावे है, हठ निग्रह अपतीज न पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है, कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने ना पाखी, मन

गुरमुख कोट असंख्य उधारी सर्ब जिया जग जीवन दाता निरपहु मैल ना काई हे सगली जाचह गुर पंडारी आप निरंजन अलख अपारी।

फूल न बूझ साच नारी जह दूजह परम पलाई हे गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती।

गुरमुख सुरत समाई है, कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यो वाड़ी ओजाड़ उजाड़ी, नाम बिना किस साधना लागे, हर बिसरे दुख पाई है, भोजन साच मिले।

तन तन अर्प मिले जग जीवन, हर सियों बणत बनाई। प्रभ की गत मित कोई ना पावे, जे को वड्डा कहाए वडाई खावे। साके साहेब तोट ना दाती।

तह पर हर दुख दालद जिन नाही चिंत पराई है। वे जागत रह ना सूते दिसह संगत कुल तारे साच परिसह। कल मल मैल नाही ते निर्मल होए रह भगत लिवलाई।

प्राणी हर जप जप रिजै त्याई हे। छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उशाहाड़ा। साकत कूड़ पचह मन हउमै दोह मार्ग पचह पचाई हे। छोड़ो हो निंदा तात पराई पड़ पड़ दज है शांत न आई। मिल सत संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई हे। छोड़ हो काम क्रोध बुरियाई हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई। सतगुर सरन पर हो ता उबर हो यों तरिय पव जल पाई हे। आगे बिमल नदी अगन बिख चेला तिथे अवर न कोई जियो अकेला। पड़ पड़ अगन सागर दे लहरी पड़ दज्जे।

एकहु करनंदर बिघन नाही गुरमुख तर तारी क्यों पव जल पार लंगाई है। देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अब नास्ती ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखै शब्द रजाई है। ओह निर्मल है नाही अंधियारा ओह आपे तख्त बह।

शब्द कर जाण किसे ही मंदा आख न चले सच खरा सचियारा ही साच बिना दर सिजे न कोई साच शब्द पेंजे पत होई आपे बख्श लए किस भावे हउ मैं गर्भ निवारा ही गुर किरपा ते हुक्म पछाणै।

जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सरवर हम हंस प्यारी सागर मह रतन लाल बहु सारी मोती माणक हीरा हर जस गावत मन तन पीना है हर अगम अगाह अगाध नराला हर अंत न पाइए गुरु गोपाला सतगुर मत तारे तारन हारा मेल लए रंग लीना है सतगुर बाज हो।

अमृत रस पाई जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीनाई काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज बिनोदी उठ चलतै मता ना की नाही श्रिष्ट उपाय रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की नाही नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप में गोत

कर लह चल्लुहु दर्शन पावहु सहज महल्लुहु गुरमुख खोज लह जन पूरे यों समंदर सी चीनाहि प्रभु बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन को समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर मानुहु।

नाही। एक दर सेग है दर्ज बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छडाई। हौ मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलन ना दीना है। सतगुर मिलहो चीनो बेदसाई, जित प्रभ पावो गणत ना काई। हौ मैं मार करहो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीना है। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभु पार उतारी। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा ही। मनमुख अंदले सो जी नाही, आवह जाहे मरह मर जाही। पूर्व लिखिया लेख न मिटई, जम दारे अंध खुआरा ही। एक आवह जावह कर वास न पावह, किरत के बांधे पाप कमावह। अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा ही। फिर बिन क्या तिस धन शिंगारा, पर फिर राती खसम बसारा। ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा ही। प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे, नरक पचह।

अगन बेख चाला अपथ पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा पुर आ राही मस्तक पहार कलर सिर पहारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

मन मुख दाजै पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद ताना नाम जपो सुख साराही सतगुरु तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाई कंडा पाई न गडई मूले जिस सतगुर राखन हाराही खेहू खेहे रलै तन सीजै मनमुख पाथर सैल न पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवताराही माया बिख पोय अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो हो प्रीत ना उपजै भगत रत्ते पतिया राही साकत माया कौ बहुता है।

सतगुरु मिले त मनुआ टेकै, राम नाम बेसरन परेकै, हर तन नाम अमोलक देवै, हर जस दरगाह प्यारा ही, राम नाम साधु सरनाई, सतगुर बचनी गत मित पाई, नानक हर जाप

राम जपहु अंतरगत ध्याने, लालच छोड़ रचहु अपरंपर। यूं पावहु मुक्त द्वारा ही, जिस बिसरै जम जोहन लागै। सब सुख जाहे दुखां पुन आगै। राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

मत खोज लहो घर अपना बहुड़ ना गर्भ मझारा ही सच तीर्थ नावहु हर गुण गावहु तत विचारहु हर लिव लावहु।

जिस को सतगुर मेल मलाई तिस चूका जम पै पाराही पंच तत् मिल काया कीनी तिस महराम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाइय शब्द विचाराही सत संतोख रहो जन पाई।

गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूकै जम का डंड ना कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अफरे ओ पार अपारा ही बिन गुर साकत कहो को तरिया हम मैं करता पवजल परिया बिन गुर पार ना पावे कोई।

गुप्त रहता ही। चार नदी ही अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझै शब्द नराला। साकत दुर्मत डूब बहता जह, गुर राखे हर लिवराता ही। अप तेज वाए पृथ्वी अकासा, दिन मह पांच तत् घर वासा। सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हो मैं प्रांता ही। इह मन पीजै शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टकीजै। अंतर चोर मुहे घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही। दुंदर दूत पूत पिहाले, खिंचो तान करह बेताले। शब्द सुरत बिन आवै जावै,

जम वस किया अंध दुहेला, राम नाम बिन मुक्त ना सूजै, आज काल पच जाता है, सतगुर बाज ना बेली कोई, ऐथे उथे राखा प्रभ सोई, राम नाम देव है कर कृपा, यूं सलले सरल मलाता ही, भूले सिख गुरु समझाई, उजड़ जांदे मार्ग पाई, तिस गुर सेव सदा दिन राती, दुख भंजन संग सखाता ही, गुर की भगत करह क्या प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश ना जानी, सतगुर अलख कहो क्यों लखी, जिस बख्शे तिसह पछाता ही, अंतर प्रेम प्राप्त दर्शन, गुरबाणी स्यों प्रीत सो परसन, अहनस निर्मल ज्योत सुबाई।

बैरागी मन मनसा मार समाता ही सतगुर सेवह से परदाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाता ही मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन तार चक्कर।

अंत न जानी जा को अलख लखाई आपी अकथ कथा बुद्धता हाई जन्मे को वाजह वाधाई सोहे लड़े अज्ञानी गाई जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर साहाई संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

बाल्दी जल निवरै किरपाती आपे जल निध पाएंदा तरत उपाए तरी धर्मशाला उत्पत परलो आप निराला पवन खेल किया सब थाई कला खिंच टहाएंदा भार अठारह मालन तेरी चौर टुले पवन लै फेरी चंद सूरज दुए दीपक राखी सस कर सूर समाएंदा पंखी पंच उडर नहीं धावे।

अनहद वाजै ब्रह्म पौ भाजै सगल व्याप रहया प्रभ साजै सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएं दा आद निरंजन निर्मल सो।

जाने जो किछ करे सो आपन पाने लख चौरासी जी अपाई पाने सहा लवाईंदा जो तिस पावे सो निश्चो होवे मनमुख आप गणाई रोवे।

अटल अडोल अतोल मरारी खिन मैं ताहे फेर उसारी रूप नारे ख्या मित नहीं कीमत शब्द भेद।

कोई, गुर बिन सो जी किना ना होई, साच मिलै सो साचे पाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरो विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे

तुझ ते उपजह तुझ माहे समावह। नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा। मारू महला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा। तरना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज। सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी। ओपत खपत ना आवन जानी खंड पताल सपत नहीं सागर। नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुरग मछ पयाला। दोजक पिस्त नहीं खैकाला नरक सुरग नहीं जम्मन।

तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाईंदा जप तप संयम ना व्रत पूजा।

सुन्नो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई, सुन्ने वर्ते जुग सबाई। इस पद विचारे सो जन पूरा, तिस मिलिए परम चुकाएंदा। सुन्नो सप्त सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे। इत सत सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुड़ जोन ना पाएंदा। सुन्नो चंद सूरज गहनारी, तिसकी जोत त्रे पवन सारी। सुन्ने लख पार नरालम, सुन्ने ताड़ी लाएंदा। सुन्नो धरत आकाश पाए, बिन थम्मा राखे सच कल पाए। त्रे पवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएंदा। सुन्नो खाणी सुन्नो बाणी, सुन्नो उपजी सुन्न समाणी। उत्पुज चलत किया सिर करतै, विस्माद शब्द देखाएंदा। सुन्नो रात दिन सदोह किए, उपत खपत सुखा दुख दिए। सुख दुख ही ते अमर हतीता, गुरमुख निज कर पाएंदा। शाम वेद रिग जुजर अथर बण,

सुनो उपजे दास अवतारा, श्रेष्ठ उपाय किया पासारा, देव दानव गण गंधर्व साजी, सब लिखिया कर्म कमाएंदा, गुरमुख समझै रोग ना होई, ये गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुगा जगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त भया पत पाएंदा, पंच तत् सुनो परगासा, देह संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा भला दोए मस्त कलीखे, पाप पुन भी जाएंदा, उत्तम सतगुर पुरख निराली, शब्द रत्ते हर रस मतवाली, रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए, पूरे भाग मलाएंदा, इस मन माया को नेहो कनेरा, कोई बूझो ज्ञानी करहो नबेरा, आसा मनसा हो मैं सहसा, नर लोभी कूड़ कमाएंदा, सतगुर ते पाए विचारा, सुन समाद सच्चे घर बारा, नानक निर्मल नाद शब्द धुन, सच रामै नाम समाएंदा, मारू महला पहला, जह देखा तह दीन दयाला, आए न जाई प्रभ कृपाला, जिया अंदर जुगत समाई, रहो निराल मराया, जग पिसकी छाया जिस बाप ना माया, ना तिस भैन ना भ्राउ कमाया, ना तिस उपत खपत कुल जाती, ओह अज रावर मन पाया, तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला, सत संतोख शब्द अत सीतल, सहज पाए लिवलाया, त्रै वरताए चौथे घर वासा, काल बिकाल किए एक ग्रासा, निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन, गुर अनहद शब्द दिखाया, उत्तम जन संत भले हर प्यारी, हर रस माते पार उतारी, नानक रेण संत जन संगत, हर गुर प्रसादी।

अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो घर अपना हर आत्म राम नाम पाया सर्व निरंजन पुरख सुजाना अदल करे गुर ज्ञान समाना काम क्रोध लै गर्दन मारी हमें लोभ चुकाया सच्चे थान वसे निरंकारा आप पछाण शब्द विचारा सच्चे महल निवास निरंतर आवन जान चुकाया ना मन चले ना पौन उड़ावे जोगी शब्द अनाह दवावे पंच शब्द चुनकार नरालम प्रभ आपे वाहे।

डराया। दुख भय भंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे काटी जम फासी। नानक हर प्रभ सो पौ भंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया। काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाणे। आपे जाने आप पछाणे, सब तिसका चोज सबाया। आपे साहु आपे वणजारा, आपे परखे परखणहारा। आपे कस कस वट्टी लाए, आपे कीमत पाया। आप दयाल दया प्रभ तारी, घट घट रब रहया बनवारी।

कुल निरंजन गाया हम अमित शब्द सुख हुई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरहो पव जल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा मन हर जप पार लंघाया हूं मैं ममता लोभ बनासन नौ दर मुक्ते दसवै आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिने आपे आपे उपाया गुरमत लेव हर लिव तरिया।

सरना सच गुरु शब्द जितै लग तरना कथ कथै देखै अपरंपर हुन गर्भ ना जोनी जाया सच बिन सत संतोख ना पावे बिन गुर मुक्त न आवे जावे मूल मंत्र हर नाम रसायन कहो नानक पूरा पाया सच बिन भवजल जाए ना तरिया यो समुंद अथाह महा बिख भरिया।

चलह अभमानी उपजह बिन सुख पाया उपजह बिन सह बंधन बंदे हम मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जम पुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाईए बिन गुर राम नाम क्यों त्याईए गुरमत ले हो तरो भाव दुत्तर मुक्त पये सुख पाया गुरमत कृष्ण गवर धन तारी गुरमत शायर पाहन तारी गुरमत ले हो परम पद पाईए नानक गुर परम चुकाया।

निवलागी सब त्रे पवन ब्रह्म सबाया अमृत रस पाए तृष्णा पहु जाए अनपहु पद पावे आप गुआए ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दीजै हर जपिया अंत ना पाया अंतर नाम परापत हीरा हर जपते मन मन ते धीरा दुखट घट पौ भंजन पाई बहुड़ जन्म ना जाया भगत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मलाए हर तारे जगत सबाया जिन जप जपे हो सतगुर मतवा के जम कंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पौजल भारत राया एहो पौजल जगत शब्द गुर तरी अंतर की दुबदा अंतर जरी है पांच बाण ले जम को मारै गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुरत बिन आई है जाइए नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे पहाग मलाया निरपो सतगुर है रखवाला भगत परापत गुर गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजै गुर शब्द निरंजन पाया।

नानक गुरमत सो पाया अंतर की गत सत गुर जाने सो निरभउ गुर शब्द पछाने अंतर देख निरंतर बूझे अनत ना मन डोलाया निरपो सो आबे अंतर वसिया अहनस नाम निरंजन रसिया नानक हर जस संगत पाई है हर सहजे सह

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहे पर पूरे, किस नेड़े किस आखा दूरे, गुपत प्रगट हर कट कट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिसको मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाए चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेव हो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगाह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाई, साची दरगाह गत पत पाई, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेव हो सतगुर समुंद अथाहा, पाव हो नाम रतन तन लाहा, बिखिया मल जाए अमृत सर नाव हो, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेव हो संक ना कीजै,

नाम रतन पाया, मनसा मार मन माहि समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

तिस जोहे ना साकै साचे स्यों बन आई हे। तृष्णा यगन जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा। मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वड भागी साचे नाम सदा लिब लागी। अंतर नाम रव्या निह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किने पछाणी। सच्चा शब्द रत्ते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई। सतगुर अपना सद ही सेवह हम मैं विचों जाई हे। गुरते बूझै तां दर सूझै नाम मिहूणा कथ कथ लूझै।

ना किशु ना सूजै। गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द बजाई हे। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई ना मेटै तुर फुर माया। सत संगत मह तिन्ही वासा, जिनको तुर लिख पाई।

भागै अंतर शब्द सदा सुख दाता गुरमुख बूझै कोई है। आपे मेले मेल मलाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए आन दिन भगत करे दिन राती।

बार तृष्णा अग्न निवारी शब्द चीन सुख होई है। काया कुटंब मोह ना बूझै गुरमुख होवै ता आखी सूझै अन दिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है। मनमुख तात दूजे है लागा जनमत की नाम वो अभागा।

हंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई हे। शब्द मरे सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा। काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवे पाए सुपाई हे। पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाए। बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए पढ़ था के शांत ना आई हे। एक भस्म लगाए फिर भेख तारी बिन शब्द हुमै किन मारी। अन दिन जलत रह दिन राती परम पेख परमाई हे। एक ग्रह कटम मह सदा उदासी शब्द मोए हर नाम निवासी। अन दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई हे। मनमुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

आई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते नंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझै, भगत पाए पहु जाई है। इस नान दान करह नहीं बूझै,

जासी दूजै भाए बहादा जम फासी सतगुर राखे से गन उबरे साचे साच समाई हे आपे करता कर कर वेखै जिसनो नदर करे सोई जन लेखै गुरमुख ज्ञान तिस सब किस सूजै अज्ञानी अंध कमाई हे मनमुख सहसा बूझ ना पाई मर मर जम्मै जन्म गवाई गुरमुख नाम रते सुख पाया सहजे साच समाई हे धंदै धावत मन भया मनूरा फिर होवै कंचन भेटै गुरपूरा आपे बख्श लए सुख पाए पूरै शब्द मलाई हे दुरमत झूठी बुरी बुरियार औगण यारी औगण यार कच्ची मत फीका मुख बोलै दुरमत नाम ना पाई हे औगण यारी कंत ना पावै मन की झूठी झूठ कमावै फिर का साहु ना जाने मूरख बिन गुर बूझ ना पाई हे दुरमत खोटी खोट कमावै शिंगार करे फिर खसम ना पावै।

मेहरवान मधसूदन जिस दा हुक्म ना मेटिया जाई सेवड भागी जिनी एको जाता घट घट वस रहा जग जीवन दाता एक थै गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख ब्रह्म पौ जाई हे गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता जिस तू देहे सोई जन पाए नानक नाम वडाई हे मारू महला तीजा सच सलाही गैर गंभीर है सब जग है तिस ही कह चीर है सब कट भोगवै सदा दिन राती

बिनसै तहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूजै जिस अंतर नाम नवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम भोजन सच आधारा सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी है हों तिन बलिहारी जो साचै लागे हर गुण गावे अन दिन जागे साचा सूख सदा तिन अंतर रसना।

सब सच दिखाया, सच्चै नाम निवासी हे, ब्रह्म ब्रह्म जोनी फिर फिर आया, आप भूला जा खसम भुलाया, हर जियो मिलै ता गुरमुख बूजै, चीनै शब्द अबनासी हे, काम क्रोध भरे हम अपराधी, क्या मुँह लै बोलहै, ना हम गुण ना सेवा सादी।

एहो मन भीजै ही माया लहर शब्द निवारी। एहो मन निर्मल हो मैं मारी सहजे गुण गावै रंग राता।

निरारी गुरमुख ज्ञान एको है जाता अन दिन नाम रवीजै ही वेद पढ़ै हर नाम ना बूझै माया कारण पढ़ पढ़ लूझै अंतर मैल अज्ञानी अंदा क्यों कर दुत्तर तरीजै ही वेद बाद सब आख बखान है ना अंतर पीजै ना शब्द पछाण है पुन पाप सब वेद दिरड़ाया गुरमुख अमृत पीजै ही आपे साचा एको सोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक नाम रते मन साचा सचो सच रवीजै ही मारू महला तीजा सच्चा सच्चा तख्त रचाया निज कर वस्या तिथे मोह न माया सद ही साच वस्या घट अंतर गुरमुख करनी सारी हे सच्चा सौदा सच वापारा ना तिथे भरम ना दूजा पासारा सच

सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभ भाई हम तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हम मैं मारने वारी है। सच लगे तिन सब किछ पावे सच्चे शब्दे सच सुहावे एथे साचे से दर साचे नदरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापे नाही माया मोह दुख भारी है। साचा शब्द जिन्ना मन पाया पूरब लिखिया।

सुख सहज समाधि हर हर करतिया मन निर्मल होआ गुर की सेव प्यारी है सीजन सुखिए सतगुर सच्चे लाए आपे भाणे आप मलाए सतगुर राखे से जन उबरे होर माया मोह खुआरी है गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कटंब ना तिस माता एको एक रव्या सब अंतर सबना जिया काया धारी है हम मैं मेरा दूजा पाया किसना चल तुर खसम लिख पाया।

जीवन जिन अपनाया तो पछाता ही जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सिर सिर तंदे आपे लाई जिस पावे

तोल, ज्यों पावै त्यों राखह रहना, गुरमुख एको जाता ही, जात पाणा ता सच्ची कारै लाई, अवगण छोड़ गुण माही समाई, गुण मह एको निर्मल साचा, गुर कै शब्द पछाता ही, जह देखा तह एको सोई, दूजी दुर्मत शब्द खोई, एक समह प्रभ एक समाना, अपने रंग सद राता ही, काया कमल है कुमलाना, मनमुख शब्द न बुझै एयाना, गुर प्रसादी काया खोजे, पाए जग जीवन दाता ही, कोट गही के पाप निवारे, सदा हर जीओ राखै उर तारी,

कोई। गुरमुख ज्ञान सदा सलाही, जुग जुगे को जाता ही। मनमुख कार करे सब दुख सबाई, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा।

मुख द्वारा पूर्व लिखिया सो फल पाया जिन आप मार पछाताई माया मोहे हर स्यो चित न लागे दूजे पाए कणा दुख आगे मन मुख परम भुले भेख धारी अंतकाल पछताताई हर कै भाणे हर गुण गाई सब किलविक काटे दुख सबाई हर निर्मल निर्मल है बाणी हर सेती मन राता ही जिसनो नदर करे सो गुण निद पाई हम मैं मेरा ठाक रहाई गुण अवगुण काहि को दाता गुरमुख विरली जाता ही मेरा प्रभ निर्मल आते।

रत्न अमोलक अग में अपारा, कीमत कमन करे विचारा, गुर कै शब्दे तोल तलाई, अंतर शब्द पछाताई, सिमरत शास्त्र बहुत बिस्थारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विरले जाता ही, आपे करता करे कराई, सच्ची वाणी सच दिरडाई, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाताई, मारू महला तीजा, सो सच सेवे हो सिरजनहारा, शब्दे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगम अथाहाई, आपे सच्चा सच वरताई।

सच्चा सच्ची नाई गुरमुख देवै मन वसाई जिन मन वसया से जन सो है तिन सिर चूका काहाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई गुर प्रसादी मन वसाई सदा शब्द सलाही गुणदाता लेखा कोई न मंगै ताहाई ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा अंत न पावह अलाखे अपेवा जिनको नदर करह तू अपनी गुरमुख अलख लखाही पूरे।

पारा मनमुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई हुक्मे वे परवाहाई गुर प्रसादी हुक्म पछाण तावत राखै इकत कर आण नामे राता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहाई सब जग मह वरतै इको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई शब्द सलाह है से जन निर्मल निज करवासा ताहाई सदा भगत तेरी सरनाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद भावै त्यों त्यों राख है गुरमुख नाम त्याहाई।

पाही, बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा, बिन शब्द कोई न पावे पारा, जो शब्द राते महा बैरागी, सो सच शब्दे लाहाही, दुख सुख करते तुर लिख पाया, दूजा भाव आप वरताया, गुरमुख होवे सो अलिप तो वरते, मनमुख का क्या विसाही, से मनमुख जो शब्द ना पछाण है, गुर के पै की सार ना जान है, पै बिन क्यों निर्भो सच पाई है।

पूरै सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगते पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाह पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

कर्म कमाए, गुर कृपा ते घट अंतर वसिया, शब्दे सच सलाहाई, से जन मिले तुरे आप मलाई, साची बाणी शब्द सुहाई, नानक जन गुण गावे नित साची, गुण गावे गुणी समाहाई, मारू महला तीजा, निचले एक सदा सच सोई, पूरे गुरते सोजी होई, हर रस पीने सदा त्याएन, गुरमत सील सनाहाई, अंदर रंग सदा सचियारा, गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौ निद नाम वसिया घट अंतर, छोड़िया माया काला हाई, रैयत राजे दुरमत दोई, बिन सतगुर सेवे एक ना होई, एक त्याएन सदा सुख पाएन, निश्चल राजत नाहाई, आवन जाना रखे ना कोई, जम्मन मरण तिसै ते होई, गुरमुख साचा सदा त्याव हो, गत मुक्त तिसै ते पाहाई, सच संयम सतगुरु द्वारे, हों मैं क्रोध शब्द निवारे, सतगुर सेव सदा सुख पाई है, सील संतोख सब ताहाई, हों मैं मोह उपजै संसारा, सब जग बिनसै नाम वसारा, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई है, नाम सच्चा जग लाहाई, सच्चा अमर शब्द सुहाया, पंच शब्द मिल वाजा वाया, सदा कार्ज सच नाम सुहेला, बिन शब्द है कार्ज के हाई, खिन मह हसै खिन मह रोवै, दूजी

जीवन मुक्त गुर शब्द कमाई, हर सिंह सद ही रह समाई, गुर कृपा ते मिले वडियाई, हम मैं रोग न ताहाई, रस कस खाए पिंड वडाई, भीख करे गुर शब्द ना कमाई, अंतर रोग महा दुख भारी, बिस्ता माही समाहाई, वेद पढ़े पढ़ बाद बखान है, घट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण है, गुरमुख होवे सो तत् बलोवे, रसना हर रस ताहाई, तर वत छोड़े है बाहर धावे है, मन मुखे अंधे साध ना पावे है, अनरस राती रस

खबर न पाई अंत गया पछताएंदा जिन अपाए सो बिद जाने गुरमुख देवे शब्द पछाने नानक दास कह बेनंती सच नाम चित लाएंदा मारू महला तीजा आदि जगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पछाता तुदनो सेव है से तुझ समाव है तू आपे मेल मलाएंदा अगम अगोचर कीमत नहीं।

अंतर परम गया पौ भागा सदा आनंद सच्चे गुण गावह सच बाणी बोला एंदा जिन तू जाता कर्म विधाता पूरा भाग गुर शब्द पछाता जात पात सच सच्चा सच सोई हम मैं मार मलाएंदा मन कठोर दूजे पाए लागा परमे भूला फिरे अभागा कर्म होवे ता सतगुर सेवे सहजे ही सुख पाएंदा लख चौरासी आप उपाई मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाई बिन भगती बिस्ता विच वासा बिस्ता विच फिर पाएंदा कर्म होवे गुर भगत दृढ़ाई विण कर्मा क्यों पाया जाए आपे करे कराए करता ज्यों भावे तिवें चलाएंदा सिमरत सा

पाई, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई, आपे वेख करे सब साचा, आपे पन कढ़ाएंदा, बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई, सदा अलिपत रह गुर शब्दी, साचे स्यों चित लाएंदा, बाजह बाजे तुन अकारा, आप बजाए बजावन हारा, कट कट पौन वह इक रंगी, मिल पवन सब बजाएंदा, करता करे सो निश्चो होवे, गुर कै शब्दे हों मैं खोवे, गुर प्रसादी किसे दे वड्याई, नामो नाम त्याएंदा।

सेवह क्यों सुख पाई बिन नावह दुख पाईंदा आप करे न आप कराई गुर प्रसादी किसे बुझाई गुरमुख

गणत चकाए सच्चे सच समाएंदा जे सच दे ता पाए कोई गुर प्रसादी प्रगट होई सच नाम सलाहे रंग राता गुर कृपा ते सुख पाएंदा जप तप संयम नाम।

हट नाले सतगुरु दिखाए अंतर नाले नावै काबा पारी होवे गुर शब्दी को पाएंदा सतगुर सेवे सहज आनंदा हृदय आए बुठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राती आपे भगत कराएंदा सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया आन दिन मारिया है दुख सबाया मत्थे काले महल ना पावे दुख ही विच दुख पाएंदा सतगुर सेव है सेवड भागी सहज पाए सच्ची लिवलागी सचो सच कमावे सदही सच्चा मेल मलाएंदा जिसनो सच्चा दे सो पाए अंतर साच परम चुकाए सच सच्चे का

आप बुझाए बूझै कोई, आपे बख्शे दे वड्याई, आपे मेल मलाएंदा, हम मैं कर दिया जन्म गवाया, आगे मोह ना चूके माया, अगे जम काल लेखा लेवे, जो तिन कहानी पीड़ाएंदा, पूरा भाग गुर सेवा होई, नदर करे ता सेवे कोई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, महल सच्चै सुख पाएंदा, तिन सुख पाया जो तुद पाई।

गुर कृपा ते मन तन पीजै, रसना नाम त्याए रस पीजै, रस ही ते रस पाएंदा, महलै अंदर महल को पाए, गुर कै शब्द सच चित लाए, जिसनो सच दे सोई सच पाए, सच्चे सच मलाएंदा, नाम वसार मन तन दुख पाया, माया मोह सब रोग कमाया, बिन नावै मन तन है कुश्ती, नरके

अनदिन हर सेवे हो सच्ची बाणी, हर जियो शब्द मलाएंदा, हर चेत है तिन बले हार है जाऊं, गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊ, तिनकी धूर लाई मुख मस्तक, सत संगत बह गुण गाएंदा, हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा, अंतर हर नाम शब्द सुहावा, गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए, साचे नाम समाएंदा, सो जन साचा जे अंतर पाले, गुर कै शब्द हर नदर निहाले, ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, नदनी नदर मलाएंदा, वड्डे भाग एहो शरीर पाया, मानस जन्म शब्द चित लाया, बिन शब्द है सब अंध अंधेरा, गुरमुख किसै बुझाएंदा, एक कित आए जन्म गवाए, मनमुख लागे दूजे पाए, एह वेला फिर हाथ न आवे, पग खिसै पछताएंदा, गुर कै शब्द पवित्र शरीरा, किस विच वसै सच गुणी गहीरा, सचो सच वेखै सब थाई, सच सुन मन वसाएंदा, हौ मैं गणत गुर शब्द निवारी, हर जियो हिरदै रखो उरतारी।

दूजै पाए परम पलाया, हर ना चेतै सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चै जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाए, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिन को नदर होवै गुर

पाया। जिसनो बजाए सोई बूझे, हर गुण गावे अंदर सूझे। हम मैं मेरा ठाक रहाई, सहजे ही सच पाया। बिन कर्मा होर फिरे कनेरी, मर मर जम्मे चुके ना फेरी। बिख का राता बिख कमावे, सुख ना कबू पाया। बहुते भेख करे भेख तारी, बिन शब्द हूं मैं किने ना मारी। जीवत मरे ता मुक्त पाई, सच्चे ना ए समाया। अज्ञान तृष्णा इस तनह जलाई, किस दी बूझे जे गुर शब्द कमाई।

मन पाई, मन तन सच्चे भगती राता, सच्चे सिहो चित लाया, हउ मैं विच सद जलै शरीरा, कर्म होऐ भेटे गुरपूरा, अंतर अज्ञान शब्द बुझाए, सतगुर ते सुख पाया, मन मुख अंधा अंध कमाए, बहु संकट जोनी परमाए, जम का जेवड़ा कदे ना काटे, अंते बहु दुख पाया, आवन जाना शब्द निवारे, सच नाम रखे उरतारी, गुर के शब्द मरे मन मारी, हउ मैं जाहि समाया, आवन जाने पर जब गोई, बिन सतगुर थिर कोई ना होई, अंतर ज्योत शब्द सुख वसिया, ज्योति ज्योत मलाया, पंच दूत चितवह वेकारा, माया मोह कायो पसारा, सतगुर सेवे ता मुक्त होवे, पंच दूत वासे आया, बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारू वारा, सतगुर भेटे सच दृढ़ाई, सच नाम मन पाया।

0: माही समाया करे अंदर को कर पाई गुर के शब्द सहज सुपाई उथे सोग वजोग ना व्यापे सहजे सहज समाया दूजे पाए दुष्टा का वासा पौंदे फिर है बहु मोह प्यासा कुसंगत बह सदा दुख पाव है दुखो दुख कमाया सतगुर बाजो संगत ना हुई बिन शब्दे पार ना पाए कोई सहजे गुण रवह दिन राती ज्योति ज्योत मलाया काया बिरख पंखी विच वासा अमृत चुगह गुर शब्द निवासा उड़ह ना मूले ना आवह ना जाई निज कर वासा पाया
1: काया सोदह शब्द विचार है
0: मोहठ गौरी परम निवार है।

नाम रतन धन पाया सतगुर की सेवा पाई है। बिन सतगुर जो दूजे लागे आवह जाहे भ्रम मरह अभागे। नानक तिनकी फिर गत होए जे गुरमुख रह सरनाई है। गुरमुख प्रीत सदा है साची

अमृत रास सतगुरु चवाया, दसवें द्वार प्रगट होए आया। तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी, सहज सहज समाई है। जिनको करतै तुर लिख पाई, अन दिन गुर गुर करत विहाई। बिन सतगुर को सीजै नाही, गुर चरनी चित लाई है। जिस भावै तिसे

ज्ञान रतन मन प्रगट भया नाम पदार्थ सहजे लया एह वडे आई गुरते पाई सतगुर कहो सद बल जाई हे प्रगटया सूर निस मिटया अंधियारा अज्ञान मिटया गुर रतन अपारा सतगुर ज्ञान रतन अत भारी

सदा मन बिबसै हर चरणी मन लाई हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किश नाही सतगुर ते समझ पड़ी मन माही हो दयाल कृपा करा हर जीव सतगुर की सेवा लाई है जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता सर्वे राव रहया सुख दाता आत्म चीन परम पद पाया सेवा सुरत समाई है जिनको आद मिली वड्याई सतगुर मन वस्या लिवलाई आप मिलिया जग जीवन दाता नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा हर अगम अगोचर सदा अबनासी सर्वे रव रहया कटवासी तिस बिन अवर न कोई दाता हर तिस ऐसरे वो प्राणी है जां को राखे हर राखन हारा ताको कोई ना साक सम

समाही सूके ते फुन हरिया कीतन हर त्यावो चोज वडाणी हे जो जिया की वेदन जाने तिस साहिब कै हों कुर्बान तिस आगे जन कर बेनंती जो सर्व सुखा का दानी हे जो जिया की सार ना जाने तिस स्यों किछ ना कहिए अजाने मूरख स्यों नह लूज पराणी हर जपी है पद निर्वाणी हे ना कर चिंत चिंता है करते हर देवै जल थल जनता सब तै अचिंत दान दे प्रभ मेरा विच पाथर कीट पखानी हे ना कर आस मीत सुत पाई ना कर आस किसे सा व्यवहार की पराई बिन हर नावे को बेली नाही हर जपिए सारंग पानी हे अन दिन नाम जपहो बनवारी सब

तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। जो शरण परै तिसकी पात राखे, जाए पूछो वेद पुराणी हे। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागे, गुर कै शब्द परम भउ भागे। विचे ग्रह सदा रह उदासी, ज्यों कमल रह विच पानी हे।

ग्रह पीतर जित उतरै भूख प्यासाहि सगले कर्म धर्म जुग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगे तौ धन फिर आनंद उलासाहि तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् कारच नरचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई तन कह तू वस मैं नाली प्रिय सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हौ कित ही ना लिख है वचन देह छोड़ ना जासाही फिर कहे आहो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राखै तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु ना समझै चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगै ओह बात जानै कर हासा ही आई आग्या फिर हो बुलाया ना तन पुछी ना मता पकाया ऊठ सदायो छूटर माती देख नानक मिथन मुहासाहि रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासाहि मनमुख आवै मनमुख जावै मनमुख फिर चोटा खावै जितने नरक से मनमुख भोगै गुरमुख लेप ना मासाहि गुरमुख सोए जे हर जियो पाया तिस कौन मिटावै जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासाही हौं बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विचड़ना कत ही जासाही गुण निदान किश कीम ना पाई कट कट पूर रहो सब ठाई नानक सरन दीन दुख भंजन हौं रेण तेरे जो दासाहि मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करै आनंद आनंदी मेरा कट कट पूरन सिर सिरै नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा है हरकवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर देखै बिगसै आपे ही आप पूजाही आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खलावै दिन राती आपे सुन सुन पीजाही साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच तारियो सब साचा सच्चे सच वरती जाही सच

आप तू है वड राजा, हुक्म सच्ची कह पूरे काजा, अंतर बाहर सब किस जाने, आपे ही आप भतीजा है। तू वड रसिया तू वड भोगी, तू निर्वाण तू है ही जोगी, सर्व सुख सहज कर तेरे, अम्यो तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझे ते होए, देह दान सब सह जंत लोए, टोट न आवे पूर पंडारे, तृप्त रहे आगी जाहे, जाचे हैं सिद्ध साधक बनवासी, जाचे हैं जति सती सुखवासी, एक दातार सगल है जाचिक, देह दान सृष्टि जाहे, करह भगत अर रंग अपारा, खिन मह थापयो थापनहारा, भारू तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगती जाहे, जिस देह दर्स सोई तुद जाने, ओह गुर कै शब्द सदा रंग।

जिस चीते आवह तिस पहु केहा, अवर कहा किस की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुरपूर लै टूटा गंडा। सुरत शब्द हृदय अंतर जागी, हमयो चोल चोल पी जाहे। मरे नाही सद सद ही जीवे, अमर भया बनासी थी।

महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे मारू महला पंजवा सोले एक ओंकार

सिमरत खट कर्मा गुर पवित्र अस्थान नाही। गुर सिमरत सब किल विख नास है, गुर सिमरत जम संग ना फास है। गुर सिमरत मन निर्मल होवे, गुर काटे अपमान नाही। गुर का सेवक नरक ना जाई, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई। गुर का सेवक साध संग पाई, गुर करता नित जी दानाई। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए। कल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगाह देवे मानाई। अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया। गुर सेवक को बिघन ना भगती, हर पूर दरड़ाया ज्ञान नाही। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई। ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्याना। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले नह जो है माई। सत संतोख दिया गुर पूरे, नाम अमृत पी पाना। गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी तै आप वखाणी। जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया निचल थाना। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किस करे सो आपन पाणे। साधु तूर जाचह जन तेरे, नानक सद कुरबाना। मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद निरंजन प्रव निरंकारा, सब मह वरतै आप नरारा। वर्ण जात चिहन नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपाएंदा। लख चौरासी जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड़ियाई। इस पौड़ी ते

दार्थ लहिए, जिसे आप पुलाए सोई भूले, सो बूझे जिसे बुझाएंदा, हर कसोग का नगर एहु किया, से उबरे जो सतगुर सरनिया, त्रिहा गुणा ते रह निरारा, सो

मंत्र दरड़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसह बहु देवा सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुर पूरे ते पायना। होर द्वारा कोई ना सूझ त्रे पवन तावै ता किशु ना बूझे। सतगुर साह भंडार नाम जिस एहो रतन तिसै ते पायना। जाकी धूर करे पुनीता सुर नर देव ना पावह मीता। सत पुरख सतगुर परमेश्वर जिस भेट तपार परायना। पार जात लोड़ है मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे। तृप्त संतोख सेवा गुरपूरे नाम कमाए रसायना। गुर कै शब्द मरह पंच धातु भै पार ब्रह्म होवह निर्मलातु। पारस जब भेटै गुरपूरा ता पारस परस दिखायना। कई बैकुंठ नाही लवै लागे मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे। एक अंकार सतगुर ते पाईए हौ बल बल गुर दरसायना। गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई। जिसनो लाए लए सो सेवक जिस वड भाग मथायना। गुर की महिमा वेद न जाने है तुष मात सुन सुन वाखाण है। पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायना। जाकी सोए सुनी मन जीवै हृदय वसै ता ठंडा थीवै। गुरमुखो अलाए ता सोभा पाए किस जम कै पंथ ना पायना। संतन की सरनाई पड़िया जियो प्राण धन आगै धरिया। सेवा सुरत ना जाना काई तुम करो दया किरमायना। निर्गुण को संग लेहो रलाए कर कृपा मोहे टहलै लाए। पक्खा फिरो पीसों संत आगे चरण धोए सुख पायना। बहुत द्वारे भ्रम भ्रम आया तुमरी कृपा ते तुम सरनाया। सदा सदा संत है संग राखो एहो नाम दान दिवायना। भये कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे। सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना। मारू सोलह महला पंजवा।

चंद सूरज गुण तासा पौन पानी बैसंतर सिमर है सिमर है सगले पार जना सिमर है खंड दीप सब लोआ सिमर है पाताल पुरिया सच सोआ सिमर है खानी सिमर है बाणी सिमर है सगले हर जना सिमर है ब्रह्मे विष्णु महेशा सिमर है देवते कोड़ ते तीसा सिमर है जाक दैत सब सिमर है अगंत न जाई जस गना सिमर है पास पंखी सब कूता सिमर है बन पर्वत अवतूता लता बली साख सब सिमर है रव रहे आस्वामी सब मना सिमर है थूल सूखम सब जनता सिमर है सिद्ध साधक हर मंता गुप्त प्रगट सिमर है प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ तना सिमर है नर नारी आश्रमा सिमर है जात जोत सब वर्णा सिमर है गुणी चतुर सब बेते सिमर है रैणी अर दिना सिमर है घड़ी मूरत पल निमखा सिमर है काल अकाल सोच सोचा सिमर है सौन शास्त्र संजोगा अलख न लखिए एक खिना कर्ण करामन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी कर कृपा जिस भगती लाव हो जन्म पदार्थ सो जिना जान कै मन बूठा प्रभ अपना पूरे कर्म गुर का जप जपना सर्व निरंतर सो प्रभ जाता बहुड़ना जोनी परमुरुना गुर का शब्द वसै मन जाकै दुख दर्द प्रमता का भाग सूख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना सो तनवंता जिन प्रभ त्याया सो पतवंता जिन साध संग पाया पार ब्रह्म जाकै मन बूठा सो पूर करमा नाशिना जल फल महियल स्वामी सोई अवरमा कहिया दूजा कोई गुर ज्ञान अंजन काटे ओ ब्रह्म सगला अवरना दिसै एक बिना ऊचे ते ऊचा दरबारा कहन न जाई अंत न पारा गहर गंभीर अथाह स्वामी अतुल न जाई क्या मिना तू करता तेरा सब किया तुझ बिन अवरना कोई बिया आद मद अंत प्रभ तू है सगल पसारा तुम तना जम दूत तिस निकट न आवै साध संग हर कीर्तन गावे सगल मनोरथ ताके पूरन जो सर्वणी प्रभ का जस सुना।

है स्वामी तुम मना। मारू महला पंजवा प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेरवाना। हर दाता जी जंत पेखारी, जन बांचै जा चंगना। मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो। दीर्घ रोग मिट है हर औखद, हर निर्मल रापै मंगना। श्रवणी सुनो बिमल जस स्वामी, एका ओट तजो बिख कामी। निव निव पाए लगो दास तेरे, कर सो कृत नाही संगना। रसना गुण गावे हर तेरे, मिट है कमाते अब गुण मेरे। सिमर सिमर स्वामी मन जीवै, पांच दूत तज तंगना। चरण कमल जप बोहित चरिय, संत संग मिल सागर तरिय। अर्चा बंदन हर समत निवासी, बहुड़ जोन ना नंगना। दास दासन को कर ले हो गोपाला, कृपा निदान दीन दयाला। सखा सहाय पूर्ण परमेश्वर, मिल कदे न होवी भंगना। मन तन अर्प धरी हर आगे, जन्म जन्म का सोया जागे। जिसका सा सोई प्रतपालक, हत त्यागी हौ मैं हंतना। जल फल पूर्ण अंतर जामी, कट कट रव्या अशल स्वामी। परम पीत खोई गुरपूरै, एक रव्या सरबंगना। जत कत पेखो प्रभ सुख सागर, हर टोट भंडार नाही रतनागर। अगह अगाह किस मित नहीं पाईऐ, सो बूझै जिस किरपंगना। छाती शीतल मन तन ठंडा, जन्म मरण की मिटवी दंजा। कर गह काड लिए प्रभ अपने, हमें उतार दृष्टंगना। एको एक रव्या सब ठाई, तिस बिन दूजा कोई नाई। आद माद अंत प्रभ रव्या, त्रिष्ण बुझी परमंगना। गुर परमेश्वर गुर गोबिंद, गुर करता गुर सद बख्शंद। गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना। जो पेखा सो सब किस स्वामी, जो सुनना सो प्रभ की बानी। जो कीनो सो तुम्हें करायो, शरण सहाई संत है तना। जाचक जाचै तुम्हें अरादै, पतित पावन पूर्ण प्रभ सादै। एको दान सर्व सुख गुण निद, आन मंगन निह किंचना। काया पात्र प्रभ करने हारा, लगी लाग संत संगारा। निर्मल सोए बणी हर बाणी, मन नाम मजीठै रंगना। सोलह कला संपूर्ण फलिया, अनत कला हुए ठाकुर चढ़िया। आनंद बनोद हर नाम सुख नानक, अमृत रस हर पुंचना। मारू सोले महला पंजवा।

दीता। कर्ण करामन सब तू है नाही किस असाड़ा। तुम है पठाए ता जग मह आई, जो तुझ पाणा से कर्म कमाए। तुझ ते बाहर किशु न हुआ, ता भी नाही किस काड़ा। ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए, इहां हर जस तेरा भणिए। आपे लेख अलेख है आपे, तुम सियो नाही किस झाड़ा। तू पिता सब बार कथारे, ज्यो खलावे है त्यों खेलन हारे। उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना, चले नाही कोवे पाड़ा। एक बसाए रखे ग्रह अंतर, एक पठाए देश दसंतर। एक ही को कास एक ही को राजा, इन मैं कही है क्या कूड़ा। कमन सो मुक्ति कमन सो नरका, कमन सैसारी कमन सो भगता।

वेखै विगसै सब रंग माणी रचन कीना एक अखाड़ा वड्डा साहिब वड्डी नाई वड दा तार वड्डी जिस जाई अगम अगोचर बे अंत अतोला है नाही किस आहाड़ा कीमत कोई ना जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सो ज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया केतड़िया दिन सुन समाया केतड़िया दिन धुंधू कारा आपे करता प्रगटड़ा आपे शक्ति सबल कहाया आपे सूरा अमर चलाया आपे शिव वरताई नियंतर आपे शीतल ठार गड़ा जिसह नवाजे गुरमुख साजे नाम वसै तिस अनहद वाजे तिस ही सुख तिस ही ठकुराई तिसह न आवै जम नेड़ा कीमत कागद कही ना जाई कहो नानक बे अंत गुसाई आद मद अंत प्रभ सोई हाथ तिसह कह निबेड़ा तिसह शरीक ना ही रे कोई किस ही बुतै जवाब ना होई नानक का प्रभ आपे आपे कर कर वेखै चोज खड़ा मारू महला पंजवा अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी मद सूदर दामोदर स्वामी रिखि केस गोवर्धन तहारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मरारे जगदीश्वर हर जियो असुर संघारी जग जीवन अबनासी ठाकुर घट घट वासी है संगा धरनी तर ईस नरसिंह नारायण दाड़ा अगरे प्रथम तरायण बावन रूप किया तुद करते सब ही सेती है चंगा श्री राम चंद जिस रूप नारिखिया बनवाली चक्र पान दर्श अनूपिया सहस नेतर मूर्त है सहसा एक दाता सब है मंगा भगत वचल अनाथ है नाथे गोपी नाथ सगल है साथे वासुदेव नरंजन दाते वर्ण ना साको गुण अंगा मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण कमला कंत करह कंतूहल आनंद बनोदी निसंगा मोग दर्शन आजूनी संभव अकाल मूरत जिस कदे नाही खो अवनासी अवगत अगोचर सब किस तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी मछ कछ कूरम आग्या अवतरासी केसव चलत करह निराले कीता लोड़ है सो होएगा निराहारी निरवैर समाया धार खेल चतुर्भुज कहाया सावल सुंदर रूप बनावह देण सुनत सब मोहैगा बनमाला बेभूखन कमल नैन सुंदर कुंडल मुकट बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सतसंगा पीत पितंबर त्रिपवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुख पणी सारंग धर भगवान बीठला मैं गणत न आवै सरबंगा निह कंटक निह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल समीपत अस्तर थान जिस है अपगा पतत पावन दुख पै पंजन हंकार निवारण है पव खंडन भक्ति तोखत दीन कृपाला गुणे न कित ही है पिगा निरंकार अशल अडोलो ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो।

परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाती तिन साधु चरण लै हृदय पराती सगल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द मन वाजंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा सत नाम तेरा परा पूर्बला कहो नानक भगत पये सरनाई देहो दर्स मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है तू आपे कथ है तै आप बखान है नानक दास दासन को करियो हर भावे है दासा राख संगा मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे हुए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा सच निवाज यकीन मसल्ला मनसा मार निवार हुआसा देह मसीत मन मौलाना कलम खदाई पाक खरा सरासरयत लेख मावहु तरीकत तर्क खोज टलावहु मारफत मन मारहु अबदाला मिलहु हकीकत जित फिर न मरा करान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द सिदकले बंद हो खैर सबूरी कबूल परा मक्का मेहर रोजा पै खाका पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा पूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अल्लह आला हुजरा सच कमावे सोई काजी जो दिल सोदे सोई हाजी सो मुल्ला मलऊन निवारे सो दरवेश जिस सिफत तरा सबे वक्त सबे कर वेला खालक याद दिले मह मौला तस्बी याद करहु दस मर्दन सुन्नत सील बंधान बरा दिल मह जानहु सब फिलहाला खिलखाना बिरादर हमू जंजाला मीर मलक उमरे फानाया एक मुकाम खुदाए दरा अवल सिफत दूजी साबूरी तीजै हलेमी चौथे खैरी पंजवे पंजे इकत मकामे एह पांज वक्त तेरे अपर परा सगली जान करो मौदीफा बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा खुदाए एक बुज देव हो बांगा बुरगू बर खुरदार खरा हक हलाल बखोरो खाना दिल दरियाओ तो वह मैं लाना पीर पछाण पिस्ती सोई अजराइल ना दोज ठरा काया किरदार औरत यकीना रंग तमाशे मान हकीना नपाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते धोवे दुनिया रंग ना आवे नेड़े ज्यों कुसम पाट घ्यो पाक हरा जाको मेहर मेहर मेहरवाना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई सेख मसाए कहाजी सो बंदा जिस नजर नरा कुदरत कादर करन करीमा सिफत महबत अथाह रहीमा हक हुकम सच खुदाया बुझ नानक बंद खलास तरा मारू महला पंजवा पार ब्रह्म सब ऊच बराजी आपे थापे थापे साजी प्रभ की शरण गहत सुख पाई है किस भौ न व्यापै बालका गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओहो सगल कटा का मालका चरण कमल सरण आई आया साध संग है हर जस गाया जन्म मरण सब दुख नवारी जप हर हर भव नहीं काल का समरथ अकथ अगोचर देवा जी जंत सब तां की सेवा अंडज जेरज सेतज उत्पुज बहु प्रकारी पालका किसह प्राप्त।

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, दालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो होर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संता की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिनकै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नानक

पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना। जिस रूप ना रेखिया कुन नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती। जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जूनी पावना। जिसनो बिसरै पुरख बधाता, जलता फिरै रह नित ताता। किरत कणै को रखै ना कोई, नरक कोर मह पावना। जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया। किस स्यो प्रीत छाड़िया नराता, काहू सिरै ना लावना। तार अनग्रहो स्वामी मेरे, कट कट वस है सबन कै नेरे। हाथ हमारे कछु है नाही, जिस जनाए है किसे जनावना। जा कै मस्तक तुर लिख पाया, किस ही पुरख ना व्यापै माया। नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना। आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरले ही कीने। ता की कीमत कहन ना जाई, जत कत ओही समावना। सोई भगत सोई वडदाता, सोई पूर्ण पुरख बधाता। बाल सहाय सोई तेरा, जो तेरे मन पावना। मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बध कट है ना कटाए। सोई होए जे करते पावे, कह कह आप मनावना। अंध कूप ते से ही काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना।

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुरते ज्ञान पाया हथ खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा। सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए भाई शब्दे करे प्यार सत संगत स्यों मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विच्चों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डै वडार नानक मिलिया सो

मोए सेव गति गए मर जन्म है फिर आवह सलोक महला तीजा कागो होए न उजला लोहे नाव ना पार पिरम पदार्थ मन ले धन सवार नहार हुक्म पछाण उजला सिर काष्ट लोहा पार तृष्णा छोड़े भय वसे नानक करनी सार महला तीजा मारू मारन जो गए मार ना सकह गवार नानक जे उह मारी है गुर शब्दी विचार इहो मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए नानक मन ही कहो मन मारसी जे सतगुर भेटे सोए पौड़ी दोए तरफा उपायन विच सख्त शिव वासा शक्ति किने ना पायो फिर जन्म बनासा गुर सेवे शांत पाई है जप सास ग्रासा सिमरत सास्त सोध देख उत्तम हर दासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। सलोक महला तीजा हुआ पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुख चार नव खन मदे पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर भुल जाए।

आपे नदर करे आपे देवड़े आईया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजै अफरयो जग मह वर्तदा पापी स्यों लूजै। गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजै सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजै। मन विचार हर जप करे हर दरगाह सीजै। सलोक महला पहला हुक्म रजाई साखती दरगाह सच कबूल साहिब लेखा मंगसी दुनिया देख ना भूल। दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिल रास इश्क महब्बत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाई हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुपाए पौड़ी। मनमुख काल वे आपदा मोहे माया लागे खिन मह मार पछाड़ सी पाए दूजे खागे। फिर वेला हाथ न आवई जम का डंड लागे तिन जम डंड न लगई जो हर लिव जागे। सब तेरी तुद छामणी सब तुद लागे। सलोक महला पहला सर्बे जोए अगछमी दुख कनेरो आथ कालर लादस सर लांगनो लाभ ना पूंजी साथ। महला पहला पूंजी साचो नाम तू अखुटो दर्ब अपार नानक वखर निर्मलो धन साहा वापार। महला पहला पूरब प्रीत प्राण ले मोटो ठाकुर मान माथे उभे जम मारसी नानक मेलन नाम पौड़ी। आपे पिंड सवारियों विच नव निद नाम इक आपे परम पलायन तिन निफल काम। इकनी गुरमुख बुझिया हरे आत्म राम इकनी सुनकै मन्या हरे उत्तम काम। अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम। सलोक महला पहला पोल तन पै मन वसै हेकै पद रहीद अत डाहपन दुख कणु तीने थाम परीद। महला पहला मांडल बेद से बाजणु कणो तड़िया जोए नानक नाम संभाल तू बीजो अवर ना कोई। महला पहला सागर गुणी अथाह किन हथाला देखिए वड्डा वे परवाह सतगुर मिले ता पार पवा मज भर दुख बदुख। नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी भुख पौड़ी। जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाए दे हर नाम ते आवे। जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे। धर्म राय तिनका मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे। सलोक महला पहला सुनिए एक बखानिए सुर्ग मृत पयाल हुक्म न जाई मिटिया जो लिखिया सो नाल। कौन मुआ कौन मारसी कौन आवे कौन जाए कौन रहसी नानका किसकी सुरत समाए। महला पहला हों मुआ मैं मारिया पौन वह दरियाओ तृष्णा थकी नानका जा मन रत्ता नाए। लोयन रत्ते लोयनी कन्नी सुरत समाए जीवर सायन चूनड़ी रत्ती लाल लवाए। अंदर मुश्क चकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी। इस युग में नाम निदान है नामो नाल चल एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चे ओ पल। हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल से साहा सच्चे बन जा रिया जिन हर तन पल्ल हर कृपा ते हर पाई है
जा आप हर कल्ले। सलोक महला तीजा, मन मुख वपार सार ना जाननी, बिक विहाजह बिक संग्रह बिक स्यों तरह प्यार। बाहर हो पंडित सदाए दे, मनहो मूर्ख गावार, हर स्यों चेतना लायनी, वादी तरन प्यार। वादा किया करन कहानियां, कूड़ बोल करह आहार, जग मह राम नाम हर निर्मला, होर मैला सब आकार। नानक नाम ना चेतनी, होए मैले मरह गवार। महला तीजा, दुख लगा बिन सेवे है, हुक्म मन्ने दुख जाए, आपे दाता सुखै दा आपे दे सजाए। नानक एवै जानिए, सब किश तिसै रजाए पौड़ी, हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामै तृप्त नाही। दूजै परम भलाया, हौ मैं दुख पाही, बिन करमा किशु ना पाईए, जे बहुत लुचाही, आवै जाए जम्मै मरै, गुर शब्द छुटाही। आप करै किसे आखिए, दूजा को नाही। सलोक महला तीजा, इस जग मह संती धन खटिया, जिन्ना सतगुर मिलया प्रभ आई, सतगुर सच दृढ़ाया। इस धन की कीमत कही ना जाय, इत धन पाया भुख लखी, सुख वस्या मन आई। जिन्ना को तुर लिखिया तिन्नी पाया आय, मनमुख जगत निर्धन है माया नो बिल लाय। अन दिन फिरदा सदा रह, भूख ना कदे जाय, शांत ना कदे आवई, नह सुख वसै मन आय। सदा चिंत चित वधा रह, सहसा कदे ना जाय। नानक बिन सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिलै ता शब्द कमाय। सदा सदा सुख मह रह, सच्चे माहे समाय। महला तीजा, जिन उपाई मेदनी, सोई सार करे, एको सिमरहु पाई रहो, तिस बिन अवर ना कोय। खाना शब्द चंगियाईया, जित खादै सदा तृप्त होए, पैनन सिफत सुनाए है, सदा सदा ओह ऊजला, मैला कदे ना होए। सहजे सच धन खटिया, थोड़ा कदे ना होए। देही नो शब्द शिंगार है, जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझी है, जिसनो आप बखाले सोए। पौड़ी, अंतर जप तप संजमो, गुर शब्दी जापै, हर हर नाम त्याई है, हौ मैं अज्ञान गुआपै। अंदर अमृत भरपूर है, चाखियां साध जापै, जिन चाखिया से निरपो भए, से हर रस त्रापै। हर कृपा तार पी आया, फिर काल ना व्यापै। सलोक महला तीजा, लोक अवगणा की बन्नै गंठड़ी, गुण ना व्याजै कोए, गुण का गाहक नानका, विरला कोई होए। गुर प्रसादी गुण पाइन, जिसनो नदर करे। महला तीजा, गुण अवगुण समान है, जे आप कीते करतार, नानक हुक्म मन्ने है, सुख पाईए, गुर शब्दी विचार। पौड़ी, अंदर राजा तख्त है, आपे करे नियाउ, गुर शब्दी दर जानिए, अंदर महल असराव, खरे परख खजाने पाइन, खोटिया नाही थाव। सब सचो सच वर्तदा, सदा सच नियाउ, अमृत का रस आया, मन वसिया नाउ। सलोक महला पहला, हौ मैं करी ता तू नाही, तू होवै हौ नाही, बूझो ज्ञानी बूझना, ए अकथ कथा मन माहे। बिन गुर तत ना पाईए, अलख वसै सब माहे, सतगुर मिलै ता जानिए, जा शब्द वसै मन माहे। आप गया भ्रम भौ गया,
जन्म मरण दुख जाहे, गुरमत अलख लखाइए उत्तम मत तराए, नानक सोहंग हंसा जप जप हो त्रे भवन तिसै समाहे। महला तीजा, मन माणक जिन परखिया गुर शब्दी विचार, से जन विरले जानिए है कल युग विच संसार, आपै नो आप मिल रहिया हम मैं दुबदा मार, नानक नाम रते दुत्तर तरे भौजन बिकम संसार पौड़ी। मनमुख अंदर ना पालनी मुठे अहमते, चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते, सिमरत सास्त ना सोधनी मनमुख विगुते, बिन गुर किनै ना पायो हर नाम हर सत्ते, तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते। सलोक महला दूजा, आपे जाने करे आप आपे आने रास, किसे अग्गे नानका खले की कै अरदास। महला पहला, जिन किया तिन देखिया आपे जाने सोए, किसनो कहिए नानका जा घर वरते सब कोए। पौड़ी, सबे थोक वसार इको मित कर, मन तन होए निहाल पापा दह हर, आवन जाना चुके जन्म ना जाहे मर, सच नाम आधार सोग ना मोहे जर, नानक नाम निदान मन मह सांझ धार। सलोक महला पंजवा, माया मनो ना विसरे मांगे दम्मा दम, सो प्रभ चेतना आवई नानक नहीं करम। महला पंजवा, माया साथ ना चलई क्या लपटाव है अंध, गुर के चरण त्याए तू टूटे है माया बंद। पौड़ी, भाणे हुक्म मनायुन भाणे सुख पाया, भाणे सतगुर मेलियुन भाणे सच त्याया, भाणे जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया, जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया, नानक तिस शरणागती जिन जगते उपाया। सलोक महला तीजा, जिनको अंदर ज्ञान नहीं भै की नाही बिंद, नानक मुया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद। महला तीजा, मन की पत्री वाचनी सुखी हूं सुख सार, सो ब्राह्मण भला आखी है जे बूझे ब्रह्म विचार, हर सलाहे हर पढ़े गुर कै शब्द विचार, आया ओ परवान है जे कुल का करे उधार, अगे जात ना पुछिए करनी शब्द है सार, होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार, अंदर सुख ना होवे मन मुख जन्म खुआर, नानक नाम रते से उबरे गुर कै हित अपार। पौड़ी, आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा, जो हुक्म ना बूझे खसम का सोई नर कच्चा, जित पावे तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा, सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रच्चा, गुरमुख सदा सलाही है सब तिस दे जच्चा, ज्यो नानक आप नचाएंदा तिवही को नच्चा। शुद्ध मारू वार महला पंजवा, दखणे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तू चौ सज्जन मैंडिया देई से उतार, नैण महिंजे तरस दे कद पसी दीदार। महला पंजवा, नीहो महिंजा तऊ नाल ब्या नेह कुड़ावे देख, कप्पड़ भोग डरावणे जिचर प्री ना देख। महला पंजवा, उठी झालू कंतड़े हो पसी तौ दीदार, काजल हार तमोल रस बिन पसे हब रस शार। पौड़ी, तू सच्चा साहिब सच सच सब तारिया, गुरमुख की तो थाट
सिरज संसारिया हर आग्या हुए बेद पाप पुन विचारिया ब्रह्मा बिछन महेश त्रै गुण विस्थारिया नावखंड पृथ्वी साज हर रंग सवारिया वेकी जंत उपाय अंतर कल तारिया हेरा अंत न जाने कोई सच सिरजन हारिया तू जान है सब बेदयाप गुरमुख निस्तारिया दखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाडड़ा एक पूरी ना वे छोड़ जियो महिंजा तो मोहया कद पसी जानी तो हे महला पंजवा दुर्जन तू जल पहाड़ी विछोड़े मर जाहे कंता तू सौ सिजड़ी मैंडा हबो दुख अलाहे महला पंजवा दुर्जन दूजा पाओ है विछोड़ा हूं मैं रोग सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग पौड़ी तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन तुद सिरजिया सब संसार तू नायक सगल पौन तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल रौन तुदे अपन कोई ना सकै तू अबनासी जग उधरन तुद थापे चारे जुग तू करता सगल धरन तुदे आवन जाना किया तुद लेप ना लगे त्रिण जिस होवे है आप दयाल तिस लावे है सतगुर चरण तू होरत अपाए ना लभही अवनासी सृष्ट करन दखणे महला पंजवा जे तू बतह अंगणे हब तरत सुहावी होए हिकस कंत बाहरी मैंडी वात ना पुछे कोई महला पंजवा हबे टोल सहावणे सहो बैठा अंगण मल पही ना वंजे बिरथड़ा जो घर आवे चल महला पंजवा सेज वशाई कंतकू किया हब शिंगार इत्ती मांझ ना समावई जे गल पहरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही तू हुक्मी साजह सृष्ट साज समावही तेरा रूप ना जाई लखिया क्यों तुझह त्यावही तू सब मह वरत है आप कुदरत दिखावही तेरी भगत भरे भंडार तोट ना आवही एह रतन जवेहर लाल कीम ना पावही जिस होवे है आप दयाल तिस सतगुर सेवा लावही किस कदे ना आवे तोट जो हर गुण गावही दखणे महला पंजवा जामु पसी हठ मैं पिरी महिंजे नाल हब्बे दुख उलाहयम नानक नदर निहाल महला पंजवा नानक बैठा पखे वाऊ लम्मे सेवै दर खड़ा प्रिये तू जान महिंजा साऊ जोई साई मुह खड़ा महला पंजवा क्या गलायो भूष पर वेल ना जोहे कंत तू नानक फुला संधी वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यो पौड़ी सुगण सुजान स्वरूप तू सब मह वरतंता तू आपे ठाकुर सेवको आपे पूजनता दाना बीना आप तू आपे सतवंता जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता सब ब्रह्म पसार पसारे हो आपे खेलंता एहो आवा गौण रिचायो कर चोज देखंता तिस बहुड़ गर्भ ना पावही जिस देव है गुरमंता ज्यो आप चलाव है त्यों चल दे किस वस ना जनता दखणे महला पंजवा कुरिए कुरिए वैद्या तल गाड़ा महरीर वेखे शिकड़ थीम दो जाम खिसंदो पेर महला पंजवा सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे नानक आत सड़ी मांझ नैनू ब्या ढल पबण ज्यों जुम्यों।

तू वरना बाहरा, ये मानस जाने है दूर है, तू वरत है जाहरा, तू सब कट भोग है आप, तुद लेप ना लाहरा, तू पुरख अनंदी अनंत सब जोत समाहरा, तू सब देवा महदेव पदाते नरहरा, क्या अरादे जिहवा एक तू अबनासी अपर परा, जिस मेल है सतगुरे आप तिसके सब कुल तरा, सेवक सब कर दे सेव दार नानक जन तेरा, दखणे महला पंजवा गह डरड़ा तृण छाया, गाफल जले ओह पाहे जिन्ना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहे, महला पंजवा नानक पीठा पक्का साजिया धरिया आण मौजूद, बाजो सतगुरे अपने बैठा झाक दरूद, महला पंजवा नानक पुसरियां पकाइया पाइया थाले माहे, जिन्नी गुरु मनाया रज रज से खाहे, पौड़ी तुद जग मह खेल रचाया विच हों मैं पाइया, एक मंदर पंच चोर है नित करह बुरियाइया, दस नारी एक पुरख कर दसे साध लुभाइया, एन माया मोहनी मोहिया नित फिर है परमाइया, हाथा दोवै कीतियो शिव सकत वरताइया, शिव अगे सकति हारिया केवै हर पाइया, एक विचो ही तुद रखिया जो सतसंग मलाइया, जल विचो बिंब उठालियो जल माहे समाइया, दखणे महला पंजवा अगाहा कूतरांग पिछा फेर ना मुहडड़ा, नानक सिज अवेहा वार बहुड़ ना होई जन्मड़ा, महला पंजवा सज्जन मैंदा चाइया हब कही दा मित, हबे जानने अपना कहीं ना खाहे चित, महला पंजवा गुजड़ा लदम लाल।

सुदमार निवाड़ा गुर पौ जल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमति सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रिया वस कर दितियो सतवंता साड़ा जित लायन तितै लग दिया नह खिंचो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुरे अंदर वाड़ा गुरु नानक तुठा पाई रहो हर वसदा नेड़ा दखणे महला पंजवां जा मूं आवह चित तू ता हब्बे सुख लहाओ नानक मन ही मंज रंगावला प्री तिहिं जा नाओ महला पंजवां कप्पड़ भोग वकार ए हब्बे ही शार खाक लड़ेंदा तन के जो रत्ते दीदार महला पंजवां क्या तक है ब्यापास कर ही अड़े एक आधार थियो संतन की रेण जित लब्बी सुख दातार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाईए बिन सतगुर मनुआ ना लगे धर्म तीरा कल अंदरे एहो पापी मूल ना तगे एह कर करे सो एह कर पाए एक घड़ी मोहत ना लगे चारे युग मैं सोदिया बिन संगत अहंकार ना भगे हौ मैं मूल ना छुटई बिन साधु सत संगे टिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन भंगे जिन जन गुरमुख सेविया तिस घर दी बाण अपगे हर कृपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे दखणे महला पंजवां लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मेरा नसिर हठ मंझाऊ सो तनी चौंदो मुख अलाय महला पंजवां माणकू मोहे माऊ दिन्ना तनी अपाए ह्याओ मिंजा ठंडड़ा मुख हो सच अलाय महला पंजवां।

मन लोचै हर मिलन को क्यों दर्शन पाइया। मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाइया। मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साइया। मैं दस्यो हो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाइया। मन अर्प्य हो हौ मैं तजो हो इत पंत जलाइया। नित सेवे हो साहेब अपना सतसंग मलाइया। सबे आसा पूरिया गुरमहल बुलाइया। तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाइया। दखणे महला पंजवा मूथिया तख्त प्री महिंजे पातशाह। पाव मलावे कोल कमल जिवै बिगसाम दो महला पंजवा। प्रिया संदड़ी भुख मूलावण थी वितरा। जान मठाई इख बे पीड़े ना हुटै महला पंजवा। ठगा नीहो मतरोड़ जान गंधर्बा नगरी। सुख कटाऊ डुए इस पंधाणु घर कणी पौड़ी। अकल कला नह पाई है प्रभ अलख अलेखं। खट दर्शन भ्रमते फिरह नह मिलिय भेखं। वर्त करह चंद्रायणा से कितै ना लेखं। वेद पढ़ह संपूर्णा तत सार ना पेखं। तिलक कढ़ह इशनान कर अंतर का लेखं। भेखी प्रभु ना लभई बिन सच्ची सिखं। भूला मार्ग सो पवै जिस तुर मस्तक लेखं। तिन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखं। दखणे महला पंजवा सो निवाहू गड जो चलाऊ ना थीऐ। कार कूड़ा भी छड संभल सच धनी महला पंजवा। हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा। प्रगट थी आयाप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा। मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाओ। नानक दरगाह मनी है मिली न थावे थाओ पौड़ी। बाहर भेख ना पाई है प्रभ अंतर जामी। इक सहार जियो बाहरी सब फिरै निकामी। मन रता कटंब स्यो नित गर्भ फिरामी। फिर है गमानी जग मह क्या गर्भ है दामी। चलदिया नाल ना चलई खिन जाए बिलामी। विचर

पाया राम ते भवह न बारे बार रहाउ। झूठा जग डहके घना दिन दोए बर्तन की आस। राम उदक जेह जन पिया तेह बहुर न पई प्यास। गुर प्रसाद जेह बूझिया आसा ते भया निरास। सब सच नदरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार। कहो कबीर कंचन भया भ्रम गया समुन्द्र पार। उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समा वहंगी। सुन है सुन मिलया समदर्शी पवन रूप होए जा वहंगे। बहुर हम काहे आवहंगे। आवन जाना हुक्म तिसै का हुक्म बुझ समा वहंगे। रहाउ जब चूकै पंच धात की रचना ऐसे भ्रम चका वहंगे। दर्शन छोड़ भये समदर्शी एको नाम त्या वहंगे। जित हम लाए तित ही लागे तैसे कर्म कमा वहंगे। हर जी कृपा करे जो अपनी तौ गुर के शब्द समा वहंगे। जीवत मरहु मरहु पुन जीव हो पुनरप जन्म ना होई। कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहया लिव सोई। जो तुम मोह को दूर करत हो तौ तुम मुक्त बताव हो। एक अनेक होए रहो सगल में है अब कैसे परमाव हो। राम मोह को तार कहां ले जई है सो दो मुक्त कहां देओ कैसी। कर प्रसाद मोहे पाई है रहाव। तारन तरन तबे लग कही है जब लग तत ना जानिया। अब तो बिमल भये घट ही मह कह कबीर मन मानिया। जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावन। काहे की जत है मन पावन जब जम आए केस ते पकरे। तह हर को नाम छडावन रहाओ। काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन। कह कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन। देही गावा जियो तर महतो बसह पंच किरसाना। नैनू नकटू सर्वनू रसपत इंद्री कहया नाम।

धर्मराय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पहारी पांच किरसानवा भाग गए लह बांधे हो जी हो दरबारी कह कबीर सुनो रे संत हो खेत ही करो निबेरा अब की बार बख्श बंदे कहो।

प्रसाद अनभव किने ना देखिया बैरागी अड़े बिन पै अनभव होए बना हम्बै सहो हदूर देखे ता भव पवै बैरागी अड़े हुक्मै बूझे ता निरपो होए बना हम्बै हर पाखंड ना कीजई बैरागी अड़े पाखंड रत्ता सब लोक बना हम्बै तृष्णा पास ना छोड़ी बैरागी अड़े ममता जालिया पिन बना हम्बै चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े जे मन मृतक होए बना हम्बै सतगुर बिन बैराग ना होवी बैरागी अड़े।

कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देओ जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद चार मुक्त चारै सिद्ध मिलके दूल्हा प्रभु की शरण परेउ। मुक्त भयो चौहू जुग जान्यो जस कीरत माथे छतर धरेउ। राजा राम जपत को ना करेउ गुरु उपदेश साध की संगत भगत भगत ताको नाम परेउ रहाउ। शंख चक्र माला तिलक विराजत देख प्रताप जम डरेउ। निरपौ भये राम बल गर्जित जन्म मरण संताप हिरेउ। अमरीक को दियो अपै पद राज पपीखन अधिक करेउ। नौनिग ठाकुर दई सुदामे त्रू अटल अजहू ना टरेउ। भगत हेत मारेउ हरनाखस नरसिंह रूप होए दे धरेउ। नामा कह भगत बस केसव अजहू बल के द्वार खरु मारू कबीर जियो। दीन बसारे उरे दीवाने दीन बसारे उरे पेट भरियो पशुआ ज्यो सोयो मनुख जन्म है हारियो रहाओ। साध संगत कबहू नहीं कीनी रचियो तंदै झूठ सवान सूकर बायस जिवै भटकत चालियो ऊठ। आपस को दीर्घ कर जान औरन को लग मात मनसा बाचा कर्म ना मैं देखे दोजक जात। कामी क्रोधी चातुरी

दुख मुग्ध ग्वार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देओ जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया, नाद सत पूरिया, सूर सत खोड़ सा दत किया। अबाल बाल तोड़िया, अचल चल थपिया, अघड़ घड़िया तहां अपियो पिया। मन आदि गुण आदि वखाणिया, तेरी दुबदा दृष्ट समानिया। रहाओ अर्ध को अर्धया, सर्द को सर्दया, सलल को सलल सम्मान आया। बदत जय देव को रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम से

तन जोगन का गर्भ ना कीजै, कागज ज्यों गल जाएगा। जो जम आए केस गह पटकै, ता दिन किस ना बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे,

राग मारू बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा, माता शतर तरै रहाओ। जाकी शोत जगत को लागे, तां पर तुही तरै, नीचे है ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तलोचन,

सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जा कीरी चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध नव निध कर तल ता कै हर हर हरना जपस रसना अवर सब छाड बचन रचना रहाव नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अक्षर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाद अपाद रहत हुए बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन्म मरन पै भागी तुखारी संत महला पहला बारह माहा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सुन किरत करमा पुरब कमाया सिर सिर सुख सहमा देह सो तू भला हर रचना तेरी क्या गत मेरी हर बिन घड़ी ना जीवा प्रिय बाज दहेली कोए ना बेली गुरमुख अमृत पीवा रचना राच रहे निरंकारी प्रभ मन कर्म सकर्मा नानक पंथ निहाले सा धन तू सुन आत्म रामा बाबीहा प्रियो बोले को किल बाणिया सा धन सब रस चोले अंक समाणिया हरे अंक समाणी जा प्रभ पाणी सा सुहागण नारी नव कर थाप महल कर ऊंचो निज कर वास मरारी सब तेरी तू मेरा प्रीतम निसबासुर रंग रावे नानक प्रियो प्रियो चवे बबीहा कोकिल शब्द सुहावे तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम अपने मन तन रवतर वन्ने घड़ी ना बिसरे क्यों घड़ी बिसारी हों बलिहारी हों जीवा गुण गाई ना कोई मेरा हों किस फेरा हर बिन रहन ना जाए ओट गही हर चरण निवासी भये पवित्र शरीरा नानक दृष्ट धीरग सुख पावे गुर शब्दी मन तीरा बरसे अमृत धार बूंद सुहावनी साजन मिले सहज सुभाए हर स्यो प्रीत बणी हर मंदर आवे जा प्रभ पावे तन उभी गुण सारी घर घर कंत रवे सुहागण हों क्यों कंत वसारी उन्नव घन छाए बरस सुपाए मन तन प्रेम सुखावे नानक वरसै अमृत बाणी कर कृपा घर आवे चेत बसंत भला भवर सुहावड़ी बन फूले मंज भार मैं फिर घर बहुड़ै फिर घर नहीं आवे तन क्यों सुख पावे बिरह विरोध तन सीजै कोकिल अंब सुहावी बोले क्यों दुख अंक सही जै पवर पवंता फूली डाली क्यों जीवा मर माए नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वार कर तन पाए वैसाख भला साखा वीस करी तन देखे हर द्वार आवु दया करी कर आओ प्यारे दुत्तर तारे तुद बिन अड ना मोलो कीमत कौन करे तुद पावा देख दिखावे ढोलो दूर ना जाना अंतर माना हर का महल पछाना नानक वैसाखी प्रभ पावे सुरत शब्द मन माना माह जेठ भला प्रीतम क्यों बिसरे थल तप है सर भार सा तन बिनो करे तन बिनो करेंदी गुण सारेंदी गुण सारी प्रभ पावा साचे महल रह बैरागी आवन देहे ता आवा ने माणी ने ताणी हर बिन क्यों पावे सुख महली नानक जेठ जाने तिस जैसी कर्म मिले गुण गहली असाड़ भला सूरज गगन तपे धरती दुख सह सुख है अगन पखे अगन रस सुख है मरिये धूख है पी सो कीर्तना हारे रथ फिरे छाया तन ताके तीद लवे मंज बारी
अवगुण बांध चली दुख आगै सुख किस साच संभाले नानक जिसनो एहो मन दिया मरण जीवन प्रभ नाले सावन सरस मना कण वरस है रूते आए मैं मन तन सहो भावे फिर परदेस सिधाए फिर घर नहीं आवे मरिए हावे दामन चमक डराए सेज अकेली खरी दोहेली मरण पया दुख माए हर बिन नींद भूख कहो कैसी कापड़ तन ना सखावे नानक सा सुहागन कंती फिर कै अंक समावे पादो परम पुली पर योबन पछताणी जल थल नीर भरे बरस रुते रंग माणी बरसै निसकाली क्यों सुख बाली दादर मोर लवंते प्रियो प्रियो चवै बबीहा बोले पोयंगम फिर डसंते मच्छर डंग शायर भर सपर बिन हर क्यों सुख पाई नानक पूछ चलो गुरे अपनी जह प्रभ तह ही जाइए असन आओ पिरा सा तन झूर मुई ता मिलिए प्रभ मेले दूजे पाए खुई झूठ विगुती ता फिर मुती कुका कहा से फुले अगे काम पिछे रुत जाडा देख चलत मन डोले दह दिस साख हरी हरियावल सहज पक्कै सो मीठा नानक असुन मिलो प्यारे सतगुर पए बसीठा कत्तक किरत पया जो प्रभ पाया दीपक सहज बलै तत जलाया दीपक रस तेलो धन पिर मेलो तन अमा है सरसी अवगुण मारी मरै ना सीजै गुण मारी ता मरसी नाम भगत दे निज कर बैठे अजहो तनाड़ी आसा नानक मिल हो कपट दर खुल हो एक घड़ी खट मासा मगर माहो भला हर गुण अंक समावे गुणवंती गुण रवे मैं फिर निश्चल भावे निश्चल चतुर सुजान बधाता चंचल जगत सवाया ज्ञान ध्यान गुण अंक समाणे प्रभ पाणे ता पाया गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागै नानक सा तन नाह प्यारी अब भगती फिर आगै पोख तखार पड़ै वन त्रिण रस सुख है आवत की नाही मन तन वसह मुखे मन तन रव रहे आ जग जीवन गुर शब्दी रंग माणी अंडज जेरज सेतज उत्पुज कट कट जोत समाणी दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो नानक रंग रवै रस रसिया हर सिओ प्रीत स्नेहो माग पनीत पई तीरथ अंतर जानिया साजन सहज मिले गुण गह अंक समानिया प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके तुद पावा सर नावा गंग जमन तह बेणी संगम सात समुंद समावा पुन दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता नानक माघ महारास हर जप अठ सठ तीरथ नाता फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया अन दिन रहस पया आप गुआया मन मोह चुकाया जां तिस फाया कर कृपा कर आऊ बहुते वेस करी पिर बाजू महली लहा ना थाऊ हार डोर रस पाट पटंबर पिर लोड़ी सिंगारी नानक मेल लई गुर अपने घर वार पाया नारी दे दस महारुती थिती वार भले घड़ी मूर्त पल साचे आए सहज मिले प्रभ मिले प्यारे कारज सारे करता सब बिद जाने जिन शिंगारी तिसह प्यारी मेल पया रंग माने।
कर सेज सुहावी जा फिर रावी गुरमुख मस्तक भागो नानक ऐन सरावै प्रीतम हर वार फिर सुहागो। तुखारी महला पहला पहला पहरा नैन सलोनड़िए रैन अंधियारी राम।

चूकी अभमानी राम अन दिन भोर भया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुर दिया हर चरणी लिव लागे प्रगति जोत जोत मह जाता मनमुख परम पलानी नानक भोर भया मन मानिया।

है साची सच मत तेरी साजन देश वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाई है पिर पारी सतगुर शब्दी मिला विछुनी तन मन आगे राखे नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखे महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजे अन दिन रतड़िए सहज मलीजे सुख सहज मलीजे रूस ना कीजे गर्भ निवार समाणी साचे राती मिले मलाई मनमुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी फो

लाल रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया अवरना दूजा पाले गुर अलख लखाया जां तिस पाया जां प्रभ कृपा धारी जग जीवन दाता पुरख बधाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तार है तरिये सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे शब्दे रव रहे आ गुर रूप मरारे त्रे पवन तारे।

थाप उथापि तिस भावै सो होवै नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवै गुण गुणह समाणी मस्तक नाम निशानु सच साच समाया चूका आवण जानु सच साच पछाता सच राता

साचा गुरमुख तरिये तारी तुखारी महला पहला ए मन मेरे आ तू समझ अचेत अणिया राम ए मन मेरे आ छड़ अवगण गुणी समाणिया राम बहु साध लुभाणी किरत कमाणी विछड़िया नहीं मेला क्यों दुत्तर तरिये जम डर मरिये जम का पंथ देहला मन राम नहीं जाता सांझ पर भाता अब कट रुदा क्या करी बंधन बांधे।

लालाराम हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अग्न भांदे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो सखा सहन प्यार प्रीतम नाम हर।

नाम गुण गाए राम रसाए रसी है गुर ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघारे।

गुर शब्द सुरत लंघावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो।

अन बिन गुरु गोपाल त्याई, हम सतगुरु बिटहु कुमाए, हम पाथर गुर नाव, बिख भवजन तारिय राम, गुरदेव हो शब्द सुपाए, मैं मूड़ निस्तारिय राम, हम मूड़ मुगद।

अनेक जन्म पाप कर भरमी हुण तौ शरणागत आई दया करहु रख ले वो हर जियो हम लाग हैं सतगुर पाए गुर पारस हम लोह मिल कंचन होया राम ज्योति ज्योत मलाई काया गढ़ सोहया राम काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया क्यों सास ग्रास बसारी है अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हों सतगुर कै बलिहारी है सतगुर आगे सीस भेट देउ जे सतगुर साचे पावे आपे दया करहु प्रभ दाती नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा जो तुम प्यावे जगदीश ते जन पौ बिखम तरा बिखम पौ तिन तरिया सुहिला जिन हर हर नाम त्याया गुरवात सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मलाया ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी हर कृपा कर धरनी धरा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया तू अलख अपेओ अगम गुर सतगुर बचन लहया धन धन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे जा बह गुरमुख हर नाम बोलह जा खड़े गुरमुख हर हर कहया तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया सेवक जन सेवह ते प्रवान जिन सेविया गुरमत हरे तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे तिनके पाप दुख सब बिन से जिन मन चित एक अराध्या तिनका जन्म सफलियो सब किया करते जिन गुरबचनी सच भाखिया ते धन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे सेवक जन सेवह ते प्रवान जिन सेविया गुरमत हरे तू अंतर जामी हरे आप ज्यो तू चलावह प्यारे हो तिवै चला हमरे हाथ किश नाही जा तू मेलह ता हों आए मिला जिनको तू हर मेलह स्वामी सब तिनका लेखा छुटक गया तिनकी गणत ना करे ओहो को पाई जो गुरबचनी हर मेल लया नानक दयाल हुआ तनि ऊपर जिन गुर का पाणा मन्या भला तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चला वह प्यारे हो तिवै चलना तुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता श्रिष्ट नाथ तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख माथ जिन को तुर हर लिखिया स्वामी तिन हर हर नाम अराध्या तिनके पाप एक निमख सब लाथे जिन गुरबचनी हर जापया तन तन ते जन जिन हर नाम जपया तिन देखे हो भया सनाथ तू जग जीवन जगदीश सब करता श्रिष्ट नाथ तू जल थल मही अल भरपूर सब ऊपर साच धनी जिन जपया हर मन चीत हर जप जप मुक्त घणी जिन जपया हर ते मुक्त पराणी तिनके उजल मुख हर द्वार ओए हल्त पल्त जन भये सोहेले हर राख लिये रखण हार हर संत संगत जन सुनो पाई गुरमुख हर सेवा सफल बनी तू जल थल मही अल भरपूर सब ऊपर साच धनी तू थान थनंतर हर एको एक रविया वण त्रिण त्रे भवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया सब चवह हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे सो धन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते पावे सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सद चवया तू थान तनंतर हर एक हर एको एक रवया।
तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है जिसका मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिक है हर गुण हृदय टिक है तिस कह जिस अंतर भव भावनी होई बिन भय किने ना प्रेम पाया बिन भय पार ना उतरिया कोई भवो भावो प्रीत नानक किसह लागे जिस तू अपनी कृपा करहे तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है तुखारी महला चौथा नावण पुरब अपीच गुर सतगुर दर्श भया दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन मह बिनसी हर पाया प्रभ अवनासी हर आप करत पुरब किया सतगुरु कुल खेत नावण गया नावण पुरब अपीच गुर सतगुर दर्श भया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अन दिन भगत बणी खिन खिन निमुख विखा हर हर भगत बणी प्रभ केरी सब लोक वेखण आया जिन दर्श सतगुर गुरु किया तिने आप हर मेलाया तीर्थ उदम सतगुरु किया सब लोक उदरन अर्था मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ खबर भई संसार आए त्रै लोआ देखने आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नास गुआया जोगी दिगंबर सन्यासी खट दर्शन कर गए गोष्ट ढोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया जगाती मिले दे भेट गुर पिछे लंघाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम त्याया गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जगाती नेड़ ना आया सब गुरु गुरु जगत बोले गुर कै नाए लै सब छुटक गया दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लया आड़ दाम किस पया ना बोलक जगातिया मोहन मुंदन पई भाई हम करहें क्या किस पास मांग है सब

तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिले आए नगर महाजना गुर सतगुरु ओट गही गुर सतगुरु गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद।

गुवाया, कीर्तन पुराण नित पुन हो वह, गुरबचन नानक हर भगत लही, मिल आए नगर महाजना, गुर सतगुर ओट गही। तुखारी संत महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कोल कमाई लालना गुर मन दीना, सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना, एहो मन पीना ज्यों जल मीना, लागा रंग मरारा कीमत कही ना जाई ठाकुर।

प्रभु मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई।

गुरमुख जाता सगल रंग बन आए सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फरमाए जां को कृपा करी जगदीश्वर किन साध संग मन जिता कहो नानक जीअड़ा बलिहारी जियो पिंड तौ दिता निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ताक लिया मोहे पापी पड़दा ताकन हारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अवनाशी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख बिधाते उस्तत कहन न जाए तुम्हारी कौन कहे तू कद का।

इन बेद मेरा हर प्रभ लहोरे रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस, इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत की जय हर।

संत संग जागी प्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाउ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अब गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी देख दमोदर रहस मन उपजेउ नानक प्रिय अमृत बानी केदारा महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दीन बिनो सुन दयाल पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ रात हो कृपाल रहाओ अनक जतन गवन करो खट कर्म जुगत ध्यान धरो अपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल सरन बंदन करना पति भाव हरन हर हर हर हर।

गीत लागी मन पीतर मांगन को हरदान रहाव सुखदाई पूर्ण परमेश्वर कर कृपा राखु मान देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान गोपाल दयाल गोविंद दामोदर निर्मल कथा ज्ञान नानक को हर कै रंग रंग हो चरण कमल संग ध्यान केदारा महला पंजवां हर के दर्शन को मन चाओ कर कृपा सत संग मलाव हो तुम देव हो अपनो नाओ रहाओ करो सेवा सत पुरख प्यारे जत सुनिए तत मन रहसाओ वारी फेरी सदा कुमाई कवन अनूप तेरो ठाओ सर्व प्रित पाल है सगल समाल है सगलिया तेरी शाओ नानक के प्रभ पुरख बधाते कट कट तुझह दिखाओ केदारा महला पंजवा प्रिय की प्रीत प्यारी मगन मने मह चितवो आसा नैनो तार तुहारी रहाओ ओए दिन पहर मूर्त पल कैसी ओए पल करी के हारी खुले कपट तपत भुज तृष्णा।

अहम बुद्ध तजावहु अपनी भगत देह दयाला वडभागी नानक हर पावहु किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारथ जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाउ धन जोबन संपै सुख भोगवै संग

मन समरथ अकाथ अगोचर हर सिमरत दुख लाथ नानक दीन धूर जन बांछत मिले लिखत धुर माथ किदारा महला पंजवां घर पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाही मन ते हरी अब एह प्रीत महा प्रबल भई आन बिखै जरी रहाउ बूंद कहां त्याग चात्र मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना तेव एहे परी महानाद करंक मोहयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध धरी केदारा मोहल्ला पंजवा प्रीतम बसत रिद मह खोर परम भीत नवार ठाकुर गह लिहो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारुह तूर संत संग हर चरण बोहित उदर ते लै मोर गर्भ कुंट मह जिनह धारियो नहीं बिखै बन मह होर हर सकत सरन समरथ नानक

रहाउ। त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान, मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर परमान। सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान, नाम निधान लाभ नानक बस्त एह परवान। केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार, कल कलेश ना कश व्यापै संत संग व्यवहार। रहाउ कर अनुग्रह आप राखियो नह उपजतो बेकार, जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नह संसार। सुख मंगल आनंद हर हर।

जीवन रूप बसार जीव है, तेहे कत जीवन होत रहाउ। खात पीत अनेक बिंजन, जैसे भार बाहक खोत। आठ पहर महाश्रम पाया, जैसे बिरख जंती जोत। तज गोपाल जे आन लागे, से बहु

पूर रहया सर्वतन में सो पुरख बधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नदर निहालिया जो सरनी आवै सर्ब सुख पावै तिल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निद गाई सहज सुपाई प्रेम महारस माता नानक दास तेरी सरनाई तू पूरन पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदिया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुसभागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यो देहुरी कत सोभा पावे दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदिया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतोह ना जाए न खेदिया हर स्यो जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावे ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा धारे निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख बिचारे नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वशल सुन अंचलो गहया घट घट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने।

साधु विवर्जत तजुह मान अबमाना लोहा कंचन सम कर जान है ते मूर्त भगवाना तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जत हर पद चीनै सोई रहाओ राजगुण तम गुण सत गुण कही है एह तेरी सब माया चौथे पद को जो नर चीनै तिन ही परम पद पाया तीर्थ वर्त नेम सुच संयम सदा रह निहकामा तृष्णा यर माया भ्रम चूका चितवत आत्म रामा जेह मंदर दीपक परगासिया अंधकार तह नासा निरपो पूर रहे भ्रम भागा कह कबीर जन दासा किन्ही बन जिया कांसी तांबा

माया निर्मूलक छूट गई संसारी रहाओ। साचे लाए तो सच लागे, साचे के व्यवहारी, साची बस्त के भार चलाए, पहुंचे जाए भंडारी। आपे रतन जवाहर मानक, आपे है पासारी, आपे दह दिस आप चलावे, निश्चल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा, ज्ञान गुण भर डारी, कहत कबीर सुनो रे संत हो, निभही खेप हमारी। री कलवार ग्वार मूड मत, उल्टो पवन फरावो, मन मतवार मेर सर पाठी, अमृत धार चुआवो। बोलो भैया राम की दोहाई, पीवो संत सदा मत दुर्लभ, सहजे प्यास बुझाई रहाओ। पै बिच पाओ पाए को बूझ, हर रस पावे पाई, जेते घट अमृत सब ही मह, पावे तिसह प्याई। नगरी एकै नौ दरवाजे, तावत बरज रहाई, त्रिकुटी छूटै दसवां दर खूलै, ता मन खीवा पाई।

भाऊ भगत सिंह काज न कछु है, मेरो काम दीवान राम बसारियो है अभमान। कनक कामनी महासुंदरी पेख पेख सच मान रहाओ, लालच झूठ बिकार महामद एह बिद औध बिहान। कह कबीर अंत की बेर आई लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मतिया संग ना कछ लह जाए रहाओ। गहरी बैठी मेहरी रोवे द्वारे लो संग माए, मरहट लग सब लोग कटंब मिल हंस अकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन बहुर ना देखे आए, कहत कबीर राम की ना सिमर हो जन्म अकारथ जाए। राग के दारा बाणी रविदास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। खट कर्म कुल संयुगत है हर भगत हृदय नाही, चरनार बिंद ना कथा भावे सुपच तुल सम।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालू प्राणी, हर जप जन्म गयो, साच शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म पयो रहाओ, तन मह काम क्रोध हौ ममता, कठन पीर अत भारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तर तू तारी, बहरे करन अकल पई होशी, शब्द सहज नहीं बूझिया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया, रह उदास आस नरासा, सहज ध्यान बैरागी, प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिव लागी, भैरों महला पहला, पूंदी चाल चरण कर खिसरे, तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद करन पए बहरे, मनमुख नाम ना

जिहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके। संत जना की निंदा व्यापस, पशु भये कदे होहे ना नीके। अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाए। जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए। अन को दर कर कबहू ना जानस, एक को दर सचियारा। गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कह विचारा। भैरू महला पहला, सगली रैन सोवत गल पाही। दिन सजंजाल गुआया, खिन पल घड़ी नहीं प्रभ जानिया। जिन एहो जगत उपाया, मन रे क्यों छूटस दुख भारी। क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपो गुणकारी। रहाओ ऊंदो कवल मनमुख मत होशी, मन अंधे सिर धंधा। काल बकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गल फंदा। डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, शब्द सुरत नहीं पाई। शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंध लो तंद कमाई। खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूणे। शब्द बीचार राम रस चाखिया, नानक साच पतीने। भैरू महला पहला, गुर कै संग रह दिन राती। राम रसल रंग राता, अवर ना जानस शब्द पछाणस। अंतर जान पछाता, सो जाने ऐसा मैं मन भावे। आप मार

साच रते सच अमृत जिहवा मिथ्या मैल न राई निर्मल नाम अमृत रस चाखिया शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरु।

ए जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे निफल मर भ्रम ना रहाऊ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी। राम नाम बिन उर्ज मरे दंडक मंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गमन अत भ्रमण करे। राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सो पार परे। जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न भया। राम नाम बिन तृप्त ना आवे किरत कै बांधे भीख भया। जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक झोल पिया। राग भैरो महला तीजा चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जात का गर्भ ना करियो कोई ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा इस गर्भ पे चल है बहुत बेकारा। रहाऊ चारी वर्ण आख सब कोई ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा बहु विद भांडे घड़ै कुमारा। पंच तत् मिन देही का अकारा घट वद को करे बीचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई। भैरो महला तीजा जोगी गृही पंडित भेख धारी ए सूते अपने अहंकारी। माया मद माता रहया सोई जागत रह ना मूसे कोई। रहाउ सो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओह वसगत करे। सो जागे जो तत बीचारे आप मरे अवरा नह मारे। सो जागे जो एको जाने परकिरत छोड़े तत्।

तिस भावै तां करी भूग तन मन साची साहिब जोग रहाउ उस्तत निंदा करे क्या कोई जाय आपे वरतै इको सोई गुर प्रसादी पिरम कसाई मिलोगी दयाल पंच शब्द वजाई भणत नानक करे क्या कोई जिसनो आप मलावै सोए भैरों महला तीजा सो मुन जे मन की दुबदा मारे दुबदा मार ब्रह्म बिचारी इस मन को कोई खोजो हो पाई मन खोजत नाम नौ निध पाई रहाओ मूल मोह कर करतै जगते पाया ममता लाए भरम भुलाया इस मन ते सब पिंड पराणा मन कै विचार हुक्म बुझ समाणा कर्म होवै गुर कृपा करै एहो मन जागै इस मन की दुबदा मरै मन का सुभाओ सदा बैरागी सब मह वसै अतीत अनरागी।

मन आई। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तिन निज घर वास्ता पाया। पूरे सतगुरु कृपा कीनी विचो आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। नानक निहचल साचा एको ना ओह मरे ना जाया। पैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझै है रोग गवावै है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाउ ममता काल सब रोग व्यापी। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ न आवै। जिन हर राखिया उर धारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छ सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। भैरों महला तीजा दुख विच जम्मे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे न निकले बिस्टा माहे समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया रहाउ गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिले वडियाई। जिसनो मन वसाए सतगुर भेटे तां फल पाए। सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई। जिन सतगुर पूरा त्याया नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है। जिन्नी राम नाम चित लाया भैरों महला तीजा। शब्द बीचारी सो जन साचा जिनकै हिरदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती ता तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाई। पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहा। मनमुख मूल गवावे है लाभ मांग है लाहा लाभ किडू होई। जम काल सदा है सिर ऊपर दूजे पाए पत खोई। बहले भेख पवह दिन राती हमें रोग ना जाई। पढ़ पढ़ लूजह है बाद बखान है मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेव है परम गत पाव है नाम मिले वडियाई। नानक नाम जिन्ना मन वसिया दर साचै पत पाई। भैरों महला तीजा मनमुख आसा नहीं उतरै दूजे भाए खुआई। उदर नै सान ना परियै कबहू तृष्णा अग्न पचाई। सदा आनंद राम रस राती हिरदय नाम दुबदा मन भागी। हर हर अमृत पी त्रिपताते रहाउ। आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिन साजी सिर सिर तंदै लाई।

मन वसाई आप तरे सगले कुल तारी जिन्नी राम नाम लिवलाई मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगुण शब्द जलाई जिन मन वसिया से जन सोहे हृदय नाम वसाई घर दर महल सतगुरु दिखाया रंग सोरलिया माण जो किश कह सो भला कर मान नानक नाम बखाण भैरों महला तीजा मनसा मन है समाए लै गुर शब्दी विचार गुर पूरे ते सो जी पवे फिर मरे ना वारो वार मन मेरे राम नाम आधार गुर प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पजामन हार रहाऊ सब मह को रव रहिया गुर बिन बूझ ना पाई गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अन दिन हर गुण गाई सुख दाता हर एक है होर थै सुख ना पाए सतगुर जिनी ना सेविया दाता से अंत गए पछताए सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति ज्योत समाए भैरों महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना भूला चोटा खाई मर मर जमे सदा दुख पाई डर की खबर ना पाई मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे भवजल तरना रहाउ पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूख अत बहुती भौंकत फिरे दर बार गुर कै शब्द मरह फिर जीव है तिनको मुक्त द्वार अंतर शांत सदा सुख होवे हर राखिया उरतार ज्यों तिस भावे तिवें चलावे करना किछु ना जाई नानक गुरमुख शब्द संभाले राम नाम वडियाई भैरों महला तीजा हम मैं माया मोहे खोआया दुख खटे दुख खाए अंतर लोभ हलक दुख भारी बिन विवेक परमहाय मन मुख त्रिक जीवन संसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर स्यों कदे न लागे प्यार रहाउ पशुआ कर्म करे नहीं बूझै

फेर चलै तुद नाली, हर हर नाम जपो बनवाली, कर किरपा मेलो सत संगत, टूट गई माया जम जाली, रहाउ गुरमुख सेवा काल जिन काली, तिस घड़ियै शब्द सची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली, हम बारक हर पिता।

सो तुद मिलसी जन नानक क्या ए जंत विचारी भैरू महला चौथा सत संगत साई हर तेरी जित हर कीरत हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम श्री मह नित चरनी जग जीवन हर त्याए तरनी अनेक असंख नाम हर तेरे ना जाई जेवायत गणने रहाऊ गुरसिख हर बोलो हर गावहु ले गुरमत हर जपने जो उपदेश सुने गुर केरा सो जन पावे हर सुख घने धन सो वंश धन सो पिता धन सो माता जिन जन जने जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर से साची दरगाह हर जन बने हर हर अगम नाम हर तेरे विच भगता हर धरनी नानक जन पाया मत गुरमत जप हर हर पार पवनी भैरों महला पंजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगली थीत पास डार राखी अष्टम थीत गोविंद जन्मासी परम भूले नर करत कचराएन जन्म मरण ते रहत नारायण रहाव कर पंजीर खवायो चोर ओह जन्म ना मरे रे साकत ढोर सगल पराध देह लो रोनी सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी जन्म ना मरे ना आवे ना जाए नानक का प्रव रहो समाए भैरों महला पंजवा उठत सुखिया बैठत सुखिया पौ नहीं लागे जा ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी रहाव सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रभ तू वर्तनता कर सुख वसया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया भैरू महला पंजवा वर्त ना रहो ना महर मदाना तिस सेवी जो रखे निधाना एक गुसाई अल्लोह मेरा हिंदू तुर्क दुहान बेरा रहाव हज काबे जाओ ना तीर्थ पूजा एको सेवी अवर ना दूजा पूजा करो ना निवाज गुजारो एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण कहो कबीर एहो किया वखाना गुर पीर मिल खुद खसम पछाना भैरू महला पंजवा दस मिर्गी सहजे बंद आनी पांच मिर्ग बेदे शिव की बानी संत संग ले चढ़ियो शिकार मृग पकरे बिन घोर हथियार रहाओ अखेर बिरत बाहर आयो ताए अहेरा पायो कर कह गाए मृग पकरे कर आने हाट चुख चुख ले गए बांडे बाट एहो अहेरा कीनो दान नानक कह कर केवल नाम भैरू महला पंजवा जे सौ लोच लोच खावाया साकत हर हर चीत नाया संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गति रहाव पाथर को बहु नीर पवाया नह पीजे अधिक सुकाया खट शास्त्र मूर्ख है सुनाया जैसे दह दिस पवन चुलाया बिन कण खलहान जैसे गाहन पाया त्यों साकत ते को ना ब्रासाया कित ही लागा जित को लाया कहो नानक प्रभ बणत बढ़ाया भैरू महला पंजवा जियो प्राण जिन रचियो शरीर जिन्ह अपाए तिस कौ पीर गुर गोबिंद जी कै काम हलत पलत जाकी सद शाम रहाओ प्रभ आराधन निर्मल रीत साध संग बिनसी विपरीत मीत हीत धन नह पारना तन

नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौण रहाउ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मलाई नानक प्रभ शरणागत आई भैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाथ गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी गत होवै।

अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप पई सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पहरो महला पंजवा बन मह पेखियो तृण मह पेखियो ग्रह पेखियो उदासाई दंड धार जट धारै पेखियो।

रस मंगल गुण गाय रहाउ जोग भेख सन्यासै पेखियो जत जंगम कापड़ाए तपी तपी सर मुन मह पेखियो नट नाटक निरताए चहो मह पेखियो खट मह पेखियो दस अस्ती सिमरताए सब मिल एको एक वखान है तौ किस्ते कहूं दुराए अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाई जन नानक तिन कह बल बल जाई जेह घट प्रगति आय भैरु महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिक संचै नित डरता फिरै है निकटे अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया।

पर ग्रह जाय दरबे रह मिथ्या कर खाई पैठ गौरी हर संग न जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट न जाने बोले कूड़ माया मोहि मूठा है मूड अंतर वस्त संतर जाए बाज गुरु है परम पुलाई जिस मस्तक कर्म लिखिया लिलाट।

आऊ जिन सेविया निरपौ सुख दाता तिन पौ दूर किया एक प्राता जो तू करह सोई फुन होए मारे न राखे दूजा कोई क्या तू सोचे है मानस बाण अंतर जामी पुरख सुजान एक टेक एको आधार सब किस जान है सिरजनहार जिसे ऊपर नदर करे करतार तिस जन के सब काज सुवार तिसका राखा एको सोए जन नानक अपड़ ना साके कोई पहरों महला पंजवा तव कड़िया जे होवे बाहर तव कड़िया जे विसरे नरहर तव कड़िया जे दूजा भाई क्या कड़िया जा रहया समाय माया मोहे कड़े कड़ पचिया बिन नामे भ्रम भ्रम भ्रम खपिया रहाओ तव कड़िया जे दूजा करता तव कड़िया जे अन्याय को मरता तव कड़िया जे किस जाने नाहीं क्या कड़िया जा भरपूर समाही तव कड़िया जे किस हुए तिंगाने तव कड़िया जे फूल रिजाने गुर कहया जो हुए सब प्रभते तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते प्रभ तू है ठाकुर सब को तेरा ज्यो भावे त्यो करह निबेरा दुतिया नास्त इक रहया समाए राखो पैज नानक सरनाई पहरू महला पंजवा बिन बाजे कैसो निर्तकारी बिन कंठे कैसे गावन हारी जील बिना कैसे बजै।

बिरथे सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया, रहाओ बिन जिहवा कहां को बकता।

गया कहां कोई पंडित, बिन अमरै कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हौ त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान।

रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रहाओ जिहवा रोग मीन ग्रसियानु।

फिर फिर जोनी परमै रोग बंद रहन रती ना पावै बिन सतगुरु रोग कतह ना जावै पार ब्रह्म जिस कीनी दया बाहां पकड़ रोग हो काद लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मटाया पैरों महला पंजवा चीत आवे ता महा आनंद चीत आवे ता सब दुख भंज चीत आवे ता श्रद्धा पूरी चीत आवे ता कबह ना झूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपुरे दियो रंग लाए रहाउ चीत आवे ता सर्ब को राजा चीत आवे ता पूरे काजा चीत आवे ता रंग गुलाल चीत आवे ता सदा निहाल चीत आवे ता सद तनवंता चीत आवे ता सद निपरंता चीत आवे ता सब रंग माणे चीत आवे ता चूकी काणे चीत आवे ता सहज घर पाया चीत आवे ता सुन समाया चीत आवे सद कीर्तन करता मन मानिया नानक भगवंता पैरों महला पंजवा बाप हमारा सद चिरंजीवी भाई हमारे सद ही जीवी मीत हमारे सदा अभनासी कुटुंब हमारा निज घरवासी हम सुख पाया।

अंते अपूछे। राज हमारा सद ही निश्चल, माल हमारा अखूट अबेचल। शोभा मेरी सब जोगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर। कीरत हमारी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई। पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने। भैरू महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते। हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना ढोई। शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए। सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ, पार ब्रह्म सतगुर आदेश। मन तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नदरी आया। खसम तू है सबना केराया, तिस भाणा सूके काष्ट हरिया। तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए। चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण कौ तूठा। मन तन सीतल मन अमृत बूठा, पार ब्रह्म गुर पै।

दरगाह सुख पावे। नाम लैत प्रभ कहे साबास, नाम हमारी साची रास। गुर अपदेश कहियो इहो सार, हर कीरत मन नाम आधार। नानक उदरे नाम पुनः चार, अवर कर्म लोकह पतियार। पैरू महला पंजवा, नमस्कार ता को लख बार। इहो मन दीजै ता को वार, सिमरन ता कै मिटह संताप। होए आनंद न व्यापह ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम। जास जपत पूर्ण सब काम, रहाउ जाकी दृष्ट दुख डेरा तह। अमृत नाम शीतल मन गह, अनक भगत जाके चरण पुजारी। सगल मनोरथ पूरन हारी, खिन मैं ऊने सुपर भरिया। खिन मह सूके कीने हरिया, खिन मह नथावे को दीनो थान। खिन मह नमाणे को दीनो मान, सब मह एक रहिया पर पूरा। सो जापै जिस सतगुर पूरा। हर

पियावे, बेसवा भजत किस नह शरमावे, सारो दिन समजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर पर, माया लग भूलो संसार, आप भलाया भलावन हारे, राज रहिया बिरथा व्यवहार, रहाउ देखत माया रंग बिहाई, गड़बड़ करे कौडी रंग लाए, अंध व्यवहार बंद मन तावे, करने हार न जी मह आवे, करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत न कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़फ मुआ ज्यो जल बिन मीना, जिसके राखे होए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया, भैरों महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हिरदे मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जपहो नित पाई, तार लये सागर संसार, रहाउ जिनको लिखिया हर एहो निदान, सीजन दरगाह पावह मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ, आगे मिले न थावे थाओ, जुगह जगंतर एहो तत सार, हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लये सो लागे, जन्म जन्म का सोया।

रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरा की नो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमोला अपर अपार, रहाओ नाम हमारे निश्चल तनी, नाम की महिमा सब मह बनी, नाम हमारे पूरा साह, नाम हमारे बेपरवाह, नाम हमारे पूरा

अणहुंडा पार निंदक सिर तरा पार ब्रह्म के भगत निर्वैर सो निस्तर जो पूजे पैर आदि पुरख निंदक पोलाया नानक किरत ना जाए मिटाया पैरों महला पंजवा नाम हमारे वेद अर नाद।

का मन तन नानक हर गुण गाओ साध संग जिस देवै नाओ भैरो महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहे निर्मल मना।

मन बैठावो, दास अपने को भगति लावो, नमाणे को प्रभ दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सुगयान, सगल पयान का पौ नसै, जाने अपने कै हर मन बसै, पार ब्रह्म प्रभ सुख निदान, तत ज्ञान हर अमृत नाम, कर कृपा संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए, पैरो महला पंजवा, संत मंडल मह हर मन वसै, संत मंडल मह दुर्त सब नसै, संत मंडल

संत मंडल मह जन्म मरण रह, संत मंडल मह जम किशु ना कह, संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल मह नाम वखाणी, संत मंडल का नि चले आसन, संत मंडल मह पाप बनासन, संत मंडल मह निर्मल कथा, संत संग हों मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल मह हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखै आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करै, तिस ऊपर ते काल पर हरै, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवै तिस सदा सुख होवै, निकट न आवै ता कै जाम रहाउ, जब एहो ना सो तब किन्हे उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवालै, अपने भगत को सदा प्रतपालै, सब किस जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ताका है नाउ, सुख पावे है तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण धन तुमरे पास, एहो जग तेरा सब तुझे त्याए।

पुत्र गई सब मन की चिंदा, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम वैष्णो प्रभ तेख हजूर, ऐसो त्यागी बिरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए रहाउ। अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साध जना कै संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

बहुतै धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख सहज आनंद लहो, साध संग पाइय वडभागी, गुरमुख हर हर नाम कहो रहाउ, बंधन मात पिता सुत बनता, बंधन कर्म धर्म हो करता, बंधन काटन हार मन वसै, तौ सुख पावै निज कर बसै, सब जाचक प्रभ देवन हार, गुण निदान बेअंत अपार, जिसनो कर्म करे प्रभ अपना, हर हर नाम तिने जन जपना, गुर अपने आगे अरदास, कर कृपा पुरख गुणतास, कहो नानक तुमरी सरनाई, ज्यों पावै त्यों रखो गुसाई, पैरो महला पंजवा, गुर मिल त्यागियो दूजा पाओ, गुरमुख जपियो हर का नाओ, बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, कर कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए, रहाओ रोग दुख गुर शब्द निवारे, नाम औखद मन पीतर सारे, गुर पेटत मन पया आनंद, सर्व निदान नाम भगवंत।

आवण जान रहे हर त्याय, भगत पाए प्रभ की लिव लाए। बिनसे काम क्रोध अहंकार, टूटे माया मोह प्यार। प्रभ की टेक रह दिन रात, पार ब्रह्म करे जिस दात। कर्ण करावन हार स्वामी, सगल कटां के अंतर जामी।

नानक पाया नाम निदान पैरो महला पंजवा करन कारण समरथ गुर मेरा जी प्राण सुख दाता नेरा पै भंजन अबनासी राय दर्शन देखे है सब दुख जाए जत कत पेखो तेरी सरना बल बल जाई सतगुर चरना रहाऊ पूर्ण काम मिले गुरुदेव सब फल दाता।

पूरन मन पाणी जल थल महियल रवे आसोए नानक सब किश प्रभ ते होए पैरू महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरनी सर्ब मनोरथ पूरन करनी आठ पहर गावत भगवंत।

सूजन आया प्रभ की सरना, आप पवित्र पावन सब कीने, राम रसायन रसना कीने। भैरो महला पंजवा, नाम लैत किश बिघन ना लागै, नाम सुनत जम दूर हो भागै, नाम लैत सब दुख नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत भज हर हर नाउ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ।

जन धन भैरु महला पंजवा भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित भये बिनसी सब चिंद पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे पार ब्रह्म वस्या मन आई राम राम संत सदा सहाय।

नित सुख प्रतपाल, अपने दास कहो दे राखे हाथ, निमख न छोड़े सद ही साथ, हर सा प्रीतम अवर न कोए, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुत बंद नारायण, आदि जुगाद भगत गुण गायन, तिसकी धार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर, नानक कै मन इहो परखारथ, प्रभु हमारा सा

त्रिहो गुण की दास के होए पूर्ण काम रहाव। हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण धाम। जन का दर्श बांछे दिन राती

नहीं पांग। पैरों महला पंजवां, निंदक को फिटके संसार, निंदक का झूठा व्यवहार, निंदक का मैला आचार, दास अपने को राखनहार, निंदक मुआ निंदक कै नाल, पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे, निंदक कै सिर कड़के ओ काल रहाओ। निंदक का कहया कोई ना माने, निंदक झूठ बोल पछताने, हाथ पछोर है सिर धरन लगाहे, निंदक को दई छोड़े नाही, हर का दास किस बुरा ना मांगे, निंदक को

ना हुई जिनको नदर भई गुर मेले प्रभ पाणा सच सोई पौन पानी बै संतर रोगी रोगी तरत सपोगी मात पिता माया देह से रोगी रोगी कुटुंब संजोगी रोगी ब्रह्मा विष्णु सुरदरा रोगी सगल संसारा हर पद चीन भये से मुक्ते गुर का शब्द विचारा रोगी सात समुंद सनदियां खंड पताल से रोग परे हर के लोक से साच सुहेले सर्वी थाई नदर करे रोगी खट दर्शन भेख तारी नाना हठी अनेका वेद कतेव करह कह बपरी नह बूझह एक एका मिठरा सखाए सो रोग परीजै कंद मूल सुख नाही नाम विसार चल है अन मार्ग अंत काल पछताही तीरथ पर मैं रोग ना छूटस पड़या बाद विवाद भया दुविधा रोग सो अधिक वडेरा माया का मोहताज भया गुरमुख साचा शब्द सलाह है मन साचा तिस रोग गया नानक हर जन अन दिन निर्मल जिनको कर्म निशान पया पैरो महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिन करता एक चलते उपाया अनहद बाणी शब्द सुनाया मनमुख फूले गुरमुख बुझाया कारण करता करदा आया गुर का शब्द मेरा अंतर ध्यान हम कबहु ना छोड़ो हर का नाम रहाव पिता प्रहलाद पढ़न पठाया लै पाती पांदे कह आया नाम बिना नह पढ़ो अचार मेरी पटिया लिख दे हो गोबिंद मरार पुत्र प्रहलाद स्यों कहया माए परवित ना पढ़ो रही समझाए

सब नगरी मह भगत दिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई, संडै मरकै की पुकार, सभे दैत रहे चख मार, भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई, किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिन आप पुलाया, पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़े आया, प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला, निरपो बालक मूल ना डरई, मेरे अंतर गुरु गोपाला, कीता हुआ श्री की करे, अनहोंदा ना उतराया, जो तुर लिखिया सो आई पहुता, जन स्यो वाद रचाया, पिता प्रहलाद स्यो गुरजे उठाई, कहां तुम्हारा जगदीश गुसाई, जग जीवन दाता।

माता नरसिंह का रूप निवार। लक्ष्मी भौ करै ना साकै जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए। सतगुर नाम निदान बिरडाया, राज माल झूठी सब माया। लोभी नर रहे लपटाए।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हम मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना को जम जोहे ना साके, रत्ती

वड़ियाई जन्म जन्म के किल विख दुख काट है दुबदा रती नाराई हम मूड मुगद किस बूझ नाही तू आपे देह बुझाई जो तुद पावे सोई करसी अवर न करना जाई जगत अपाए तुद तंदै ला।

ना सूझै दुर्मत अज्ञान अंधारा भवजल पार ना पावह कब ही डूब मुए बिन गुर सिर पारा साचे शब्द रते जन साचे हर प्रभ आप मलाई गुर की वाणी शब्द पछाती साच रहे लिवलाई तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल गुर कै शब्द विचारे नानक तिन कै सद बलिहारे राम नाम उर तारे भैरो महला पंजवां अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिस नाम हृदय सोई वड राजा जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए नाम बिना जन्म बिरथा जाए इस सलाही जिस हर तन रास सो वड भागी जिस गुर मस्तक हाथ रहाउ जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ नाम बिना त्रिग जीवन मुआ जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता जिस नाम हृदय तिस सब ही जुगता जिस नाम हृदय तिन नौ निध पाई नाम बिना भ्रम आवै जाई जिस नाम हृदय सो वे परवाहा जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा जिस नाम हृदय तिस वड परवारा नाम बिना मनमुख गवारा जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन जिस नाम हृदय सो साचा साह नाम हीन नाही पत वे साह जिस नाम हृदय सो सब मह जाता जिस नाम हृदय सो पुरख बधाता जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा नाम बिना भ्रम जोनी मूचा जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा जिस नाम हृदय सो पुरख परवान नाम बिना फिर आवन जान तिन नाम पाया जिस भयो किरपाल साध संगत मह लखे गोपाल आवन जान रहे सुख पाया कहो नानक तत्तै तत मलाया भैरु महला पंजवां कोट बिशन कीने अवतार कोट ब्रह्मांड जाके धर्मसाल कोट महेश उपाय समाए कोट ब्रह्मे जग साजन लाए ऐसो धनी गोविंद।

नाम चार कोट पूजारी करते पूजा कोट विस्थारन अवर ना दूजा कोट महमा जाकी निर्मल हंस कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस कोट परलो ओपत निमख माहे कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे कोट ज्ञानी कथ है ज्ञान कोट त्यानी तरत त्यान कोट तपीसर तप ही करते कोट मनीसर मोन मह रहते अवगत नाथ अगोचर स्वामी पूर रहया घट अंतर जामी।

विनोद चोज अनंता, नानक को प्रभ मिलियो अचिंता। कहो नानक कीरत हर साची, बहुर बहुर पिस संग मन राची। रहाओ अचिंत हमारे भोजन पाओ, अचिंत हमारे लीचे नाओ। अचिंत हमारे शब्द उदार, अचिंत हमारे परे पंडार। अचिंत हमारे कार्य पूरे, अचिंत हमारे लथे वसूरे। अचिंत हमारे बैरी मीता, अचिंतो ही एहो मन वस कीता। अचिंत प्रभु हम किया दलासा, अचिंत हमारी पूर्ण आसा। अचिंत हमा को सगल सिद्धांत, अचिंत हम को गुर दीनो मंत। अचिंत हमारे बिन से बैर, अचिंत हमारे मिटे अंधेर। अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा, अचिंतो ही प्रभ घट घट दीठा। अचिंत मिट्यो है सगलो परमा, अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा। अचिंत हमारे अनहत वाजे, अचिंत हमारे गोविंद गाजे। अचिंत हमारे मन पतियाना, निश्चल तनी अचिंत पछाना। अचिंतो उपजियो सगल बबेका, अचिंत चरी हाथ हर हर टेका। अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख, अचिंत मिलियो प्रभ ठाकुर एक। चिंत अचिंता सगली गई, प्रभ नानक नानक नानक मई। भैरों बाणी भगतां की, कबीर जियो घर पहला।

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अन कत है ना जाई, रहाउ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो, संत

जो निर्तन सर तन कह जाए, आगे बैठा पीठ फुराए। जो सर धन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर तन दो

तरियाने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्तर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई।

फंद ना पात्र बोले ना किश दे फूकट कर्म निफल है सेव जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक को बिस्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या घट जाई कहत कबीर हो कहो पकार समझ देख साकत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे काम माया कुंचर कौ व्यापे भुयंगम प्रिंग माया मह खापे।

जाति साकरमाखी अधिक संतापी तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खीला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपेर खीसर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा।

मेरी मिट जाए, तब प्रभ काज सुआ रह आई। ऐसा ज्ञान विचार मना, हर की ना सिमर हो दुख भंजना रहाऊ। जब लग सिंह रह बन माहे, तब

बंका पाई, दूवर कोट अर तेवर खाई, रहाउ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रघुराया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दुए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकरियो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फासी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो अबनासी, गंगा गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर

अनहद शब्द होत चुनकार, जिह पौड़े प्रभ श्री गोपाल, खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रया स्थान तीन त्रया खंडा, अगम अगोचर रहया अभ्यंत, पार ना पावे को धरनी तर मंत, कदली पोहप धूप परगास, रस पंकज महलियो निवास, द्वादस दल अब अंतर मंत, जह पौड़े श्री कमला कंत, अर्ध उर्ध

फिर है, बासक कोट सेज बिस्थर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रमावल कोट अथार है पार, कोट कमेर पर है पंडार, कोटक लक्ष्मी करे श्रृंगार, कोटक पाप पुन बहो हिर, इंद्र कोट जाके सेवा करे, छप्पन कोट जाके

पर हरि ताकै निकट बसै नर हरि जो ना पुजंते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना रहाउ जिनकै भीतर है अंतरा जैसे पास तैसे हुए नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है 32 लखना

मेरो मन पतियाए, नाहीं ता घर को बाप रसाए रहाओ। सोइन कटोरी अमृत भरी, लैना मैं हरिया गै तरी। एक भगत मेरे हृदय बसै, नामे देख नारायण हसै। दूध पियाए भगत घर गया, नामे हर का दर्शन पया। मैं बौरी मेरा राम पतार, रच रच ता को करो शिंगार। भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग रहाओ।

संडा मर का जाए पुकारी, पड़े नहीं हम ही पाचहारी। राम कह करताल बुझावे, चटिया सब बिगारी। राम नामा जप भो करे, हृदय हर जी को सिमरन तरे। रहाव बसदा बस कीनी सब राजी, बिनती करे पटराणी। पूत प्रहलाद कहया नहीं माने, तिन तो और ठानी। दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया, कर सह औध कनेरी। गिर तर जल ज्वाला पै राखियु, राजा राम माया फेरी। काड खड़ग काल पै को पियो, मोहि बताओ जो तुहे राखे। पीत पितांबर त्रे पवन तनी, थंब माहे हर पाख। हर नाखश जिन नखह बिदारे हो, सुर नर किए सनाथा। कह नाम देहो हम नर हर त्यावे, राम अपै पद।

वाई ना तर गर्दन मारो ठाए बादशाह ऐसी क्यों हुए बिस्मिल किया न जीवै कोई मेरा किया कछु न होए कर है राम हुए है सोए बादशाह चढ़ियो अहंकार गज हस्ती दीनो चमकार रुदन करे नामे की माए छोड़ राम की ना भजै खुदाए ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

नानक हरे ना सूकहे जे गुरम करहे समाए। महला पहला बसंत रुत आई ले सरस बसंत माए। रंग राते रंग है से तेरे चाहे किस पूज चढ़ावो लगो पाए। तेरे दासन दासा कहो राए जग जीवन जुगत ना मिले काए। रहाओ तेरी मूर्त एका बहुत रूप किस पूज चढ़ावो देओ धूप। तेरा अंत ना पाया कहां पाए तेरा दासन।

काजी मुल्ला हुवे सेख, जोगी जंगम भगवे पेख, को गिरही कर्मा की संद, बिन बूजे सब खड़ी अस बंद, जेते जी लिखी सिरकार, करनी ऊपर होवग सार, हुक्म करह मूर्ख गावार, नानक साचे के सिफत भंडार, बसंत महला तीजा, बस्तर उतार दिगंबर होग, जटा धार

पार उत्तर जाहे एक खिना रहाउ, सिमरत शास्त्र करह वख्यान, नादी बेदी पढ़े पुराण, पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे, तिन कैर मैया नेड़ नाई, जे को ऐसा संजमी होए, क्रिया वसेख पूजा करे।

मती इन बिद पावो प्राणपति रहाउ भीतर अगन बनास्पत मौली सागर पंडै पाया चंद सूरज दुए कर ही भीतर

लखन जानी है हिमा धन संग्रह कहया सुन है न खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हंडोल महला पहला साचा साहो गुरु सुख दाता हर मेले भुख गवाई कर कृपा हर भगत दृढ़ाई अन दिन हर गुण गाई मत भूलै हरे मन चेत हरी बिन गुर मुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाईऐ नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाईऐ बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाईऐ कर्म मिलै हर नाम हरी घट घट गुप्त अपाए वेखै प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करहै सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिलै वडियाई गुरमुख से प्रधान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थीए बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित।

सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाउ कर्म होए ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देखे अमृत करतार पाई संसार बिरख को दोए फल लाई आपे करता करे कराई जो तिस पावे तिसे खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाणा आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोई ज्यों

लोभ लोभाना राम विसार बहुर पछताना विसरत मलाए गुर सेव रांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागे पौन पानी की एह दे शरीरा हौ मैं रोग कठन तन पीरा गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया कर किरपा गुर रोग गवाया चार नदियां अग्नि तन चारी तृष्णा जलत जले अहंकारी गुर राखे वड भागी तारे जन नानक और हर अमृत धारी बसंत।

हर मन माहि मर मर जम्मह पी मर जाहि से जन जीवे जिन हर मन माहि साच सुमालह साच सुमाहि रहाउ हर ना सेवह ते हर ते दूर दसंतर भवह सिर पावह धूर हर आपे जन लिए लाए तिस सदा सुख है तिल ना तमाए नदर करे चूकै अभमान साची दरगाह पावै मान हर जियो वेखै सद हजूर गुर कै शब्द रहया परपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुर प्रसादी सद संभाल दर साचै पत स्यों घर जाए नानक नाम वडाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मन ते होए एको वेखै और ना कोई दूजै लोकी बहुत दुख पाया।

पाए, तौ जग जीवन वसै मन आए, भगत करे सद वेखै हजूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर, इस भगती का कोई जाने पियो, सब मेरा प्रभ आत्म देव, आपे सतगुर मेल मलाई, जग जीवन स्यो आप चित लाई, मन तन हरिया सहज सुपाई, नानक नाम रहे लिव लाई, बसंत महला तीजा, भगत वचल हर वसै मन आई, गुर कृपा ते सहज सुपाई, भगत करे विचों आप खोई, तद ही साच मलावा होई, भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार, गुर कै हित साचै प्रेम प्यार, रहाउ भगत करे सो जन निर्मल होए, गुर शब्दी विचों

मन तन हरिया रव गुण गोविंद बिन नाव सूका संसार अग्न तृष्णा जल वारो वार सोई करे जे हर जीव पावे सदा सुख शरीर पाणे चित लावे अपना प्रभ सेवे सहज सुपाई नानक नाम वसै मन आई बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाई मन तन हरिया सतगुर पाई सफलो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुपाई सच फल लागे सतगुर पाई रहाउ आपे नेड़ आपे दूर गुर कै शब्द वेखै सद हजूर शाम घणी फूली बनराए गुरमुख बिबसै सहज सुपाए अन दिन कीर्तन करह दिन रात सतगुर गवाई विचों जूठ परांत परपंच वेख रहया विस्माद गुरमुख पाईए नाम प्रसाद आपे करता सब रस भोग जो किछ करे सोई पर होग वड्डा दाता तिन नात माई नानक मिलिया शब्द।

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा होए, निज कर वासा पावै सोए, आप अकुल सच्चा सच सोए।

तीजा बनस्पत मौली चढ़िया बसंत इहु मन मौलिया सतगुरु संग तुम साच त्यावो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाऊ इत मन मौलिया पया आनंद अमृत फल पा।

हम किए पतत पविसे। बसंत हंडोल महला चौथा। मेरा एक खिन मनुआ रह ना सकै, नित हर हर नाम रस गीदे। जो बारक रसक परयो थन माता, थन काढे बिलल बलीदे। गोविंद जियो मेरे मन तन नाम हर बीदे। वड़ै भाग गुर सत गुर पाया, विच काया नगर हर सीधे रहाऊ। जन के सास सास है जेते, हर बिरह प्रभु हर बीदे। ज्यों जल कमल प्रीत अत भारी, बिन जल देखे सुख लीदे। जन जपयो नाम निरंजन नर हर, अपदेश गुरु हर प्रीदे। जन्म जन्म की हम मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे। हमरे कर्म ना बिचर हो ठाकुर, तुम पैज रखो हो अपनी दे। हर भावै सुन बिनो बेनती, जन नानक सरण पवीदे। बसंत हंडोल महला चौथा। मन खिन खिन परम परम बहुत आवै, तिल घर नहीं वासा पाईऐ। गुरे अंकस शब्द दारू सिर धारियो, घर मंदर आन वसाईऐ। गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याईऐ। हो मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाध लगाईऐ। रहाउ कर रतन लाल बहुमानक लादी, मन भ्रमया लह ना सकाईऐ। ज्यों ओडा कूप गोहज खिन काढ़ै, त्यों सतगुर वस्त लहाईऐ। जिने ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाईऐ। जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदलै जाईऐ। मध सूदन हर धार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाईऐ। जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाईऐ। बसंत हंडोल महला चौथा। आवन जान पया दुख बिखिया,

दयाल नाम जपत होवत निहाल मेरे प्रीतम कारण करण जोग हौ पावो तुम ते सगल थोक रहाउ नाम जपत होवत उदार नाम जपत सुख सहज सार नाम जपत पत सोबा होई नाम जपत बिघन नाही कोई जा कारण एह दलभ दे

प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जां को खोजह सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जां की गत मित कही ना जाए घट घट घट घट रहे आसमाए जां के भगत आनंद मै जा के भगत को नाही खै जा के

सर्व कला प्रभ तुम परबीन, अंत ना पावह जलह मीन, अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा, हम तोरे तुम बहुत मूचा, जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से तनी, जिन तू सेव्या सुखी से, संत सरण नानक परे, बसंत महला पंजवा, तिस तू सेव जिन तू किया, तिस अराद जिन जियो दिया, तिसका चाकर होहे फिर डान ना लागे, तिसकी कर पोत दारी फिर दुख ना लागे, एवड भाग होहे जिस प्राणी।

सर्ब ध्यान मह एक ध्यान हर कीर्तन मह उत्तम धुना नानक गुर मिल गाए गुना बसंत महला पंजवा जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल है सोए जिस अराधे

जिसके तारे तरन आकाश कट कट जिसका है परगास जिस सिमरत पतत पनीत होए अंत काल फिर ना रोए सगल धर्म मह उत्तम धर्म कर्म करतूत कै ऊपर कर्म जिसको चाह है सुर नर देव संत सभा की लगो सेव आद

जह गोविंद भगत सो धन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद घट घट पहचान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करनहार, ईत ऊत प्रभ कार्य सार, चरण कमल स्यों लगो ध्यान, कर किरपा प्रभ कीनो दान, तेरिया संत जना की बांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर, बसंत महला पंजवां, सच परमेश्वर नित नवा, गुर किरपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जां कै सिमरन नहीं संताप, खसम ते आई एक।

प्रभु आप रखी, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देश दसंतर रहे ताई, किरत ओना का मिटस नाही, वे अपना बीजिया आप खाए, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुँच ना सकस कोए, प्रभ दास रखे कर जतने आप,

पंजवां गुर चरण सरे वत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर चेते आवे बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुर मिल नानक खसम त्याया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल मही अल रव रहिया गुर मिल नानक हर हर कहिया अष्ट सिद्ध नव निध एह कर्म परापत जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुर मिल नानक कमल परगास बसंत महला पंजवां घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया प्रभ मेले चिरी वछुनिया तुम रवहु गोबिंद रमण योग जित रवे सुख सहज भोग रहाउ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला पंजवां किल बिख बिन से गाए गुना अन दिन उपजी सहज धुना मन मौले ओ हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे नित रातो हर नाम रंग रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उदार।

सद्ब संत गुरपुरे की सरनी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाउ, सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाउ, सब फल पाए निश्चल गुण गाओ, नानक भगतां।

वहां पकर पवजल निस्तारियु प्रभ काट मैल निर्मल करे गुरपूरे की सरणी परे आप करह आप करन हारी।

फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागी चरण कमल पागी तुम मिलो हो प्रभ सुभागी हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले एक रहे सूख कठूले बसंत रुत आई पर फूल ता रहे अब कलू आयो रे एक नाम बोवहो अन रूत नाही नाही मत परम भूलो गुर मिले हर पाई जिस मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे बसंत महला पंजवा घर दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद होए एकत्र मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करहो लिवलाई हर नामे के होवो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा विछाई इन बिद

धर्म धर्म तुम चौपड़ साजो सत करहो तुम सारी काम क्रोध लोभ मोह जीतो ऐसी खेल हर प्यारी उठ इशनान करहो प्रभाते सोए हर अरादे बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर सुख सहज सेती घर जाते हर आपे खेल आपे देखे हर आपे रचन रचाया जन नानक गुरमुख जो नर खेल सो जिन बाजी घर आया।

बसंत हंडोल महला पंजवां मूल ना बूझै आप ना सूझै भरम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म प्रब धनी मोहे निस्तार हो निर्गुणी रहाउ ओपत परलो प्रभ के होवै एह बिचारी हर जनी नाम प्रभु के जो रंग राते कलम है सुखिये से जनी अवर अपाओ न कोई सूझै नानक तरियै गुर बचनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बसंत हंडोल महला नौवा साधो ए तन मिथ्या जानो जा भीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ एहो जग है संपत सुपने की देख कहां ऐडानो संग तिहारै कछु ना चालै ताहे कहां लपटानो उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उरियानो जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो बसंत महला नौवां पापी ही है मैं काम बसाए मन चंचल याते गहयो ना जाए रहाउ जोगी जंगम अर संन्यास सब ही पर डारी एह फास जेह देह हर को नाम समार ते भव सागर उतरे पार जन नानक हर की सरनाए दीजै नाम रह गुण गाए।

भागी उपजेओ निर्मल ज्ञान लोभ मोह एह परसना साकै गही भगत भगवान जन्म जन्म का संसार चूका रतन नाम जब पाया तृष्णा सकल बनासी मनते निज सुख माहे समाया जान को होत दयाल कृपा निद सो

तन बिनसै जम स्यो परै काम रहाउ। इहो जग तुएं का पहार, तैं साचा मानिया केहे विचार। तन दारा संपत गृह, कस संग ना चलै समझ ले। एक भगत नारायण।

रहाउ कर बालू का कुमन केर बरखस बाणी बुद्ध बदाहेर मातर बूंद ते तार चक फेर सर्व ज्योत नामै की चेर सर्व उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पग लागो तोर नाम रतो चाहो तुझे ओर नाम दराए चलै सो चोर पत खोई बेखे।

गाछुह पुत्री राज कुवार नाम भणुहु सच दूत सवार प्रियो सेवहो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिख त्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा धार बसंत महला पहला मन भूलो भरम से आए जाए अत लुब्ध लुभानो बिखम माए नह अस्थर दिसै एक पाए ज्यों मीन कुंडलिया कंठ पाए मन भूलो समझस साच नाए गुर शब्द बिचारे सहज पाए रहाओ मन भूलो परमस पवर तार बिल बिरथे चाहे बहु बेकार मैगल ज्यों फासस काम हार कर बंधन बांध

कदे नाही, गुर शब्द सुनाए मत अगाहे, तू मोटो ठाकर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे। बसंत महला पहला, दर्शन की प्यास जिस नर हुए, एकत राचै पर हर दुए, दूर दर्द माथे अमृत खाए, गुरमुख बूझै एक समाए, तेरे दर्शन को केती बिल लाए।

थाप आपे बशरु गऊ खीर आपे मंदर थम शरीर आपे करनी करणहार आपे गुरमुख कर विचार तू कर कर देख करनहार जोत जी असंख दे आधार तू सर सागर गुण गहीर तू अकुल निरंजन परम हीर तू आपे करता करण जोग नेह केवल राजन सुखी लोग नानक त्रापे हर नाम स्वाद बिन हर गुर प्रीतम जन्म वाद बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नौ सत चौदह तीन चार कर महलत चार बहाली चारे दीवे चहो हथ दिए एकाएका वारी मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ कर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिखदारी।

आर पवै नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नदर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखायाई वारी देवल देवतियां कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला नील रूप बनवारी कर कर मिया सब नाजिया बोली अवर तुम्हारी जे तू मीर महीपत साहेब कुदरत कौन हमारी चारे कुंत सलाम करेंगे कर कर सिफत तुम्हारी तीरत सिमरत पुन दान किशलाहा मिले दिहाड़ी नानक नाम मिले वड्याई मेका घड़ी संभाली बसंत हंडोल कर दूजा महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया नगर एक बालक वसिया हिन पल फिर न रहाई अनक अपाव जतन कर थाकी बारंबार परमाई मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाईए पज राम नाम निशान रहाउ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसिया राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हो आरसिया मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया एक गुरमुख चलत दिखाया बाहर खोज मुए सब साकत हर गुरमति कर पाया दीना दीन दयाल भये हैं ज्यो कृष्ण बिदर घर आया मिले उस दामा पावनी तार सब किसे आगे दालद पंज।

करहें बखीली एक रत्ती तिल ना कटाई जानकी उस्तत है राम नामा दह दिस सुबा पाई निंदक साकत खाव ना सके तिल अपना।

जल है समावे बसंत महला पंजवा घर कहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार अजा मल।

करनरीन ले मस्तक लाऊ कर कृपा दीन रहाऊ गनका उदरी हर कह तूत गज इंद्र त्यायो हर कियो मूख बिपर सदामे दाल पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उदारे उदास्त पाई रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल भई सिद्ध बेणी कौ गुर कियो परगास रे मन तू पी होई दास जय देव त्याग्यो अहमेव नाई।

भगत राख तिनका गुण अवगुण ना विचार्यो कोई। एह बिद देख मन लगा सेव कबीर त्यायो एक रंग नाम देव हर जियो बसह संग रविदास त्याए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवां अनक जन्म भ्रमे जोन माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत साच शब्द कर सदा प्रीत रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज धूम बादर सब माया साज पाप

राम क्रोध मन वास किया, सुपने नाम ना हर लिया। कब ही राजा कब मंगन हार, दुख सुख बांधो संसार। मन उधरन का

संग ही चोर कर मुसन लाग रहाउ, जागै सुख देओ अर अकूर, हनुमंत जागै तर लंकूर, शंकर जागै चरण सेव, कल जागे नामा जय देव, जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागै सोई सार, इस देही के अधिक काम, कह कबीर पज राम नाम, जोए खसम है जाया, पूत बाप खेलाया, बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ, सुतमक लाई अपनी माओ, रहाओ, पगा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता, निंद्रा बिन नर पैसो है, बिन बासन खीर बलो है, बिन अस्थन गहू लवेरी, पैंडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बाट न पाई, कहो कबीर समझाई, प्रहलाद पठाए पढ़न साल, संग सखा बहु लिए बाल, मोको कहां पढ़ाव से आल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न से नहीं काम, रहाओ संडे मर के कहो जाए, प्रहलाद बलाए बेगताए, तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छाऊ मेरो कहो मान, मोको कहां सताव हो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार, एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार, काड खड़ग को प्यो रिसाई, तुझ राखनहारु मोहे बताए, प्रभ थंब ते निकसे कै विस्थार, हरनाक्ष शेदे हो नख बेदार, उए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव, कह कबीर को लखै ना पार, प्रहलाद उधारे अनक बार, इस तन मन मधे मदन चोर, जिन ज्ञान रत

दारण दुख सहयो न जाए, मेरो चपल बुद्ध स्यो कहां बसाई रहाउ। सनक सनंदन शिव सुकाद, नाभ कमल जाने ब्रह्माद, कब जन जोगी जटा तार, सब आपन अवसर चले सार, तू अथाह मोहे था नाही, प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे, मोरो जन्म मरण दुख आथ तीर, सुख सागर गुण रौ कबीर, नायक एक बनजारे पांच, वरद पचीसक संग काच, नौ बहिया दस गुण आहे, कसन बहतर लागी ताहे, मोहे ऐसे बनज स्यो नहीं काज, जेह घटै मूल नित बढ़ै ब्याज रहाउ। सात सूत मिल बनज कीन, कर्म पावनी संग लीन, तीन जगाती करत रार, चलो बनजारा हाथ चार, पूंजी हैरानी बनज टूट, दह दिस टांडो गयो फूट, कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता परम पाज, बसंत हिंडोल कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माता जूठी पिता पी जूठा, जूठे ही फल लागे, आवह जूठे जाहे पी जूठे, जूठे मरह अभागे।

बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे साची परे बेचारा। रामानंद जी घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कत जाइए रे घर लागो रंग मेरा चेतना चले मन भयो पंग रहाउ। एक दिवस मन भई उमंग कस चंदन चोआ बहु सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए।

कैसे संत जना राम नाम ना छाडे, गंगा गया गोदावरी संसार के कामा, नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नाम।

हों तार भी ना जानो मोको बाहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लै कर हाकती जैसे पनकत थ्रू टिट हाकती सर धोवन चाली लाडुली रहाउ धोबी धोवे बिरह बराता हर चरण मेरा मन राता पणत नाम देव राम रहया अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाही पहरावा देखे ऊब जाए गर्भ

कोट तेरे मिटह पाप सब कोट कोट। कह रविदास जो जपै नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम। बसंत कबीर जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुरा की जैसी तेरी चाल तेरी पूछत ऊपर चमक बाल। इस घर में है

साधना फीकी रस बिन बिन प्रभ काल संता पै रहाउ। जब लग दर्शन परसै प्रीतम तब लग भूख प्यासी। दर्शन देखत ही मन मानिया जल रस कमल बिगासी। ऊनम कनहर गरजै बरसै कोकिल मोर बैरागै। तरवर बिरख बिहंग पोयंगम घर पेर तन सोहागै। कुचिल रूप कुनार कुलखनी फिरका सहज ना जानिया। हर रस रंग रसन नहीं तृप्ति दुर्मत दुख समानिया। आए ना जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे। नानक प्रभ ते सहज सुहेली प्रभ देखत ही मन धीरे। सारंग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा। सतगुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए प्राण अधारा। रहाउ इन विद हर मिलिया वर कामन तन सुहाग प्यारी। जात वर्ण कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन माने अभमान ना ताको हिंसा लोभ बसारे। सहज रवै वर कामन पिरकी गुरमुख रंग सुवारे। जारो ऐसी प्रीत कटंब संबंधी माया मूप सारी। जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुबदा कर्म बेकारी। अंतर रत्न पदार्थ हित को दुरै न लाल प्यारी। नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी। सारंग महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के संत जना की हम धूर मिल सत संगत परम पद पाया। आत्म राम रहया भरपूर रहाउ। सतगुर संत मिले शांत पाईए हिल विख दुख काटे सब दूर। आत्म ज्योत पई परफूलत पुरख निरंजन देखिया हजूर। वड्डे भाग सतसंगत पाई हर हर नाम रहया भरपूर। अठ सठ तीरथ मज्जन किया सत संगत पग नाए धूर। दुर्मत बेकार मलीन मत होशी हिरदा कसुद लागा मोह पूर।

कर्मा क्यों संगत पाईए, हो मैं व्याप रहया मन चूर। हो दयाल कृपा कर हर जी, मांगो सत संगत पग तूर। नानक संत मिले हर पाईए, जन हर पेटिया राम हजूर। सारंग महला चौथा, गोबिंद चरणन को बलिहारी। भवजन जगत ना जाई तरना, जप हर हर पार उतारी रहाओ। हृदय प्रतीत बनी प्रभ केरी, सेवा सुरत बिचारी। हर दिन राम नाम जप हृदय।

रखारी। अंतर हर नाम सर्व धरनी तर, साकत को दूर भया अहंकारी। तृष्णा जलत न कबहू बूज है, जुए बाजी हारी। उठत बैठत हर गुण गावे, गुर किंचित कृपा तहारी। नानक जिनको नदर

गुरमुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाउ। जो जन दीन भये गुर आगे तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुर आगे गुर कै शब्द सुवारी। हिरदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बीचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया वे पावह मूख द्वारी। सतगुर पुरख अचल अचलह मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। तिस आगे जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मनमुख ब्रह्म दूजै भाई लागी अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवे ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रवे आ स्वामी सर्व कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उभारी। सारंग महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिवलाई। रहाउ गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाई। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति जोत मलाई। जब गुण गाए तब ही मन तृप्त शांत वसै मन आई। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाई। मत प्रगास भई हर त्याया ज्ञान तत् लिवलाई। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाध लगाई। हृदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाई। अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाई। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाई। नानक नाम निरंजन पाया नाम जपत सुख पाए। सार महला चौथा मेरा मन राम नाम मन मानी। मेरा ही रह सतगुर प्रीत लगाई। मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो वो जन ऊपर जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया हर मन तन मीठ लगानी। हर कै रंग रते बैरागी जिन गुरमत नाम पछानी। पुरख मिलया सुख

हर हर पानी पंच जना गुर वसगत आनी तौ उन मन नाम लगानी जन नानक हर कृपा तहारी हर राम नाम समानी। सारंग महला चौथा जप मन राम नाम पढ़ सार राम नाम बिन थिर नहीं कोई होर निफल सब विस्थार रहाओ। क्या लीजै क्या तजियै बौरे जो दिसै सो शार जिस बिख्या कौ तुम अपनी कर जानो छाड़ छाड़ जाहो सिर पार तिल तिल पल पल औद फुन काटै बूझ ना सकै गवार सो किश करै जे साथ ना चालै इहो साकत का आचार संत जना कैसा।

तापमान नरहरे नरहर स्वामी हर सगल देव देवा श्री राम राम नामा हर प्रीतम मोरा रहाउ जित ग्रह गुण गावते हर के गुण गावते राम गुण गावते तित ग्रह वाजे पंच शब्द वड भाग मथुरा तिन जन के सब पाप गए सब दुख गए सब रोग गए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए तिन जन के हर मार कड्डे पंच चोरा हर राम बोलो हर साधु हर के जन साधु जगदीश जप हो मन बचन कर्म हर हर अरादु हर के जन साधु हर राम बोल सब पाप गवाधु नित नित जागरण करहो सदा सदा आनंद जप जगदीश्वर।

हर सियों मिले हर भगत तूरा सार महला चौथा जप मन माधो मधुसूदनो हर श्री रंगो परमेश्वरो सत परमेश्वरो प्रभ अंतर जामी सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता हर प्रीतम गुण गाओ रहाओ हर घट घटे घट बसता हर जल थले हर बसता हर थान

मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। तिस जन के हो मल मल धुआं पाऊं, हर जन को हर मिलिया, हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया। मेरा मन तन आनंद भये, मैं देखिया हर राउ। जन नानक को कृपा भई, हर की कृपा भई, जगदीश्वर कृपा भई। मैं अनदिनो सद सद सदा, हर जपिया हर नाउ। सारु महला चौथा, जप मन निरभउ, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभव। मेरे मन अन दिनो त्याए, निरंकार निराहारी रहाउ। हर दर्शन को कोट कोट ते तीस, सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी। किन जन की सेवा थाए पई, जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले, ते उत्तम भगत भले,

सब सृष्टि का प्रभु मेरे मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाउ हर का नाम अमृत हर हर हरि सो पिए जिस राम प्यासी हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी जो जन सेव है सद सदा मेरा हर हरि इनका सब दुख भरम पहु जासी जन नानक नाम लए ता जीवे ज्यों चात्रिक जल पिए त्रिपतासी सार महला चौथा जप मन श्री राम राम रमत राम सत सत राम बोलो पैया सद राम राम राम रव रहया सर्वगे रहाउ राम आपे आप आपे सब करता राम आपे आप आप सबत जगे जिसे आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय सो जन राम नाम लिव लागे राम नाम की उपमा देखो हर संतो हो जो भगत जना की पात राखे बिच कल युग अगे जन नानक का अंग किया मेरे राम राय दुश्मन दुख गए सब भगे सारंग महला पंजवा चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर मूर्त कहो बल जाऊ अंतर प्यास चात्रक ज्यो जल की सफल दर्शन कद पाऊ रहाओ अनाथा को नाथ सर्व प्रत पालक भगत वच्छल हर नाऊ जा को कोई न राखे प्राणी तिस तू देहे असराऊ

ज्ञान प्रभु पलाए उजड़ पाए निफल सब कर्मान सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की।

सतगुर बचन लहू रहाउ। कुवार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते शुद्ध पय है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लो बजियो, मूर्त करी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब यो हो भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जलै मह डारियो, अंबै अंब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

नानक पूर रहो है सर्व में सगल गुणा बिद जानद सारंग महला पंजवा अब मोहे राम पुरुषो पाई जो जो शरण परयो करना निद ते ते पवह तराई रहाओ सुख सोयो अर सहज सुमायो सहसा गुरह गवाई जो चाहत सोई हर कियो मन बाचत फल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए करनी चलो मार्ग ठाकुर कह रसना हर गुण गाय देखियो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो लाल अमोल नाम हर छोड़।

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ डाल पर ठंड हो खाए खाए मुश्कार है गिरियो जाए रसातल परियो सिति सिति सिर पार है निर्वैर संग वैर रचाए पहुंच ना सके ग्वार है कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जा कै हृदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाउ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अंध अंधारा जैसी धरती साधे बहु बिद बिन बीजै नहीं जामै राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटे नाही अभमान नीर बलोवे अत श्रम पावे नैनू कैसे रिसे बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसे खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो प्राप्त।

सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बाचत फल लहिए रहाउ आवहु संत प्राण सुख दाते सिमरह प्रभ अवनासी अनाथ नाथ दीन दुख भंजन पूर रहो घटवासी गावत सुनत सनावत शरदा हर रस पी वड भागे कल कलेश मिटे सब तन ते राम नाम लिव जागे काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे तू समरथ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा।

रहे हो सर्व मह ठाकुर नानक सो प्रभ नीरा सारंग महला पंजवां बलिहारी गुरदेव चरण जांकै संग पार ब्रह्म त्याहिऐ उपदेश हमारी गत करन रहाउ दुख रोग पै सगल बनासी जो आवै हर संत सरन आप जपै अवरह नाम जपावै वड समरथ तारन तरन जाको मंत्र उतारै सहसा ऊणे कहो सुभर भरन हर दासन की आज्ञा मानत ते नाही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म मरन जाको भयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन हर रसह अगाने सहज समानी मुख ते नाही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उधरन सारंग महला पंजवा गायोरी मैं गुण निद मंगल गायो भले संजोग भले दिन अवसर जो गोपाल रिझायो रहाओ संतह चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत धरे हाथा साध है मंत्र मोर लो मनुआ।

एहो मन नहीं धीरै को है रे संत मलाई जप तप संयम पुन सब होम तिस अर्पो सब सुख जाई एक निमक प्रिय दर्शद खावै इस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चिरित्र पई हो बिस्मन गुर सतगुर पुरख मलाई प्रभ रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारी महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाऊ अनक जन्म भ्रम तो ही आयु मानस जन्म दुन पाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तोहो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज पर्यो कुसमाही धर्म राय जब पकरस बबरे तो काल मुखा उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मलाया जिस मस्तक लेख लिखाही कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही सारंग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिसरत होत मृत का ग्रह मह रहन ना पाई रहाओ जी ही प्राण को दाता जा कै संग सुहाई करहु कृपा संतो मोहे अपनी प्रभ मंगल गुण गाई चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैन हो तूर बाशाई जेह प्रसाद मिलिया प्रभ नानक बल बल ता कह हो जाई सार महला पंजवा वाह अवसर कह हो बल जाई आठ पहर अपना प्रभ सिमरन वड भागी हर पाई रहाऊ भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई ऊच ते ऊच नाम देहो समदर्शी रविदास ठाकुर बन आई जियो पिंड तन तन साधन का एहो मन संत रे नाई संत प्रताप भरम सब नासे नानक मिले गुसाई सारंग महला पंजवा मनोरथ पूरे सतगुरे आप सगल पदार्थ सिमरन जाकै आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवै तिस ही त्रिपतास जन्म जन्म के किलबिख नास है आगे दरगाह हुए खलास शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अविनाश कर कृपा तेरे चरण त्यावो नानक मन तन दर्स प्यास सारंग महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कहां लभाइए आन।

पतित के पातक उत्तर है, हर नामा उर तार है। जो जो सुने राम जस निर्मल, ताका जन्म मरण दुख नासा। कहो नानक पाई वड भागी, मन तन हुए बिगासा।

करो जो दरिया मान करो अब मान न बोलो भूल चूक तेरी प्रिय क्रिया रहाओ निकट सुनो हर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुरलाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलाख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तौ नानक हर संग मिरिया सार महला पंजवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहिया दे नाओ बलिहारी रहाओ चौहो बिस फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरुड़ारी हाथ दे राखियो कर अपना जो जल कमला अलपारी हो नाही किस मैं क्या हुसा सब तुम ही कल तारी नानक भाग परयो हर पाछे राख संत सदकारी सारंग महला पंजवा अब मोहे सर्व उपाव बिर

अर ज्ञान ध्यान एक निमुख ना कीमत जाना। तुम ही नायक तुम है शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना। पामु दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना। सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा। विसरयो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ। हर सेवो हर हृदय बसाओ हर पाया सतसंगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा। प्रियो अपना गुर बस कर दीना भोगो भोग नसंगा। निरपौ भय नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन कौ कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवन हो पूरे देहा प्रिय अंक सुमानी। रहाओ छूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुड़ सुजानी। जे घर मह बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी। उनके बास आयो भगत बचन जिन राखी आन संतानी। कहो नानक हर संग मन।

दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाऊ। बिखम थान बहुत बहुत धरिया अनक राख सुरूपता। बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सानत पए लूटा। बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल अखूटा। जन नानक प्रभ कृपा तारी तौ मन मह हर रस कूटा। सारंग महला पंजवां अब मेरो ठाकर स्यों मन लीना। प्राण दान गुर पूरे दिया उरजायो ज्यों जल मीना। रहाओ काम क्रोध लोभ मद मत्सर एह अर्प सगल दान कीना। मंत्र दरडाए हर औखद गुर दियो तो मिलियो सगल प्रबीना। ग्रह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हौ खोई प्रभ दीना। कहो नानक मैं सहज घर पाया हर भगत भंडार खजीना। सारंग महला पंजवां मोहन सब जी तेरे तू तार है सुटह संघार निमख कृपा ते। कोट ब्रह्मांड उदार है रहाओ करह अरदास बहुत बेनंती। निमख निमख समार है हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है। क्या ए कूपत बपरे कही है कहो ए किसनो मार है। राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हार है। सारग महला।

तेते दुख सहमा गोविंद भजन के निर्भय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरा मन मिष्ट लगे प्रिय बोला गुरबाह पकड़ प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर ढोला रहाओ प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रित पालक मोहे कलत्तर सहत सब गोला मान तान सब तू है तू है एक नाम तेरा मैं भोला जे तख्त बसाल है तो दास तुम्हारे कास बढ़ाव है के तक बोला जन नानक के प्रभ पुरख बधाते मेरे ठाकुर अगह अतोला सार महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमख पाए समावे देख चरित मन मोहं रहाओ जिस सुनिए मन हुए रहस्यत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बाण आई प्रभ तोहं किल विख गए मन निर्मल होई है गुर काटे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करन कारण समरथोहं सारं महला पंजवा नैनहु देखियो चलत तमाशा सब हूं दूर सब हूं ते नेर अगम अगम घट।

परगासा कट कट हर हर दीठा रहाओ पार ब्रह्म आजोनी संभव सर्व थान कट बीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बाल बाल प्रभ चरणीठा सत संगत कीरेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा कहो नानक रंग चलूल पए है हर रंग ना लह मजीठा सारंग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुर साथे निमख बचन प्रभ हियर बसेओ सगल

फूल बेख खाई रहाओ। प्रभ सुंदर चतुर अनूप बधाते, तिस स्यों रुच नहीं राई। मोहन स्यों बावर मन मोहयो, झूठ ठगौरी पाई। भयो दयाल कृपाल दुख हरता, संतन स्यों बन आई। सगल निदान करै मह पाए, कहो नानक जोत समाई। सारंग महला पंजवा, वं प्रिय प्रीत चीत पहलरिया। जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर, तौ मैं साज सिंगरिया रहाओ। हम भूले हैं तुम सदा अपूला, हम पतत तुम पतत उधरिया। हम नीच बिरख तुम मैलागर, लाज संग संग बसरिया। तुम गंभीर तीर उपकारी, हम क्या बपरे जंतरिया।

कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराध खिन मह खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले फिर नानक राजया सार मोहल्ला पंजवा प्रभ मेरो इते उत सदा सहाय मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुण गाई रहाओ खेल खलाए लाड लडावे सदा सदा आनंदाई व्रत पाले बारक की न्याई जैसे मात पिताई तिस बिन निमख नहीं रह सकिए बिसरना कब हूं जाई कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पए लिवलाई सारंग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाइए आसना अवर काहू की कीजे सुखदाता प्रभ त्याइए रहाओ सुख मंगल कल्याण जिसह कर तिस ही सरणी पाइए किसह त्याग मनुख जे सेवहु तो लाज लोन होए जाइए एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मेल मत बुद्ध पाइए गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताई है सारंग महला पंजवा ओट सतानी प्रभ जी मेरे दृष्ट ना लियावो अवर काहू को मान महत प्रभ तेरे रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने काड लिया बिख केरे अमृत नाम औखद मुख दीनो जाए पया गुर पैरे कवन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दा तेरे काट सिल्क जो अपना कीनो नानक सुख कनेरे सारी महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख बनासी पयो कृपाल।

पुरखा किन्हीं बाप महतारी, सर्ब थोक नानक गुर पाए पूरन आस हमारी। सारंग महला पंजवा, झूठो माया को मदमान, त्रोहो मोह दूर कर बपरे, संग

इन सिंह राच माच हित लायो जो काम नहीं गावारी हौ नाही नाही किश मेरा ना हमरो बस चारी करन करावन नानक के प्रभ संतन संग उधारी सार महला पंजवा मोहनी मोहत रह ना होरी साधक सिद्ध सगल की प्यारी टुटे ना काहू तोरी रहाओ खट शास्त्र उचरत रसनागर तीर्थ गमन ना थोरी पूजा चक्कर बर्त नेम तपिया ऊहा गैल ना छोरी अंध कूप मह पतत होत जग संत हो करहो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पूरी सारिंग।

रहाउ, ऊही ते हरेउ, ऊहा ले तरेउ, जैसे बासा मास देत चाटली, देवनहार बसारेउ अंदले, ज्यो सफरी उदर पर है बह हाटली, साध बकार बकार झूठ रस, जह

समाए आनंद आनंद गुण गाया बाहां पकर कड लीने अपने ग्रह अंधकूप ते माया कहो नानक गुरबंधन काटे बिचरत आन मलाया सारंग महला पंजवा हर के नाम की गत ठांडी वेद पुराण सिमरत साधु जन खोजत खोजत काढ़ी रहाओ सेव ब्रंच अर इंदर लोक तामह जल तौ फिरिया सिमर सिमर स्वामी पय सीतल दुख दर्द भ्रम हिरिया जो जो तरयो परातन नवतन भगत पाए हर देवा नानक की बेनंती प्रभ जियो मिले संत जन सेवा सारंग महला पंजवा जिहवे अमृत गुण हर गाओ हर हर बोल कथा सुन हर की उचरहो प्रभ को नाओ रहाओ राम नाम रतन तन संचो मन तन लाभ पाओ आन बेभूत मिथ्या कर मानो साचा एह सो आओ जी प्राण मुक्त को दाता एक सस्यो लिव लाओ कहो नानक ता की सरनाई देत सगल अपे आओ सारंग महला पंजवा होती नहीं कमन कश करनी यह ओट पाई मिल संत है गोपाल एक की सरनी रहाओ पंच दोख छिदर या तन मह बिखे ब्याद की करनी आस अपार दिनस गण राखी ग्रस्त जात बल जरनी अनाथ है नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पै हरनी मन बाछत चितवत नानक दास देख जीवा प्रभ चरनी सारंग महला पंजवा फीके हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन हर गाइय अहनस पूर्ण नाद रहाओ सिमरत शांत महा सुख पाइय मिट जाहे

ऊचो अंत नहीं मर जात। वर्ण ना साखो नानक महिमा, एक रहे बिस्माद सारंग महला पंजवा।

रहाउ। समझ अचेत चेत मन मेरे, कथि संतन अकथ कहानी। लाभ लहु हर हृदय अराद हो, छुटकै आवन जानी। उदम सकत सियाणप तुमरे, देहे ता नाम बखानी। से भगत भगत से लागे, नानक जो प्रभु पानी। सारी महला पंजवा, तनवंत नाम के बनजारी। सांझी करहो नाम तन खाट हो, गुर का शब्द विचारे रहाओ। छोड़ हो कपट होए निर्वैरा, सो प्रभ संग निहारी। सच तन बन जो हो, सच तन संचो हो, कबहू ना आव हो हारी। खात खर्चत किसन खुटत नाही, अगंत परे पंडारी। कहो नानक सोबा संग जाव हो, पार ब्रह्म कै द्वारी। सारंग महला पंजवा।

सर्व प्रत पालक सर्व कटा आधारा, कोई न जाने तुमरी गत मित आप है एक पसारा। साध नाव बठावो नानक भव सागर पार उतारा। सारी महला पंजवा आवे राम सरन बड भागी, एक सबिन किस होर न जाने अवर अपाव त्यागी रहाउ। मन बच क्रम अराध हर हर साध संग सुख पाया। आनंद बनोद कथ कथा रस साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो ताकि उत्तम बाणी। साध संग नानक निस्तरी है जो राते प्रभ निर्वाणी। सारंग महला पंजवा जाते साधु शरण गही, शांत सहज मन भयो परगासा। बिरथा कछ न रही रहाउ, हो कृपाल नाम देहो अपना। बिनती एह कही आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत। पायो लाभ सही जहते उपजेओ तही समानो। साई बस्त आही कहो नानक परम गुरु खोयो। ज्योति ज्योत समही सारंग महला पंजवा। रसना राम को जस गाओ आन स्वाद बिसार सगले। भलो नाम सुआओ रहाओ चरण कमल बसाए हृदय। एक स्यों लिवलाओ साध संगत होहे निर्मल। बहुड़ जोन ना आओ जियो प्राण आधार तेरा। तून थावे थाओ सास सास समाल हर हर। नानक सद बल जाओ सारंग महला पंजवा। बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ। मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ। उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी माया करो भगवान। आवत जात दो पख पूरन पाइये सुख विश्राम। सोदत सोदत तत बिचारियो भगत श्रेष्ठ पूरी। कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सगल बिद उरी। सारंग महला पंजवा साचे सतगुरु दा तारा। दर्शन देख सगल दुख नास्त है चरण कमल बलिहारा रहाव। सत परमेश्वर सत साध जन निश्चल हर का नाऊ। भगत भावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाईए सगल घटा आधार। नानक वाहो वाहो कहो ताको जां का अंत ना पार। सारंग महला पंजवा गुर के चरण बसे मन मेरा। पूर रहे ओ ठाकुर सब थाई निकट बसे सब नेरे रहाओ। बंधन तोर राम निवलाई संत संग बने आई। जन्म पदार्थ भयो पनीता इच्छा सगल पुजाई। जां को कृपा करहु प्रभ मेरे सो हर का जस गावे। आठ पैर गोविंद गुण गावे जन नानक सद बल जावे। सारंग महला पंजवा जीवन तो गनी है हर पेखा। करहु कृपा प्रीतम मन मोहन फोर परम की रेखा रहाओ। कहत सुनत किश शांत ना उपजत बिन बसास क्या सेखा। प्रभु त्याग आन जो चाहत तां कै मुख लागै का लेखा। जां कै रास सर्व सुख स्वामी आन न मानत भेखा। नानक दर्श मगन मन मोहयो पूरन अर्थ बेसेखा। सारंग महला पंजवा सिमरन राम को एक नाम। कलमल दग्ध होहे खिन्यंतर कोट दान इशनान रहाओ। आन जंजार वृथा श्रम कालत बिन हर फोकट ज्ञान। जन्म मरण संकट ते छूटै जगदीश भजन सुख ध्यान। तेरी शरण पूर्ण सुख सागर कर कृपा देव दान। सिमर सिमर नानक प्रभ जीवै बिन सजाए अभमान। सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे तुर को लागै।
सोई तुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागे रहाओ। बलबंच करे ना जाने लाभ है सो धूरत नहीं मूड़ा। स्वार्थ त्याग असार्थ रचियो नह सिमरै प्रभ रूड़ा। सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना। साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना। सारंग महला पंजवां हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर। राम नाम रस पीवन रहाओ संचन राम नाम धन रतना। मन तन भीतर सीवन हर रंग रांग पए मन लाला। राम नाम रस खीवन ज्यों मीना जल स्यों उरजाना।

हर के नामहीन मत थोरी, सिमरत नाहे श्री तर ठाकुर, मिलत अंध दुख घोरी रहाओ। हर के नाम स्यो प्रीत न लागी, अनक भेख बहु जोरी, टूटत बार न लागै ताको, ज्यो गागर जल फोरी। कर कृपा भगत रस दीजै, मन खचत प्रेम रस खोरी। नानक दास तेरी सरनाई, प्रभ बिनयान न होरी। सारंग महला पंजवां, चितवो वा अवसर मन माहे, हुए अकत्तर मिलहो संत साजन, गुण गोविंद नित गाहे रहाओ।

एकालिव पूर्ण परमेश्वर पौ नहीं नानक ताकै सारंग महल्ला पंजवां जाकै राम को बल होए सगल मनोरथ पूर्ण ताऊ के दुख ना व्यापै कोई रहाओ जो जन भगत दास निज प्रभ का सुन जीवा तिस सोए उद्म करो दर्शन पेखन कहो कर्म प्राप्त होए गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत होए सारंग महल्ला पंजवां जीवत राम के गुण गाए करहु कृपा गोपाल बीठले बिसरना कब ही जाए रहाओ मन तन धन सब तुम।

तेरी सरनाई, ज्यो भावै तिवै चलाई। सारंग महला पंजवा, मन रे नाम को सुख सार, आन काम विकार माया सगल दिसह शार रहाव। ग्रह अंध कूप पतत प्राणी, नरक घोर गुबार, अनक जोनी भ्रमत हारे हो भ्रमत बारंबार। पतत पावन भगत बच्छल, दीन कृपा तार, कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार। सारंग महला पंजवा, विराजित राम को प्रताप, आद बियाद उपाद सब नासी।

मन तन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कै संग खाप भगत वचल भय काटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवां आतुर नाम बिन संसार त्रिपत न होवत कुकरी आसा इत लागो बिखिया चार रहाओ पाए ठगौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है की रवार नानक दास दर्श प्रभ जाचे मन तन को आधार सारंग महला पंजवां मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवै जाई राख ले हो प्रभ समृत दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई पव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवां रमण को राम के गुण बाद साध संग त्याय परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी बिनसे माया माद सहज आनंद अनहद धुन बाणी बहुर न पय बिखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमे ओम मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवां कीने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कतह नाही छोट रहाव महाबज्जर बिख ब्यादे सिर उठाई पोट उगर घन्या खिनह पीतर जमह ग्रासे झूट पशु परेत उष्ट गर्धव अनक जोनी लेट भज साध संग गोविंद नानक कछ ना लागै फेट सारंग महला पंजवां अंधे खावह बिसु के गताक नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रिझान उदर लै पुख है माया गैया हाट किल बिख करत करत पछताव है कबू ना साक है शांत निंदक जमदूती आए संघारेओ देव है मूड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई माने अपना की नो फाट सारंग महला पंजवां टूटी निंदक की अद बीच जन का राखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाओ उसका कहया कोए ना सुनी कहीं ना बैसन पावे इहां दुख आगे नरक पुंचे बहु जोनी परमावे प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी कीता अपना पाया नानक शरण निरपहु करते की आनंद मंगल गुण गाया सारंग महला पंजवां तृष्णा चलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात है अंत प्रतिहार रहाओ सांत सुख न सहज उपजे यह इस व्यवहार आप पर का कश

वार रहाओ। कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए, अब चलनी मतराई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निद पाही। सारंग महला पंजवां, निभे नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए निद तन, बिखे माहे अलेप रहाओ। जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रत्न जन्म अपार जीतेओ।

सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचिया हर संग संग खचिया जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारे महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार वेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सर्वन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे बरत संद सोच चार क्रिया कुंट निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्श नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारंग महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुरु गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए संतन कै चरण लाग नानक गुण गाई सारंग महला पंजवा हर हरे हर मुख बोल हर हरे मन तारे रहाओ श्रवण सुनन भगत करन अनक पातक पुनः चरण।

कलमल दुख जारी कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते राम राम सार भूत नानक तत बिचारे सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी रहाव प्रीत लाए हर त्याए गुण गोविंद सदा गाए हर जन की रेन बांछ दैन हार स्वामी सर्ब कुशल सुख विश्राम आनंदा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास सिमर अंतर जामी एक सरन गोविंद चरण संसार सगल ताप हरन।

नौ परिच नतकार सुंदर अनग भाव करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवा हर बिन तेरो को ना सहाई कां की मात पिता सुत बनता को काहू को भाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना चालै कहां ताहे लपटाई दीन दयाल सदा दुख भंजन तांस्यो रुचना बढ़ाई नानक कहत जगत सब मिथिया ज्यों सुपना रह नाई सारंग महला नौवा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या यग मह को रहन ना पावे।

सगल बला सह ज्यो बादर की शाही ताज अभमान सरन संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नौवा कहां नर अपनो जन्म गुआवे माया मद भिख्या रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाव इह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवां मन कर कबहू ना हर गुण गायो बिख्या सख्त रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहो मैं अपनी करनी जेह विद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदिया महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन क्यों जीवा मेरी माई जय जगदीश तेरा जस जाचो मैं हर बिन रहन ना जाई रहाओ हर की प्यास प्यासी कामन देखो रहन सुबाई श्री तारनाथ मेरा मन लीना प्रभ जाने पीर पराई गणत शरीर पीर है हर बिन गुर शब्दी हर पाई हो दयाल कृपा कर हर जियो हर सियो रहा समाई ऐसी रबत रवो मन मेरे हर चरणी चित लाई विषम भये गुण गाए मनोहर निरपौ सहज समाई हृदय नाम सदा तुन निश्चल घटै न कीमत पाई बिन नावै सब कोई निरतन सतगुर बूझ बुझाई प्रीतम प्राण भये सुन सजनी दूत मोए बिख खाई जब की उपजी तब की तैसी रंगुल भई मन पहाई सहज समाध सदा निवहर सियो जीवा हर गुण गाई गुर कै शब्द रत्ता बैरागी

ऐसी गुरमत पाई। सनक सनाद ब्रह्माद इंद्रादिक भगत रते बन आई। नानक हर बिन करी न जीवा हर का नाम बढ़ाई। सारंग महला पहला हर बिन क्यों तीरै मन मेरा। कोट कल्प के दुख बनासन साच दृढ़ाए निबेरा रहाओ। क्रोध नवार जले हो ममता प्रेम सदा नौरंगी। अनुभव बिसर गए प्रभ जाचिया हर निर्माल संगी। चंचल मत त्याग भव भंजन पाया एक शब्द लिव लागी। हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल लय बड भागी। अपरत सिंच पय सुपर सर गुरमत साच निहाला। मन रतना अमृते नेह केवल आद जुगाद दयाला। मोहन मोहे लिया मन मोरा बड़े भाग लिव लागी। साच विचार किल विख दुख काटे मन निर्मल अनरागी। गहर गंभीर सागर रतनागर अवर नहीं अन पूजा।

हर रस रत्ते अद कहाई, एक सबिन मैं अवर ना जाना, सतगुर बूझ बुझाई। अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुपार भरे नाही चित डोले, मन ही ते मन मानिया, गुर प्रसादी अकथो।

द्वारा जिन दर सूझै से कदे ना बगाड़ै सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावै आवण जान रहाई से दर साचै साच कमावै जिन गुरमुख साच अधारा मन मुख दूजै परम पलाए ना बूझै विचारा आपे गुरमुख आपे देवै आपे कर कर वेखै नानक से जर थाए पए हैं

सतगुरु प्रसाद गुसाई प्रताप तोहारो डीठा करन करावन उपाय समावन सगल सत्र पत बीठा रहाउ राणा राव राज भय रंका उन झूठे कहन कहायो हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल घटा जस गायो उपमा सुनहो राजन की संतो कहत जेत पहुंचा बेशुमार वद साहदा तारा ऊचे ही ते ऊचा पमन परोयो सगल अकारा पावक काष्ट संगे नीर तरन कर राखे एकत कोए ना किसी ही संगे कट कट कथा राजन की चाल कर कर तुझे उमाहा जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजित समाहा जो किछ करना

साहिब कुदरत कौन बीचारा मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा सारग महला पंजवा अष्टपदी घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास मित नाही जाका विस्थार सोभा ताकी अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहु मैं नाहे अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करह अनक महेश बैस ध्यान धरह अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंदर उभे दरबार अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दद खीर अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात अनक बसुदा अनक कामतेन अनक पार जात अनक मुखवेन अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होवत बखियान अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर अनक सेख नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड अनक बना अनक फल मूल आपह सूख में आपह असथूल अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तह चीत सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग अनक अनाहद आनंद चुनकार वा रस का कश अंत न पार सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण अपना किया जन है आप आपे घट घट रहे हो बे आप कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते पहे निहाल सारंग संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब देखिए अनपह का दाता कट कट पूर्ण है अनपाता कट कट पूर्ण कर बिस्थीरन जल तरंग स्यो रचन किया अब रस माने भोग कटाने आन ना बिया कोथिया हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता नानक दर्श लीना ज्यो जल मीना सब देखिए अनपह का दाता कौन उपमा देओ कमन बढ़ाई पूर्ण पूर रहो सर्ब ठाई पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन जब खिंचे तब शाई क्यों न अराध हो मिलकर साधु हो करी मोहतक बेला आई अर्थ दर्ब सब जो किस दिसे संग ना कछु हो जाई कहो नानक हर हर अराध हो कवन उपमा देओ कवन बढ़ाई पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा हियो अरापो देहो संदेसा प्रभ जीओ कैसा कह मोहन परवेसा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थान अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह ना सको हर जैसा देख चिरित नानक मन मोहयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पह आया तन सोरदा जेह चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गुवाया भया प्रगास हृदय उलास प्रभ लोड़ींदा पाया दुख नाठा सुख घर मह बूठा महा आनंद सह जाया।

पह आया। सारंग की वार महला चौथा, राय महमे हसने की धुन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक महला दूजा। गुर कुंजी पाहु निवल, मन कोठा तन छत। नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़ै, अवरना कुंजी हाथ। महला पहला, ना पी जय रागी ना दी वेद, ना पी जय सुरती ज्ञानी योग, ना पी जय सोगी की तैरोज, ना पी जय रूपी माली रंग, ना पी जय तीत पवै नंग, ना पी जय दाती की तै पुन, ना पी जय बाहर बैठिया सुन, ना पी जय भेड़ मरह भिड़ सूर, ना पी जय केते होवै धूड़। लेखा लिखिया मन कै पाए, नानक पी जय साचै नाए। महला पहला, नव शे खटका करे विचार, निस दिन उचरै पार अठार। तिन पी अंत न पाया तोहे, नाम बिहून मुक्त क्यों होए। नाभ वस्त ब्रह्म अंत ना जानिया, गुरमुख नानक नाम पछाणिया। पौड़ी आपे आप निरंजना, जिने आप उपाया। आपे खेल रचायोन, सब जगत सबाया। त्रै गुण आप सिरजियन, माया मोह वधाया। गुर प्रसादी उबरे, जिन पाणा पाया। नानक सच वरतदा, सब सच समाया।

कह दावे मूल मत परवाना एहो नानक आख सुनाए करनी उपर होए तपावस जे को कह कहाए पौड़ी गुरमुख चलत रचाय उन गुण प्रगटी आया गुरबाणी सद उच्चरै हर मन वसाया सकत गई भ्रम कटिया शिव जोत जगाया जिनकै पोतै पुन है गुरपुरख मलाया नानक सहजे मिल रहे हर नाम सुमाया सलोक महला दूजा सा चले बन जा रिया लिखिया देवै नाल लिखे उपर हुक्म होए लइए वस्त सुमाल वस्त लई बनजारी वखर बद्दा पाए के इलाहा लै चले एक चले मूल गवाए थोड़ा किन ना मंगियो किस कही ऐसा बास नदर तिन्ना को नानका जे साबत लाए रास महला पहला जुड़ जुड़ विछड़े विछड़ जुड़े जीव जीव मोए मोए जीवे केत्या के बाप केत्या के बेटे केते गुर के ले हुए आगे पाछे गणत ना आवे क्या जाति क्या हुण हुए सब करना किरत कर लिखिए कर कर करता करे करे मन मुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मन मुख दूजा परम है दूजा लोभाया कूड़ कपट कमावंदे कूड़ो आलाया पुत्र कलत्र मोह हेत है सब दुख सबाया जम दर बद्दे मारी है परम है परमाया मन मुख जन्म गवाया नानक हर पाया सलोक महला दूजा जिन वडियाई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे नानक अमृत मने माहे पाइये गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग सिउ जिनको लिखिया आद महला दूजा कीता क्या सलाहिए करे सोए सलाहे नानक एकी बाहरा दूजा दाता नाहे करता सो सलाहिए जिन कीता आकार दाता सो सलाहिए जे सब सह दे आधार नानक आप सदीव है पूरा जिस भंडार वड्डा कर सलाही है अंत ना पारावार पौड़ी हर का नाम निदान है सेवे है सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पत सियो कर जाई गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई मत पंखे रू वस हुए सत गुरु त्याई नानक आप दयाल हुए नामे लिव लाई सलोक महला दूजा किस सिओ कैसा बोलना।

आए तले आवह नानका सदे उठी जाहे। महला दूजा सिफत जिना को बख्शी है से पोते दार कुंजी जिन को दितिया तिना मिले पंडार। जह पंडारी हूं गुण निकल है ते की यह परवान नदर तिना को नानका नाम जिन्ना निशान पौड़ी। नाम निरंजन निर्मला सुनिया सुख होई सुन सुन मन वसाई है बूझे जन कोई। बहदिया उठदिया ना विसरे साचा सच सोई भगतां को नाम आधार है नामे सुख होई। नानक मन पन रव रहिया गुरमुख हर सोई। श्लोक महला पहला नानक तुलिया है।

आख एक आख आख है शब्द पाख है अर्ध उर्ध दिन रात जे कहो होए ता केहो दिसे जापै रूप ना जात सब कारण करता करे काटे ओ काट काट थाप आखने ओखा नानका आख ना जापै आख पौड़ी नाए सुने मन रहसी है ना मेशा ते आई नाए सुने मन तृप्ति है सब दुख गवाई नाए सुने ना उपजे नामे वडे आई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरमुख नाम ते आई है नानक लिवलाई सलोक महला पहला झूठ ना रागी झूठ ना वेदी झूठ ना चंद सूरज की भेदी झूठ ना अन्नी झूठ ना नाई झूठ ना मीह भरिया सब थाई।

मूर्ख की गिरही का सतदान राजे चुड़ी नियाम की पढ़िया सच त्यान पानी चेतना धूपे मुख पीता तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिए नौ निध मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिए संतोख हुए कबला चरण ते आवे नाए सुनिए सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमति ना उपाइये नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करहे पुकार दुख किया पन्ना खुलिया सुख ना निकले ओ कोए दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रतिया मन तन हरिया होए दुख किया अग्नि मारी है ई दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे पशु पास कमावनी पी पास परिया दे जा जियो विचों कढ़िए पशु परिया जाए अगे लेख मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुनिए सुच संयमो जम नेड़ ना आवे नाए सुनिए घट चानना अनेर गुआवे नाए सुनिए आप बुझिए लाहा ना पावे नाए सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुनिए मुख उजले नाऊ गुरमुख त्यावे सलोक महला पहला तर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल कुंगू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए।

हुक्म चलाए अपने करमी वह कलाम नानक सच्चा सच नाए सच सभा दीवान पौड़ी नाए मने सुख उपजे नामे गत होई नाए मने पत पाई है हिरदय हर सोई नाए मने पवजल लंघी है फिर विघ्न ना होई नाए मने पंथ प्रगटा नामे सब लोई नानक सतगुर मिले नाओ मनी है जिन देव सोई श्लोक महला पहला पुरिया खंडा सिर करे एक पैर ते आए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे किस ऊपर ओह टिक टिके किसनो जोर करे किसनो कहिए नानका किसनो करता दे हुक्म रहाए अपने।

तार सिद्ध समाधि सब सुनी जाए देखा दरबार अगे सच्चा सच नाय निरपो भै विनसार होर कच्ची मती कच पिच अंधिया अंध बीचार नानक करमी बंदगी नदर लंघाए पार पौड़ी नाए मन्ने दुरमत गई मत प्रगटी आया नाओ मन्ने हौमै गई सब रोग गवाया नाए मन्ने नाम उपजे सहजे सुख पाया नाए मन्ने शांत उपजे हर मन वसाया नानक नाम रतन है गुरमुख हर त्याया सलोक महला पहला होर शरीक होवै कोई तेरा तिस अगे तुदे आखा तुद अगे तुदे सलाही मैं अंधे नाओ सुजाखा जेता आखन साही शब्दी भाखिया पाए सुपहाई।

पहला मनो जे अंधे कूप कहया बिरद ना जाननी मन अंधे ऊंधे कवल दिसन खरे कुरूप एक कह जान है कहया बुझ ते नर सुगड़ स्वरूप एक ना नाद ना वेद ना गी रस रस कस ना जानंत एक ना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत पौड़ी गुरमुख सब पवित है धन संपै माया हर अर्थ जो खर्च दे दें दे सुख पाया जो हर नाम त्याएं दे तिन टोट ना आया गुरमुखा नदरी आमदा माया सुत पाया नानक भगता होर चेतना आवे हर नाम सुमाया। श्लोक महला चौथा सतगुर सेवन से बड़ भागी सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी ग्रह कतंब मह सहज समाधि नानक नाम रते से सच्चे बैरागी। महला चौथा गणत सेव ना होवे कीता थाए ना पाए शब्द साध ना आयो सच ना लगो पाओ सतगुर प्यारा ना लगे मन हठ आवे जाए जे एक विख अगाहां भरे ता दस विखां पछाहां जाए सतगुर की सेवा चाकरी जे चल है सतगुर पहाए आप गुआए सतगुरु।

पाई, घर मंदिर गच गीरिया किस साथ ना जाई, सोएन साखत पौन वेग त्रिग त्रिग चतुराई, शक्ति अमृत प्रकार करह बहु मैल वधाई, नानक जो देवै तिसह ना जाननी मन मुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, जे संतर भव थके भेख तारी, दूजे पाए नाओ कदे ना पाइन, दुख लागा अत भारी, मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव है, माया कै व्योहारी, अंदर कपट उदर भरन कै ताई, पाठ पढ़ है गवारी, सतगुर सेवे सो सुख पाए, जिन्हों मैं विचों मारी, नानक पढ़ना गुणना इक नाओ है, बूझे को बिचारी। महला तीजा। नांगे आवना नांगे जाना, हर हुक्म पाया।

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धर्माई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई।

सहजे सुख सुत्ती शब्द समाए, आपे प्रभ मेल लई गल लाए, दुबदा चूपी सहज सुपाए, अंतर नाम बसिया मन आए, से कंठ लाए जे पन कढ़ाए, नानक जो तुर मिले से हुण आन मलाए। महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया क्या जप जप है होर, बिस्ता अंदर कीत से मुठे तंदे चोर, नानक नाम न विसरे झूठे लालच होर पौड़ी, नाम सलाहन नाम मन अस्थर जग सोई, हिरदय हर हर चितवे दूजा नहीं कोई, रोम रोम हर कुचरे खिन खिन हर सोई, गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई, नानक जीवन दा पुरख त्याया अमरा पद होई। सलोक महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया बहु कर्म कमावे है होर, नानक जानपुर बदे मारी है ज्यो सन्नी उपर चोर। महला पंजवा, तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदिया हर नाउ, नानक नाम मिहूणिया तिन तन खावे काउ पौड़ी, नाम सलाहन भाउ कर निज महली वासा, उए बहुड़ जोन ना आमनी फिर होहे ना बनासा, हर से ती रंग राव रहे सब सास ग्रासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख परगासा, उए कृपा कर कै मेलियन नानक हर पासा। सलोक महला तीजा, जिचर इहो मन लहरी विच है हऊ मैं बहुत अहंकार, शब्दै साध न आवई नाम न लगे प्यार, सेवा थाए न पवई तिसकी खप खप हुए खुआर, नानक सेवक सोई आखी है जो सिर धरे उतार, सतगुर का भाणा मन ले शब्द रखे उर धार। महला तीजा, सो जप तप सेवा चाकरी जो खसमै पावै, आपे बख्शे मेल ले आपत गुआवे, मिलिया कदे न विछड़े ज्योति ज्योत मलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिसे आप बुझावे पौड़ी, सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी, हर नाम कदे न चेतई जम काल सिर मारी, पाप विकार मनूर सब लदे बहु भारी, मार्ग बिखमंड रावणा क्यों तरिय तारी, नानक गुर राखे से उभरे हर नाम उधारी। सलोक महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सुख नहीं मर जम्मे वार वार, मोह ठगौली पाईन बहु दूजे पाए विकार, एक गुर प्रसादी उभरे किस जन को करह सब नमस्कार, नानक अन दिन नाम त्याए तू अंतर जित पावे है मूख द्वार। महला तीजा, माया मोहे वसारिया सच मरना हर नाम, तंदा करतिया जन्म गया अंदर दुख सहाम, नानक सतगुर सेव सुख पाया जिन पूर्व लिखिया कराम पौड़ी, लेखा पढ़िया हर नाम फिर लेख ना होई, पुछ ना सकै कोई हर दर सद ढोई, जम काल मिले दे भेट सेवक नित होई, पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई, नानकिया नहद धुनी दरवाज दे मिलिया हर सोई। सलोक महला तीजा, गुर का कहया जे करे सुखी हूं सुख सार, गुर की करनी पौ कटिया नानक पावे पार। महला तीजा, सच पराणा ना थी नाम ना मैला होए, गुर कै भाणे जे चले बहुड़ ना आवन होए, नानक नाम वसारे आवन जाना दोए पौड़ी, मंगत जन जाचे दान हर देहु सुपाए, हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए, खिन पल घड़ी ना जीवऊ बिन देखे मरा माए, सतगुर नाल दिखालिया रल रहिया सब थाए, सुत्या आप उठाल दे नानक लिव लाए। सलोक महला तीजा,
मनमुख बोल न जाननी, उना अंदर काम क्रोध अहंकार।

आपे सेट उपायन आप करे विचार। नानक किसनो आखी है सब वरते आप सत्यार। महला तीजा हर गुरमुख तिनी अराध्या जिन कर्म प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिन को जिन हर मन बसिया सोए पौड़ी। आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया। वलवंच कर अपाव माया हेरे आणिया जमकाल निहाले सास आव घटै बेतालिया। नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाण दे माया मोह सवाई। दूजे पाए नाम वसारिया मन मूरख मिलै सजाए। जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजक समाए। जम का पाहा गलहो ना कटी है फिर आवह जाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए। अन दिन नाम त्याए दे नानक सच समाए। महला तीजा सच वणंज है सच सेव दे जे गुरमुख पैरी पाए। नानक गुर कै पाण जे चल है सहजे सच समाए पौड़ी। आसा विच अत दुख घणा मन मुख चित लाया। गुरमुख भये निरास परम सुख पाया। विचे ग्रह उदास अलिपत लिव लाया। उन्ना सोग वजोग ना व्यापई हर भाणा पाया। नानक हर सीती सदा रव रहे तुर लए मलाया। सलोक महला तीजा पराई अमान क्यों रखी है दित्ती ही सुख होए। गुर का

पाए, जे आप परख ना आवे ता पारखियां थावो लयो परखाए, जे उस नाल चित लाए ता वत लह नौ नित पल्ले पाए। धर हुंदा धन जग भुखा मोआ, बिन सतगुर सोजी ना होए, शब्द सीतल मन तन वसै, कितै सोग वजोग ना कोए। वस्त पराई आप गर्भ करे, मूर्ख आप गणाए, नानक बिन बूझे किने ना पायो, फिर आवै जाए। महला तीजा, मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम, सरसे सज्जन संत प्यारे, जो तुर मिले ना विचड़ है कबहू, जे आप मेले करतारे। अंतर शब्द रविया गुर पाया, सगले दुख नवारे, हर सुख दाता सदा सलाही, अंतर रखा उरतारे। मनमुख तिनकी बखीली के करे, जे सच्चा शब्द सवारे। उन्हां दी आप पात रख सी मेरा प्यारा, शरणागत पए गुरुद्वारे। नानक गुरमुख से सुहेले पए, मुख उज्जल दरबारे। पौड़ी स्त्री पुरख है बहु प्रीत, मिल मोह वधाया, पुत्र कलत्र नित वेखै, बिकसै मोह माया। देश परदेश धन चुराए, आन मोहे पाया, अंत होवै वैर विरोध, को सकै ना छडाया। नानक बिन नावै त्रिग मोह, जित लग दुख पाया। सलोक महला तीजा, गुरमुखे अमृत नाम है, जित खादै सब भुख जाए, तृष्णा मूल ना हो गई, नाम वसै मन आए। बिन नावै जे होर खाना, तित रोग लगै तन धाए, नानक रस कस शब्द सलाहना, आपे लए मलाए। महला तीजा, जिया अंदर जियो शब्द है, जित सह मेलावा होए, बिन शब्द जग अनेर है, शब्दे प्रगट होए। पंडित मोनी पर पड़ थके, भेख थके तन धोए, बिन शब्द किने ना पायो, दुखिए चले रोए। नानक नदरी पाई है, कर्म प्राप्त होए। पौड़ी स्त्री पुरख है अत नेहो, बह मंद पकाया, दिसदा सब किस चल सी, मेरे प्रभ पाया। क्यों रही है थिर जग को कड्डो उपाया, गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सबाया। नानक बख्श मलायन हर नाम समाया। सलोक महला तीजा, माया मोहे वसारिया, गुर का भउ हेत अपार, लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार। गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै, दरगाह मूख द्वार, नानक आपे मेल लए, आपे बख्शन हार। महला चौथा, नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना, विसरे सरै न बिंद, किस स्यो क्यों मन रूसी है, जिसै हमारी चिंद। महला चौथा, सामने आया चिम चिमा, हर गुरमुख नाम त्याए, दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी, मीह उठा शहबर लाए। सब धरत पई हरियावली, अन जमया बोहल लाए, हर अचिंत बुलावै कृपा कर, हर आपे पावै थाए। हर तसै त्यावो संत जन हो, जो अंते लए छडाए, हर कीरत भगत आनंद है, सदा सुख वसै मन आए। जिन्ना गुरमुख नाम अरादिया, तिन्ना दुख भुख लह जाए, जन नानक तृपतै गाए गुण, हर दर्शन देहो सुभाए। पौड़ी गुर पूरे की दात, नित देवै चढ़ै सवाइया, तुस देवै आप दयाल, ना छपै छपाइया, हिरदै कवल परगास, उन मन लिव लाइया, जे को करे उस दी रीस, सिर छाई पाइया। नानक अपड़ कोय ना सकई, पूरे सतगुर की वडियाइया। सलोक महला तीजा, अमर वे परवाहो है, तिस नाल सियाणप ना चलई, ना हुज्जत करनी जाए, आप छोड़ सरनाए पवे, मन लए रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगई, हउ मैं विचों जाए,
नानक सेवक सोई आखी है, जे सच रह लिव लाए महला तीजा। दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियान पहुं मैं मेरी। बहु कर्म कमावे है लोभ मोहे व्यापे, हम मैं कदे ना चूके फेरी। नानक आप कराए करता, जो तिस पावे साई गल चंगेरी। पौड़ी महला पंजवां, सच खाना सच पहनना, सच नाम आधार। गुर पूरा मेलाया प्रभ देवन हार, भाग पूरा तिन जागया जपया निरंकार। साधु संगत लग्या तरिया संसार, नानक सिफत सलाह कर।

अंत ना चलत संगात कहत कबीर राम भज बौरे जन्म अकारत जात राजा श्रमित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हों चेरी रहाओ हस्तु जाए सो रोवत आवे रोवत जाए सो हस्त।

मन बिखिया बन जाए, भूलोरे ठगमूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रह, काल जाल की सुध नहीं लह, जेहबा स्वादी लीलत लोह।

चार गऊ बाश कौ संचय खीर गला बांध दोहे ले अहीर माया कारण श्रम अत करे सो माया ले गाडे तरे अत संचय समझे नहीं मूड तन धरती तन होए गयो धूड़ काम क्रोध तृष्णा अत जरै।

पूरा दास अनिन मेरो निज रूप दर्शन निमुख त्राप त्रई मोचन परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाओ मेरी बांदी भगत छिडावै।

नामनी भगत नहीं उपजे, भूखे दान ना दीना रहाउ, काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुख ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा, बाट पार कर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जेहे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मेल, कथा पनीत ना चाली, छाड मन हर बे मुखन को

हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो, आनंद सहज तुन झोक रहाओ, दर्शन पेख भय निर्भिखे, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यो काज न कछु है, सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत,

कबीर जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुत बनता हित लागो सब पन का रहाउ आगे कौ किश तुलहा बंद हो क्या परवासा धन का कहां बसासा इस भांडे का इतना कलागे ठन का सगल धर्म पुन फल पाव हो तूर बांच हो सब जन का कह कबीर।

उर धारा मलार मोहल्ला पहला जिन धन पिर का साधना जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बस घना मेरा पिर घर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभयान मलाया रहाउ नौ तन प्रीत सदा ठाकुर सिउ अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख बगासी तौ धन साच शिंगारू अकुल निरंजन सिउ सच साची गुरमत नाम आधारू मुक्त भई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पाई।

पार। पीतर अमृत सोई जन पावे, जिस गुर का शब्द रत्न आचार। रहाउ दुख सुख दो सम कर जाने, बुरा भला संसार। शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाईए, सत संगत गुर प्यार। एहन सलाहा हर नाम प्रापत, गुरदाता देवन हार। गुरमुख सिख सोई जन पाए, जिसनु नदर करे करतार। काया महल मंदर घर हर का, तिस मह राखी जोत अपार। नानक गुरमुख महल बलाईए, हर मेले मेलन हार। मलार महला पहला घर दूजा,

तां तन उठ खलोए रोग मन अंधे को मिले सजाए वैद ना भोले दारू लाए चंदन का फल चंदन वास मानस का फल घट मह सास सास गए काया ढल पाए तां कै पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटस सात्य नाय मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख पीसन हाथ दान नित नित लेहो ना सीजै दे अंत

आसन बंद नानक कर्म होवै जपियै कर गुर पीर सच समावै एहो शरीर मलार महला तीजा चौपदी कर पहला।

दे त्रिपतास्ते सत्य नाम सुवाही आनंदेन हर रव्या हृदय अंतर सहज समाध लगाही सतगुर शब्दी इहो मन भेदिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभ अलख न जाई लखिया गुरमुख अकत कहानी आपे दया करे सुखदाता जपिए सारिंग पाणी आवन जाना बहुड़ ना होवे गुरमुख सहज ते आया मन ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही मन समाया साचे ही सच साच पतीजै।

में अंतर वस्या अलख्य अपेवा गुरमुख होए न खाए। नानक जिस भावै तिसे आपे देवै भावै तिवै चलाए। मलार महला तीजा तो तुके सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान। गुर शब्दी चूकै अभमान जिनको ललाट लिखिया धुर नाम। अन दिन नाम सदा सदा त्यावह साची दरगाह पावह मान रहाउ। मन की बिद सतगुर ते जाने अन दिन लागै सद हर स्यो ध्यान। गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दरगाह साची पावह मान। इहो मन खिलै हुक्म का बांधा एक खिन मह दह दिस फिर आवै। जाय आपे नदर करे हर प्रभ साचा ता इहो मन गुरमुख तत्काल वस आवै। इस मन की बिद मन हूं जानै बूझै शब्द विचार। नानक नाम त्याए सदा तू भव सागर जित पावह पार। मलार महला तीजा जियो पिंड प्राण सब तिसके घट घट रहे आसमाई। एक सबिन मैं अवर ना जाना सतगुरु दिया बुझाई। मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदृष्ट अगोचर अपरंपर करता गुर कै शब्द हर त्याई।

पाई, गुर प्रसादी बूझो पाई, सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो त्यहां गुणा की पांड उतारे, अनदिन एको नाम बखाने, सतगुरु की ओहो दीखिया ले, सतगुरु आगे शीस तरे, सदा अलग रहे निर्भर।

नानक कवन बिद करे क्या कोए सोई मुकत जाको कृपा होए अन दिन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गुआई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रभ मिलिया महल घर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुबदा खोया कौडी बदलै जाए रहाउ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उर धार भवजल शब्द लंघावन हार दर साचै दिसै सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम भूले बहु माया हउ मैं ममता बहु मोह वधाया दूजै पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपियै सच लाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवन मुक्त गुरमति लागे हर की भगत अन दिन सद जागे।

मुक्त घर रह, गुर शब्दी अस्थिर घर बह, मेरे मन काहे रोस करी जै, लाहा कलयुग राम नाम है, गुरमत अन दिन हृदय रवीजै, रहाउ बाबीहा खिन खिन बिललाए, बिन फिर देखे नींद ना पाए, इहो विछोड़ा सहया ना जाए, सतगुर मिले ता मिले सुपहाए, नाम हीन बिन सह दुख पाए, तृष्णा जलिया भूख ना जाए, बिन भागा नाम ना पाया जाए, बहुविध थाका कर्म कमाए, त्रै गुण बाणी वेद विचार, बिख्या मैल बिख्या वापार, मर जन्म है फिर होए खुआर, गुरमुख तुरिया।

तीर्थ आठ साठ मज्जन नहाई, सत संगत की धूर परी उड नेतनी, सब दुरमत मैल गवाई रहाओ। जाहर नवी तपै भगीरथ आनी, केदार थाप्यो महसाई, कांसी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर

नित कपट कमात, तिनको क्या कोई देखवाले, वे आप बीज आपे ही खांत। हर का चेहन सोई हर जन का, हरे आपे जन मह आप रखांत। तन तन गुरु नानक समदर्शी, जिन निंदा उस्तत तरी तरांत। मलार महला चौथा, अगम गोचर नाम हरि उत्तम। हर कृपा ते जप लया, सत संगत साध पाई वडभागी। संग साधु पार पया, मेरे मन आनंद ने आनंद पया। गुर प्रसाद नाम हर जपया, मेरे मन का भ्रम पौ गया रहाउ। जिन हर गाया जिन हर जपया, तिन संगत हर मेलोह करमया। तिनका दर्श देख सुख पाया, दुख हम मैं रोग गया। जो अन दिन हृदय नाम ते आवे, सब जन्म तिन्ना का सफल भया। वे आप तरे सृष्ट सब तारी, सब कुल भी पार पया। तुदे आपे आप अपाया सब जग, तुदे आपे वस कर लिया। जन नानक को प्रभ कृपा तारी, बिख डुबदा काढ लिया। मलार महला चौथा, गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया। तृष्णा भूख न जाई, मन मुख मूड जलत अहंकारी। हम मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरता जन्म गवाया। दुख लागे पछताई, जिसते उपजे तिसह न चित है। त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम ते आई। हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर

प्रसाद, हर जन बोलत श्री राम नामा, मिल साध संगत हर तोर रहाउ, हर तन बन जोहो हर तन संचोहो, जिस लागत है नहीं चोर, चातर कमोर बोलत दिन राती, सुन कनहर की कोर, जो बोलत है मृग मीन पंखेरु, सो बिन हर जापत है नहीं होर, नानक जन हर कीरत गाई, छूट गयो जम का सब शोर, मलार महला चौथा, राम राम बोल बोल खोजते बड़ भागी।

ये बहु बिंजन मिसटाए करी पाक साल सोच पवित्रा हुन लाभ हो भोग हर राय दुष्ट बदारे साजन रहस्य एह मंदर घर अपनाए जो ग्रह लाल रंगियो आया तो मैं सब सुख पाए संत सभा ओट गुरपूरे तुर मस्तक।

खीर आधार बारिक जब होता, बिन खीर रहन ना जाई, सार संभाल माता मुख नीर, तब ओह तृप्त अघाई। हम बारक पिता प्रभ दाता, भूल है बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जह जाता रहा। चंचल मत बारक बपरे की, सर्प यगन कर मेल, मात पिता कंठ लाए राख, आनंद सहज तब खेल। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। नव निध नाम निदान ग्रह तेरे, मन बांचे सो लैसी। पिता कृपाल आग्या एह कीनी, बारक मुख मांगे सो देना। नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, मोहे हृदय बस है नित चरना। मलार महला पंजवा, सगल विधि जुर आहर करया, तजियो सगल अंदेसा, कार्ज सगल आरंभियो।

ग्रह मंगल सोहलावी रहाऊ, मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संता जाए, खोजत खोजत मैं पाहन मिलियो, भगत करो निव पाए, जब प्रिय

गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवां, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन को पूजह, आत्म घाटी हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार ब्रह्मह बहु जोनी, टेक न काहू तरते रहाउ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघ कत सागर, बिरथा कथत हम तरते, सेव ब्रंच असुर सुर जेते, काल अगन मह जरते, नानक सरन चरण कमलन की, तुम ना दार हो प्रभ करते।

त्यागी हम एक खेन तिस बिन रह ना सको प्रीत हमारी लागी रहा उनके संग मोहे प्रभ चित आवे संत प्रसाद मोहे जागी।

नानक मेरो बन्यो सुहागो पत शोभा भले अचारी मलार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम त्याय दुख दर्द बिनसै भव सागर गुर की मूर्त हृदय बसाए रहाउ दुश्मन हत्ते दुखी सब व्यापे हर सरनाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलवे।

मन दर्शन की प्यासा बिसरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन धन नानक प्रभ मेरे कृपा की जय मलार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यो बन आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाउ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नमै निद पाई उदौत भयो पूर्ण भावी को टेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल बनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरियो संसार कठिन भय।

मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाउ मिटे कलेश त्रिशन सब पूजी पार ब्रह्म मन त्याया साध संग जन्म मरण निवारी बहुर न कतहु ताया मन तन नाम निरंजन रातहु चरण कमल लेव लाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मलार महला पंजवा बिसरत क्यों जीवे ओए जीवन चितह उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाउ जिनको प्यास तो

जगदीश्वर देखत सदा हजूरे नानक रब रहे हो सब अंतर सर्ब रहे आपर पूरे मलार महला पंजवां हर कै भजन कौन कौन ना तारी खग तन मीन तन मृग तन ब्राह तन साधु संग उधारी रहाउ देव कुल दैत कुल जख किनर नर सागर उतरी पारी जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बदारी काम क्रोध महा बिख्या रस इनते भय नरारी दीन दयाल जप

गही अचुत अबनासी किलबिख काढे है शांत काल कलेश मिटे दास नानक बहुर ना जोनी मात मलार महला पंजवा बहु विद माया मोह हिरानू कोट मधे को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानू रहाउ इत उत डोल डोल श्रम पायो तन तन होत बिरानू लोग दराए करत ठगियाई हुतो संग ना जानू मृग पंखी मीन दीन नीच एह संकट फिर आनू कहो नानक पाहन प्रवतारु साध संगत सुख मानू।

अंतर्जामी सब मह वर्तै ता भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथानाथ दीन दुख भंजन

बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई गुर उपदेश हर हृदय वस्यु सास ग्रास अपना खसम त्याई रहाउ गुर के चरण विटोह बल जाऊ गुर के गुण अन दिन नित गाऊ गुर की धूड़ करूं इशनान साची दरगाह पाइय मान गुर बोहिथ भवजल तारनहार गुर भेटे ना हुए जोन अवतार गुर की सेवा सोजन पाए जा को कर्म लिखिया तुर आई।

आई मलार महला पंजवां गुर के चरण हृदय वसाई कर कृपा प्रभ आप मलाई अपने सेवक को लय प्रभ लाई ताकि कीमत कही ना जाई कर कृपा पूर्ण सुख दाती।

राखे सब जंत, गुण गावहु नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जान है प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बुलाया, मलार महला पंजवां, गुर सरनाई सगल निदान, साची दरगाह पाईए मान, प्रम पौ दुख दर्द सब जाई, साध संग सद हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सलाहि, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाई रहाउ, सतगुर जे वडे अवर ना कोई, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोए।

सगल श्रृंगार तजियोरी सगल विकार ताव तो अस्थर थिया रहाओ ऐसे रे मन पाए कै आप गुआए कै कर साधन सिंह संग बाजे बजह मृदंग अनाहद को कलरी राम नाम बोले मधुर बैन अत सुहिया ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार प्रिय अमोग कैसे ही संग संत बने पाव उतार नाम पने राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया जन नानक प्रियो प्रीतम थिया मलार महला पंजवा मन कने।

रूप गुण गावत सुख चैन रहाउ हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन

सखाई तिस बिन घड़ी नहीं जग दीवा ऐसी प्यास तसाई रहाओ सरवर कमल किरण अकासी बिगसै सहज सुपाई प्रीतम प्रीत।

आई कन हर कोर दसो दिस बरसै बिन जल प्यास न जाई मीन नवास उपजै जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई खिन तिल रह न सकै पल जल बिन मरन जीवन तिस ताई तन वांदी पिर देश नवासी सच्चे गुर पह शब्द पठाई गुण संग्रह प्रभ हृदय नवासी भगत रत्ती हर खाई प्रयो प्रयो करै सबै है जेती गुर भावै प्रयो पाई प्रयो नाले सद ही सच संगे नदरी मेल मलाई सब मह जियो जियो है सोई घट घट रहे आसमाई गुर प्रसाद घर ही परगासिया सहजे सहज समाई अपना काज सुवारो आपे सुख दाते गोसाई गुर प्रसाद घर ही फिर पाया तौ नानक तपत बुझाई मलार मोहल्ला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच धर पाही इस तन धन का कहो गर्भ कैसा बिन सतबार न लागे बबरे हौ मैं गर्भ खपै जागे ऐसा रहाऊ जय जगदीश प्रभु रखवा।

कागज कोट एहो जग है बपरू रंगन चेहन चतराई नानी सी बूंद पवन पत खोए जन्म मरे खिन ताई नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर मार।

नजीक ना बूझै बकड़ी, सतगुरु दी याद खाई, सहज मिलिया तब ही सुख पाया, तृष्णा शब्द बुझाई, कहो नानक तुझते मन मानिया, हिम्मत कहन ना जाई, मलार महला पहला।

रहाउ। सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कै तकिया साचै तान। नाम संभाल सरूड़ी बाण, थै पावै दर लहस प्राण। पूडा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार। ना जल डूंगर ना ऊंची तार, निज कर वासा कह मग ना चालन हार। जित घर वसै तू है बिद जान है, बीजो महल ना जापै। सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग

गुर शब्द संयापै एक मूर्ख अंधे मुग्ध गुआर एक सतगुर कै पै नाम आधार साची बाणी मीठी अमृत तार जिन पीती तिस मोख द्वार नाम पै पाए हृदय वसाही गुर करनी सच बाणी हिंद वरसै धरत सुहावी घट घट जोत समाणी कालर बीजस दुरमत ऐसी निगुरे की निशानी सतगुर बाजो कोर अंधारा डूब मोए बिन पानी जो किश कीनो सो प्रभु रजाए जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए हुक्मे भाता कार कमाए एक शब्द राचे सच समाए चहो दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा चहो दिस नाम पतालं सब मह शब्द वरतै प्रभ साचा कर्म मिलै बयालं जामन मरना दीसै सिर उभो खुदया निंदरा कालं नानक नाम मिलै मन पावै साची नदर रसालं मलार महला पहला मरण मुक्त गत सार ना जानै कंठे बैठी गुर शब्द पछानै तू कैसे आड़ फाथी जाल अलख ना जाचै हृदय संभाल रहाउ एक जी कै जिया खाही जल तरती बूढ़ी जल माही सर्ब जी की ए प्रतपानी जब पकड़ी तब ही पछतानी जब गल फास पड़ी अत भारी ऊड़ ना साकै पंख पसारी।

लाहा हर सत संगत पाई, कर्मी पल्ले पाई, सतगुर विण किन ना पाया, मन वेखो हृदय विचार, वड भागी गुर पाया, पव जले उतरे पार, हर नामा हर टेक है, हर हर नाम आधार, कृपा करो गुर मेलो हर जियो, पावो मोख द्वार, मस्तक ललाट लिखिया तुर ठाकुर, मेटना ना जाए, नानक से जन पूर्ण होए, जिन हर पाणा पाए, मलार महला तीजा, वेद बाणी जग वर्तदा, त्रै गुण करे विचार, बिन नावे जम डांड सह, मर जन्मै वारु वार, सतगुर भेटे मुक्त।

हर हर नाम त्याई रहाउ। हरे अपने भाणे सिष्टि उपाई, हरे आपे दे आधार। हरे अपने भाणे मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार। हर कै भाणे सतगुर भेटिया, सब जन्म सवारन हार। वाह वाह बाणी सत है, गुरमुख बूझै कोई। वाह वाह कर प्रभ सलाही है, तिस जे वड़े अवर ना कोई। आपे बख्शे मेल लई,

कमल प्रगास तित कट नामे नाम निवास हौ मैं भगत करे सब कोए ना मन पीजे ना सुख होए कह कह कहन आप जनाई बिरथी भगत सब जन्म गवाए से भगत सतगुर मन पाए अन दिन नाम रहे लिवलाए सद ही नाम वेख है हजूर गुर कै शब्द रहया भरपूर आपे बख्शे दे प्यार हम मैं रोग वड्डा संसार गुर कृपा ते एहो रोग जाए नानक साचे साच समाए राग मलार शंत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते जन संग राते दिन सराते एक निमुख मनो ना विसर गोपाल गुण निद सदा संगे सर्ब गुण जगदीसर मन मोहेली ना चरण संगे नाम रस जन माते नानक प्रीतम के

सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी न आप साज आप पछाणिया अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया बिन थम्मा गगन रहाए शब्द निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज वडाणिया तीर्थ धर्म विचार नावन कुर्बाणिया तुद सारे अवर ना कोई के आख वखाणिया सच्चा तख्त निवास

पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म वड्डा कहाई अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन तू जाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सवाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया गुरमह आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पति आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैद की

साथियों केव रहसी रंग रंग रहया तिन कामणी जिन मन भाऊ भाऊ होए नानक पै पाए बाहरी तिन तन सुख न हुए महला तीजा ऊनव ऊनव आया वरसै नीर निपंग नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंतै स्यों मन भंग पौड़ी दोए तरफा उपाय एक वरतिया वेद बाणी वरताई अंदर वाद कत्या परविरत निर्विरत हाथा दोए विच धर्म फिर रह बारिया मनमुख कच्चे कूड़ियार तिन्नी निश्चो दरगाह हारिया गुरमती शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया से

वरसै लाए झड़ी नानक पाणै चलै कंत कै सो माणी सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे किस मेघै हाथ किस नाही जिन इहो मेघ पठाया किस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बाहरी सब करन पलाहा करे।

सिफ भंडार उथे हाथ ना अपड़े कूक ना सुनिए पुकार उथे सतगुर बेली होवे कड ले अंती वार इना जनता नो होर सेवा नहीं सतगुर सिर करतार।

आई अन तन उपजै बहु घणा कीमत कहन ना जाय। नानक नाम सलाहे तू सबना जिया देंदा रिजक संबाहे। जित खादै सुख उपजै फिर दुख ना लागै आए। पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चे लह मलाई। दूजै दूजी तरफ है कूड़ मिले ना मिलया जाय। आपे जोड़ विछोड़िया।

जो हर चरणी रहे लिवलाय, ज्यों जल मह कमल अलिपत है ऐसी बणत बणाई, से सुखिए सदा सोहणे जिन विचो आप गवाई, तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक समाई। सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है, जिस वस सब किश होए तिसै सरे विहो प्राणी हो, तिस बिन अवर ना कोई। गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए, सहसा मूल ना हो गई।

जगत है मत को भरम पलाए इहो बाबी हा पशु है इसनो बूझण नाही अमृत हर का नाम है जित पीता तिख जाए नानक गुरमुख जिन पिया तिन बहुड़ ना लागी आए महला तीजा मलार शीतल राग है हर त्याया शांत होए हर जियो अपनी कृपा करे ता वरतै सब लोए वुठै जिया जुगत होए धरणी नो शिंगार होए नानक एहो जगत सब जल है जल ही ते सब कोए गुर प्रसादी को विरला बूझै सो जन मुक्त सदा होए पौड़ी सच्चा वे परवाह इको तू तनी तू सब किसे आपे आप दूजे किस जानी मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुद मणि आवा गौण रचाए उपाय।

गुणवंती मैल पाया अवगुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसै गुरमुख सदा हजूर कूक पुकार ना होवे नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मेले शब्द गुरु कै काल महला तीजा बाबीहा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास ना उतरै

विचार त्रै गुण सर्प जंजाल है नाम ना धरे प्यार गुण छोड़े औगण कमाम दे दरगाह हुए खुआर जुए जन्म तिन्नी हारिया कित आए संसार सच्चा शब्द मन मारिया अहनस नाम प्यार जिन्नी पुरखी उर तारिया सच्चा अलख अपार तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार जिस बख्शे सो पाए सी गुर शब्दी विचार सलोक महला पंजवा रात ना विहावी साकता जिन्ना विसरै नाउ राती दिन सुसुहेलिया नानक हर गुण गाउ महला पंजवा रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मथन नानक जो प्रभ पाणिया सच्चै दर सोहन पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलोआ आई जे सतगुर अगे घालिया पोहे ना सकै जमकाल सच्चा रखवालिया गुर साखी जोत जगाए दीवा बालिया मनमुख बिन नावै कूड़ियार फिर है बेतालिया पशु मानस चम पलेटे अंदरों कालिया सबो वरतै सच सच्चै शब्द निहालिया ना

मन तन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोय से वडभागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा इंद वरसै कर दया लोका मन उपजै चाऊ जिसकै हुक्म इंद वरसदा तिसकै सद बलिहार जाऊ। गुरमुख शब्द संभालिय सच्चे के गुण गाऊ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाऊ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया।

सज देन दुआई से मरह जिनको देन से जाहि नानक हुक्म ना जापई किथे जाहि समाहि फसल आहारी।

भूख सनावे खसम मूल ना भावे अक स्यो प्रीत करे अक सिद्धा अक डाली बह खाई खसम भावे ओहो चंगा जे करे खुदाई खुदाई नानक दुनिया चार दिहाड़ी।

आवे तिन भौ सागर तरना पौड़ी अगमय गोचर तू धनी सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते इको देवन हार जिन्नी सेव्या तिन्नी सुख पाया गुरमति विचार इक नानू तुद एवं भावदा माया नाल प्यार गुर कै शब्द सलाही है अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत ना हो गई विण सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभु सब तुद सेव दे इक ढाडी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार सलोक महला पहला राती काल कटे दिन काल सिजे काया हुए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तपताल अंधा चख चख पया चेर पिछे रूवह लिया वह फेर बिन बूझे किस

सिर खुर पत पाटी पौड़ी अमृत नाम सदा सुख दाता अंते होए सखाई बाज गुरु जगत।

सच पछाणीए लिखिया पल्ले पाए सो सच जानीए हुक्मी हुए नबेड़ गया जानीए भौजल तारन हार शब्द पछाणीए चोर जार जुआर पीड़े कहानीए निंदक लाए तबार मिले हड़वाणीए गुरमुख सच समाए सो दरगाह जानी।

तीर्थ का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाव नानक गुरमुख जानिए कल का इहो नियाव महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाव फांदी लगी जात पहाइन अग्गै नाही थाव सो पढ़िया।

पलंग पंकै कोप खवार हुए फक्कड़ पिटे अंध चुपै चंगा नानका विण नावे मोहे गंध। महला पहला राजमाल रूप जात जोबन पंजे ठग इनी ठगी जग ठगिया।

ज्ञान पौड़ी पढ़िया नाम सलाह और बुद्धि मिथ्या बिन सच्चे वापार जन्म बिरथया अंत ना पारावार ना किन्हीं पाया सब जग गर्भ गवार तिन सच ना पाया चले नाम वसार तावन तत्या।

जीव मासै की मासै अंदर सास वड़ा हुआ व्याहया कर ले आया मास मासों ही मास उपजै मासों सबो साख सतगुर मिले है हुक्म बुझी है तांको आवे रास आप छुट्टे नह छूटी है नानक बचन बनास महला पहला मास मास कर मूरख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने कौन मास कौन साग कहावे किसमें है पाप समाणी गैंडा मार हूम जग किए देवत्यां की बाणी मास छोड़ बैस नक पकड़ है राती मानस खाणी फड़ कर लोकां नू दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझै नानक अंधे सियों क्या कहिए कह ना कहया बूझै अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मास ना खाही स्त्री पुरख है जान इस मेला उतै मंद कमाही मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासै के पांडे ज्ञान ध्यान कस सूझै नाही चतर कहावे पांडे बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा जी जंत सब मास होए जीए लया वसेरा अपाख पक है पाख तज छोड़ है अंध गुरु जिन केरा मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासै के पांडे ज्ञान ध्यान कस सूझै नाही चतर कहावे पांडे मास पराणी मास कतेबी चौहो जुग मास कमाणा जज काज व्याह सहावे उतै मास समाणा स्त्री पुरख निपजै मासों पात चाह सुलतान।

खाम पूजै हिकमत खुदाया मन तवाना तू कुदरती आया सग नानक दे बान मस्ताना नित चढ़ै सवाया आतस दुनिया।

सब विकार शब्द निशानिया साधु संग उधार भय निकाणिया सिमर सिमर दातार सब रंग माणिया प्रगट भया संसार मेहर शावाणिया।

तुद बिन दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलख अगोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लह, सो नाम ते आई, तू करता पुरख अगम है, रविया सब ठाई, जित तू लाए सचिया तित को लगे, नानक गुण गाई शुद्ध

जाचै पसमति सुऐसा राजा त्रिपवनपति जाचै कारे कूर्मा पाल सहसरफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघमाला पानी हारिया नाक परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै कड़खली

सात तास सम तुल नहीं आन को एक ही एक अनेक हुए बिस्तरयो आन रे आन परपूर सो रहाओ जाके भागवत लिखी है अवर नहीं पेखी है तास की जात अशोक।

जाके बाप वैसी करी पूत ऐसी सरी इहू रे लोक प्रसिद्ध कबीरा जाके कुटंब के ढेर सब ढोर टवंत फिर है अजहो बनारसी आस पासा आचार सहत बिपर करह डंडौत तिन तने रवदास दासान दासा मलार एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृत प्यारो प्राणनाथ कमल भगत ते साध संगत पाई।

जप मन राम नाम परगास, हर के संत मिल प्रीत लगानी, विचे ग्रह उदास रहाओ, हम हर हृदय जपियो नाम नर हर, प्रभु कृपा करी कृपास, अन दिन अंत भया मन बिगसिया, उदम भय मिलन की आस, हम हर स्वामी प्रीत लगाई, जितने सास लिए हम ग्रास, किल बिख दहन भय खिन अंतर, टूट गए माया के फास, क्या हम किर्म क्या कर्म कमाव है, मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास, अवगने आरे पाथर पहारे, सत संगत मिल तरे तरास, जेती सृष्ट करी जगदीशर, ते सब ऊच हम नीच बिख्यास, हमरे अवगुण संग गुर मेटे, जन नानक मेल लिए प्रभ पास, कानड़ा महला चौथा, मेरा मन राम नाम जपियो गुरवाक, हर हर कृपा करी जगदीशर, दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ, नाना रूप रंग हर केरे, घट घट राम रवियो गुपलाक, हर के संत मिले हर प्रगटे, उगर गए बिख्या के ताक, संत जना की बहुत बहु शोभा, जिन उर तारियो हर रस कर साक, हर के संत मिले हर मिलिया, जैसे गऊ देख बछराक, हर के संत जना मह हर हर, ते जने उत्तम जनक जनाक, तिन हर हृदय बास बसानी, छूट गई मुश्की मुश्काक, तुमरे जन तुम ही प्रभ किए, हर राख ले हो आपन अपनाक, जन नानक के सखा हर पाई, मात पिता बंद पहर साक, कानड़ा महला चौथा, मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत, हर हर वस्त माया गढ़ वेड़ी, गुर कै शब्द ली।

तेहाय सत संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपेओ अकथ कथ काथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ कानड़ा महला चौथा पड़ताल कर पंजवा।

कान्हड़ा महला चौथा पाज रामो मन राम जिस रूप नारेख वडाम सत संगत मिल पाज राम बड हो भाग मथाम रहाउ जित ग्रह मंदर हर होत जास तित का

कुल सगल तरादु कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ तेरे जन त्याव है एक मन एक चित ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान उस्तत करह प्रभ तेरी आ मिल साधु साध जना गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद गाइया गुण गोपाल कृपा निद दुख बदारन सुख दाते सतगुर जा को भेटत होए सगल सिद्ध रहाओ सिमरत नाम मने साधारे कोट पराधी खिन महतारे जा को चीत आवै गुर अपना ताको दुख नहीं तिल सुपना जा को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवा अरादो तुझै स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर

पंजवा तीर्थ प्रभु की गाओ मेरी रसना अनक बार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोविंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यागो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मह मन प्रबोधा तृष्णा बूझी बहु रंग माया नाम लैत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब पय।

तैल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभु जियो करना सफल होत ए दुर्लभ देही जा कौ सतगुर मया करे ही अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा जा कै हृदय बसह गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहु नानक तिन पूरा पाया कानड़ा महला पंजवा भगत भगतन हूं बन आई तन मन गलत भये ठाकुर स्यों।

भौजल तरना अपैदान नाम हर पायो सिर डारियो नानक संत चरना कानड़ा मोहल्ला पंजवा साध सरन चरण चित लाया सुपन की बात सुनी पेखी सुपना नाम मंत्र सतगुरु दरडाया रहाव नह तृप्तानो राज जोबन धन बहुर बहुर फिर ताया सुख पाया तृष्णा सब बुझी है शांत पाई गुण गाया।

जसमाया कानड़ा महला पंजवां हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आस होत पूरन

कथिया संत संग प्रभ ज्ञान पूरन परम ज्योत परमेश्वर सिमरत पाइय मान रहाउ आवत जात रहे श्रम नासे सिमरत साधु संग पतत पनीत होहे खिन पीतर पार ब्रह्म कै रंग जो जो कथे सुने हर कीर्तन तां की दुर्मत नास सगल मनोरथ पावे नानक पूर्ण होवे आस कानड़ा महला पंजवा साध संगत निद हर को नाम संग सहाई जी कै काम रहाओ संतरेन नित मजन करे जन्म जन्म के किल बिखरे संत जना की

धन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाय रहाउ। ईत ऊत कहाँ लुभाव है एक स्यों मन लाय। महापवित्र संत आसन मिल संग गोबिंद त्याय। सगल त्याग सरण आयु

सदा सुख सहज मूरत तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात गुण रमंत दूख नास है रिद पयंत शांत अमृता रस पियो रसना नानक।

तनु तो परम राख लीजै काट बेरी रहाउ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रतनागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निध पतत उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुर नाम दरडायो कानड़ा महला पंजवा ताने ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़ भागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी पोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाह अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रत लागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्त ज्ञान तरियो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा उचल कठोर कपट कामी ज्यों जान है त्यों तार स्वामी रहाओ तू समरथ सरन जोग तू राख है अपनी कल तार जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार गर्त घोर अंध ते काढ़ो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कमन गुण कहिए।

लेरे, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर केरे, कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाऊ, आस प्यास सफल मूरत, उमंग ही यो तरसना।

कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाउ वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठ नग्रह अत रहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना पंगा काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई गई मिल साध जना पंच भागे चो

ऐसे करो ये तुम्हारे बल बले बल बले बल गई। पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रवथान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनक दास कीर्त करह तुहारी,

आई पतत पावन बिरद स्वामी उदरत हे हर त्याय रहाओ सहसार गार विकार सागर पतत मोह मान अंध विकल माया संग तंद कर गहे प्रभ आप काढ़ु रख ले हो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संतन।

प्यास प्रब पूर्ण गुण तास कृपाल दयाल गोपाल नानक हर रसना गुण गाय कानड़ा महला पंजवा वार वारों अनक डारो सुख प्रिय सुहाग पलक रात रहाउ कनक मंदर पाठ सेज सखी मोहे नाहि इन सियो तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हात रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रिय संग सुख बेहात।

मना हर जाप, जो संत वेद कहत पंथ गाखरु, मोह मगन अहंताप रहाउ, जो राते माते संग बपरी माया, मोह संताप, नाम जपत सो जन उदरह, जिसह उदार हो आप, बिन सजाए मोह पै परमा, नानक संत प्रताप, कानड़ा महला पंजवां कर दसवां, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ऐसो दान देहो जी संतो, जाप जियो बलिहार, मान मोही पंच दोही, उर्ज निकट बसेओ, ताकि सरन साधुआ दूत संग निवार, रहाव कोट जन्म जोन भ्रम्यो, हार परयो द्वार, कृपा गोविंद पई, मिलियो नाम आधार, दलभ जन्म सफल नानक, पाव उतार पार, कानड़ा महला पंजवां घर ग्यारवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहज सुभाए अपने आए, कछु न जानो कछु दिखाए, प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ, संजोग मलाए साध संगाए, कतहु न जाए करह बसाए, गुण ननान प्रगट्यो एह चोलै, चरण नभाए आनत जाए, थान थनाए सर्ब समाए, रसक रसक नानक गुण बोलै, कानड़ा महला पंजवां, गोविंद ठाकुर मिलन दुराई, परमत रूप अगम अगोचर, रहियो सर्ब समाई रहाउ, कहन भवन नाही पायो पायो, अनक उकत चतराई, जतन जतन अनक उपावरी, तौ मिलियो जो किरपाई, प्रभु दियार किरपार किरपा निद, जन नानक संतरे नाई।

परमारबिंद सासन निसपोर रहाउ लाए प्रीत कीन आपन टूटत नहीं जोर प्राण मन धन सर्ब सु हर गुण निजे सुख मोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक बिन से ओ दुख कोर।

मुकत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा महला पंजवा करत करत चर्च चर्च चर्चरी जोग ध्यान भेख ज्ञान फिरत फिरत धरत धरत धरचरी रहाउ अहं अहं अह अवर मूड़ मूड़ मूड़ बवरई।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदियां।

सुख पावे, सतगुर सेव समावे गुर हाउ, भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावे गु, अनरस साध गए सब नीकर, बिन नावे किस ना सखावे गु, गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बचन कढावे गु, सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम, बाणी स्यों चित लावे गु, गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवे गु, तैं अनहत धुनी बाजह नित बाजी, नीचर धार चवावे गु, राम नाम इक तिल तिल गावे, मन गुरमत नाम समावे गु, नाम सुनह नामो मन पावे, नामे ही तृप्तावे गु, कनक कनक

हर हर नाम तुरावै गु जो जो जपै सोई गत पावै ज्यों ध्रुव प्रहलाद समावै गु रहाउ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो कर कृपा नाम लगावै गु कर कृपा सतगुरु मलावहु मिल सतगुरु नाम त्यावै गु जन्म जन्म की हमै मन लागी मिल संगत मन लह जावै गु ज्यो लोहा तरियो संग कास्ट लग शब्द गुरु हर पावै गु संगत संत मिलो सत संगत मिल संगत हर रस आवै गु बिन संगत कर्म करे अभिमानी खड पानी चीकड़ पावै गु भगत जना के हर रखवारी जन हर रस मीठ लगावै गु खिन खिन नाम दे वडियाई सतगुरु उपदेश समावै गु भगत जना को सदा निव रही है जन निवह ता फल गुण पावै गु जो निंदा दुष्ट करह भगतां की हरनाक्ष ज्यों पच जावै गु ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावै गु जो जो भगत होए सो पूजो हो परमन परम चुकावै गु जात निजात देख मत परम हो सुख जनक पगी लग त्यावै गु जूठन जूठ पई सिर ऊपर खिन मनुआ तिल ना डलावै गु जनक जनक बैठे सिंघासन नौ मुनि धूर लै लावै गु नानक कृपा कृपा कर ठाकुर मैं दासन दास करावै गु कानड़ा महला चौथा मन गुरमत रस गुण गावै गु जिहवा एक होए लख कोटि कोट त्यावै गु रहाउ सहस फनी जप्यो सेख नागै हर जपत्या अंत न पावै गु तू अथाह अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावै गु जिन तू जप्यो तेई जन नीके हर जपत्या कौ सुख पावै गु बिदरदासी सुत छोक शोहरा कृष्ण अंक गल लावै गु जल ते ओपत भई है कासत कासत अंग तरावै गु राम जना हर आप सवारी अपना बिरद रखावै गु हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर गुर संगत नाव तरावै गु ज्यों सत संगत तरयो जुलाहो संत जना मन पावै गु खरे खरोए बैठत उठत मार्ग पंथ त्यावै गु सतगुर बचन बचन है सतगुर पाधर मुक्त जनावै गु सासन सास सास बल पाई है निह सासन नाम त्यावै गु गुर प्रसादी हम मैं बूझै तौ गुरमत नाम समावै गु सतगुर दाता जी जीअल को भागहीन नहीं पावै गु फिर एह वेला हाथ न आवै पर तापै पछतावै गु जे को भला लोड़ै भले अपना गुर आगै टह टह पावै गु नानक दया दया कर ठाकुर

दुख पावे गो, अनेक जन्म बिछड़े मेरे प्रीतम, कर कृपा गुरु मलावै गो, सतगुर मिलत महा सुख पाया, मत मलीन बिगसावै गो, हर हर कृपा करहु जग जीवन, मैं श्रद्धा नाम लगावै गो, नानक गुरु गुरु।

जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दरड़ावैगु रहाउ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राख हर लिवलावैगु सतगुर शब्द देर दे अंतर मुख अमृत नाम चुवावैगु बिसियर बिसु परे है पूरन गुर गरड़ शब्द मुख पावैगु माया पोयंग तिस नेड़ ना आवे बिख चार चार लिवलावैगु स्वान लोभ नगर मह सबला गुर खिन मह मार कढावैगु सत संतोख धर्म आन राखी हर नगरी हर गुण गावैगु पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काड कढावैगु त्राहे त्राहे शरण जन आई गुर हाथी दे निकलावैगु सुपनंतर संसार सब बाजी।

काय खर्च देवह बहुतेरा, हर दिन दे तोट ना आवैगो। राम नाम तन है हृदय अंतर, तन गुर शरणाई पावैगो। नानक दया दया कर दीनी, दुख दालत पांज समावैगो। कानड़ा महला चौथा, मन सतगुर शरण त्यावैगो। लोहा हिरन होवै संग पारस, गुण पारस को होए आवैगो रहाउ। सतगुर महापुरख है पारस, जो लागै सो फल पावैगो। ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा, गुर सेवक पैज रखावैगो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुर बचनी अमृत पावैगो। ज्यों अमरीक अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावैगो। सतगुर सरन सरन मन पाई, सुधा सुधा कर त्यावैगो। दयाल दीन भए है सतगुर, हर मार्ग पंथ दिखावैगो। सतगुर सरन पए से थापे, तिन राखन को प्रभ आवैगो। जे को सर संदै जन ऊपर, फिर उल्टो तिसै लगावैगो। हर हर हर हर हर सर सेवह, तिन दरगाह मान दवावैगो। गुरमत गुरमत गुरमत त्यावह, हर गल मेल मेल मलावैगो। गुरमुख नाद वेद है गुरमुख, गुर परचै नाम त्यावैगो। हर हर रूपो होवै, हर जन को पूज करावैगो। साकत नर सतगुर नहीं पिया, ते बेमुख हर परमावैगो। लोभ लहर सुवान की संगत, बिख माया करंग लगावैगो। राम नाम सब जग का तारक, लग संगत नाम त्यावैगो। नानक राख राख प्रभ मेरे, सत संगत राख।

आई, जतन माया के काम न आई, राम ते आए सब फल पाए, तन तन ते बड़ भागिया, सतसंग जागे नाम लागे, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बेकार साधु, लग तरहु तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजह नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवह हर अमयो पीवह, जन्म मरना भागे, सतसंग पाइय हर त्याय, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन तूर बांच है, हर दर्श सहज समायन, सगले जंत भजो गोपाल, जप तप संयम पूरन काल, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सुबाया, गोविंद गाय नित त्याय, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चाल, बिनवंत नानक कर दया दीजै, हर रत्न बंध हो पाल, मंगल चार चोज अनंदा, कर कृपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखा गामी।

कानड़े की वार महला चौथा मूसे की वार की धुनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला चौथा राम नाम निदान हर गुरमत राखे और तार दासन दासा हुए रहो हम मैं बिखिया मार जन्म पदार्थ जीतिया कदे ना आवै हार तन तन वड भागी नानका जिन गुरमत हर रस सार महला चौथा गोविंद गोविंद गोविंद हर गोविंद गुणी निदान गोविंद गोविंद गुरमत त्याई है ता दरगाह पाई मान गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान नानक गुर गोविंद हर जित मिल हर।

जगत सब पाप लोह गिया। श्लोक महला चौथा। हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोई, हउमै ममता नास होए दुर्मत कड्डै धोए। नानक अन दिन गुण उच्चरै जिनको धुर लिखिया होए। महला चौथा। हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए, हर आपे आप वरतदा हर जेवड अवर ना कोई। जो हर प्रभ भावै सो थीऐ जो हर प्रभ करे सो होए। कीमत किनै ना पाईया बेअंत प्रभु हर सोए। नानक गुरमुख हर सा लाहया तन मन शीतल होए पौड़ी। सब जोत तेरी जग जीवना तू घट घट हर रंग रंगना। सब त्यावह तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना। एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाचह सब मंग मंगना।

फल फलना सलूक महला चौथा हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावे मान जो इच्छा है सो फल पाए सी गुर शब्दीन लगे ध्यान किल विख पाप सब कटी है हम मैं चुके गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान हर हर कृपा धार प्रभु जन नानक जप हर नाम महला चौथा हर हर नाम पवित्र है नाम जपत दुख जाए जिनको पूर्व लिखिया तिन मन वसिया आई सतगुर कै भाणे जो चले तिन दालद दुख लह जाए अपने भाणे किने ना पायो जन वेखो मन पति आई जन नानक दासन दास है जो सतगुर लागे पाई पौड़ी तू थान थनंतर भरपूर है करते सब तेरी बणत बनावनी रंग परंग शिष्ट सब साजी बहु बहु विद भांत उपावनी सब तेरी जोत ज्योति विच वरत है गुरमति तुदै नावनी जिन होए दयाल तिन सतगुर मेलै मुख गुरमुख हर समझावनी सब बोलो हो राम रमो श्री राम रमो जित दालत दुख भुख सब लह जावनी सलोक महला चौथा हर हर अमृत नाम रस हर अमृत हर उरतार विच संगत हर प्रभु वरतदा बुझो हो शब्द विचार मन हर हर नाम त्याया विख मैं कड्डी मार जिन हर हर नाम ना चेतियो तिन जूए जन्म सब हार गुर टुठे हर केताया हर नामा हर उरतार जन नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल युग करनी सार मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा अर हुर हार वड भागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर भंडार बिन नावे जे कर्म कमावने नित हों मैं होए खुआर जल हस्ती माल नवाली है सिर पी फिर पावे शार हर मेलो सतगुर दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरमुख सुना।

आपे वरतै सब जगत किया बनजारा सब ज्योत तेरी ज्योति विच करते सब सच तेरा पासारा सब त्यावह तुद सफल से गावह गुरमति हर निरंकारा सब चवह मुख हो जगन्नाथ जगन्नाथ जग जीवनो जित भवजन पार उतारा सलोक महला चौथा हमरी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जप है इयाणिया हर तुम वड अगम अगाह हर देहो प्रभु।

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठ नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्यावे है हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गावे है सुने है तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरुख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्याव हो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते।

हर यज्ञ में आगो चर यज्ञ में हर हर मिलिया आए अचिंत हर आपे घट घट वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे भिख्या पाएदा सब सिष्ट उपाई जी जंत हर देव दान दयाल प्रभ हर मांग है हर जन संत जन नानक के प्रभ आए मिल हम गावे है हर गुण शंत महला चौथा हर कब सज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब आसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर धीर पौड़ी हरि उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार संभाले सब जी जंत हर वसै नित सब जौला सो बूझै जिस आप बुझाए सी जिस सतगुर पुरख प्रभ सौला सब गाव हो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रभ चेत मन हर सहज समाध समाए जन नानक हर हर चाओ मन गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिरहड़ी हर इको मेरा चित जन नानक एक आधार हर प्रभ इकस ते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आदि जगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजिया हर देव दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब धन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछलै सुभार भरे वहन जिन्ना सतगुर मन्या जन नानक वड भाग लहन महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित बिद मिलह मलाहे हर हर जस जप तुज पंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लै हो लड़ लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वरनिया तिस रूप ना रिखा जिस बजाए आप बजाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चट साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पहधा सत गुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिया सतगुर पाई हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाय हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगाह जन पैनाइयन जिन हर मन वसिया आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाय जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया शांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख लह जाए पौड़ी हम वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सतगुरु मेरा प्यारा देखिया तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम त्याया गुरमति तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुरबचन त्याया जिन्ना अगम हर ते ठाकुर सेव करल एकिया सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत वसेखिया सलोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत
ਘਟ ਘਟ ਆਤਮ ਰਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਖੇਲ ਕੀਓ ਰੰਗ ਰੀਤ, ਹਰ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਜਗ ਜੀਵਨਾ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਓ ਗੁਰਮੀਤ, ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰਬਚਨ ਜਪਿਓ ਮਨ ਕੀਤ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਜਣ ਲੋੜ ਲਹੋ, ਭਾਗ ਵਸੈ ਵਡਭਾਗ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਦੇਖਾ ਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗ ਪੌੜੀ, ਧਨ ਧਨ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਘੜੀ, ਜਿਤ ਹਰ ਸੇਵਾ ਮਨ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਕਿਉ ਦੇਖੀਐ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਣੀ, ਹਰ ਮੇਲ ਦਿਖਾਏ ਆਪ ਹਰ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ, ਤਿਨ ਵਿਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ, ਜੋ ਜਪਦੇ ਹਰ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਰੱਤੇ ਲੋਇਣਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਸੱਜਣ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਸਮਾਈ,

नाम उपजे तृष्णा भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाई पौड़ी तुदे आपे जगते पाए कै तुदे आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हरायन एक ना मेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरबचन सुभागै लीता दुख दालद सबो लह गया जा नाउ गुरु हर दीता सब सेव हो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत अपाए सबो वस कीता श्लोक महला चौथा मन अंतर हों मैं रोग है भ्रम भूले मन मुख दुर्जना नानक रोग बंजाए मिल सतगुर साधु सज्जना महला चौथा मन तन ताम संगा।

जगदीशर करते अपरंपर पुरखे अतोल। हर नाम त्यागो मेरे गुर सिखो हो, हरि उत्तम हर नाम अमोल। जिन त्याया हृदय दिन सरात, ते मिले नहीं हर रोल। वड भागी संगत मिले, गुर सत गुर पूरा बोल। सब त्याग हो नर नारायणो नारायणो, जित चूका जम झगड़ चगोल। श्लोक महला चौथा, हर जन हर हर चौंदिया, सर संध्या गावार। नानक हर जन हर लिव उबरे, जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखन। जे कर दूजा देख दे, जन नानक काढ दे चन पौड़ी। जल थल महियल पूर्णो, अपरंपर सोई। जी जंत प्रतपाल दा, जो करे सो होई। मात पिता सुत भरात मीत, तिस बिन नहीं कोई। घट घट अंतर रव रहया, जपयो हो जन कोई। सगल जप हो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरमुख मिले से सजना। हर प्रभ पाया रंग, जन नानक नाम सलाहे तू। लुड लुड दरगह वान्य महला चौथा, हर तू है दाता सब सदा। सब जी तुम्हारे, सब तुदैनो अराध दे। दान दे प्यारे, हर दाता दातार हाथ कढ़िया। नीहु उठा संसारी, अनजमिया खेती भाऊ कर। हर नाम सम्हारे, जन नानक मंगै दान प्रभ। हर नाम अधारे पौड़ी, इच्छा मन की पूरी है। जपी है सुख सागर, हर के चरण अराधी है। गुर शब्द रतनागर, मिल साधु संग उधार होई। हाटै जम कागर, जन्म पदार्थ जीती है। जप हर बैरागर।

अरे तुमरे तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाऊ। हर के नाम असंख अगम है, अगम अगम हर राया। गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी, एक तिल नहीं कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सद गाव है, गुण गोविंद अंत ना पाया। तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बहु जपिया थाहा ना पाया। पुस्तत कर है तुमरी जन माधो, गुण गाव है हर राया। तुम जल निद हम मीने तुमरे, तेरा अंत ना कतहु पाया। जन को कृपा करहो मधुसूदन, हर देव हो नाम जपाया। मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसिया। हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाउ। गुर के पग सिमरो दिन राती, मन हर हर हर बसिया। हर हर हर कीरत जग सारी, कस चंदन जस कसिया। हर जन हर हर हर लिव लाई, सब साकत खोज पया। ज्यो किरत संजोग चल्यो नर निंदक, पग नागन शोहे जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखिया। कहां पया दैत करी बखीली, सब कर कर झर परिया। जेते जी जंत प्रभ किए, सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखी, जन नानक सरन पया। कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप जप जगन्नाथे। गुरुपदेश हर नाम ते आयु, सब किल बिख दुख लाथे रहाउ। रसना एक जस गाए ना साकै, बहु कीजै बहु रसनथे। बार बार खिल पल सब गाव है, गुण कह ना सकह प्रभ तुमंथे। हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी, हम लोचे हैं प्रभ दिखंथे। तुम बड़ दाते जी जीन के, तुम जानो हो हम बिरथे। कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभ का, कहो तिन कहो क्या दिन थे। सब तन मन अर्पो अर्प अरापो, कोई मिले प्रभ मिलथे। हर के गुण बहुत बहुत बहुत सुबा, हम तुष कर कर बरन थे। हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे, जन नानक के प्रभ समरथे। कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अकथ संथई। धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाउ। सो हर हर नाम त्यावै हर जन, जिस बड़ भाग मथई। जह दर्ग है प्रभ लेखा मांगे, तह छूटै नाम त्याए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हो मैं मैल लग थई। गुरतार कृपा हर जल नावाई, सब किल विख पाप गथई। जन कै हृदय अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम पज थई। जह अंति अवसर आए बनत है, तह राखै नाम साथी। जन तेरा जस गावे है हर हर प्रभ, हर जपियो जगन थई। जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पात्र रख बुड थई। कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ।

कह या की भगत मेरा प्रभ मान हर के चोज वडान देख जान जो खोटा खरा एक निमख पछान ताते जान को आनंद भया है।

आस प्रभ मोहे कब गल लावहंगे रहाउ हम बारिक मुग्ध इयान पिता समझावहंगे सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित पावहंगे जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावहंगे मोहे दूजी नाही ठौर जिस पह हम जावहंगे जो हर पावह भगत

नारायणी सगल भगत जाचह सुख सागर भावनिद तरन हर चिंतामणि रहाउ दीन दयाल जगदीश दमोदर हर अंतर जामी गोबिंदे ते निरभउ जिन श्री राम ते आया गुरमत मरार हर मुकंदे जगदीश्वर चरण सरन जो आए ते जन भावनिद पार परे भगत जना की पैज हर राखै जन नानक आप हर कृपा करे राग कल्याण।

हल मकरंद चरण कमल सियो मन फेर फेर रीजै रहाओ आन जलास्यो काज न कछुऐ हर बूंद चातरक कौ दीजै बिन मिलवे नाही संतोखा।

परस रे परस परस गुण गाई है नानक तात तात स्यो मिलिय हीरे हीर बेधाई है कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा साध नव तन मन।

ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन बिद ता की कहा करूं धरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे जरू रहाउ बिशन महेश सिद्ध मुन इंदरा कै दर सरन परू काहू पहराज काहू पह सुरगा कोट मधे मुक्त कहू कहो नानक नाम रस पाई साधु चरण गहू कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जून कल काल जाल दुख बनासन।

पंजवा मन तन जापिया भगवान गुरपुरे सो प्रसन्न भय सदा सुख कल्याण रहाव सर्ब कार्य सिद्ध भय गाय गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुख काल कर कृपा प्रभ मेरिया करो दिन रहन सेव नानक दास शरणागति हर पुरख पूर्ण देव कल्याण महला पंजवा प्रभ मेरा अंतर जामी जान कर कृपा पूर्ण परमेश्वर निश्चल सच शब्द निशान रहाओ हर बिन आन न कोई समरथ तेरी आस तेरा मन तान सर्ब कटां के दाते स्वामी देहे सो पहरन खान सुरत मत चतराई।

जुगत अलक सुख हर भगत लवै ना लावनो प्रभ दर्श लुभद दास नानक बहुड़ जोन ना धामनो कल्याण महला चौथा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन भीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाउ काष्ट मह ज्यो है बै संतर मत संयम काढ कढीजै राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ लीजै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजै किरपा किरपा किरपा कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सौदा हर रस कीजै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजै सतगुर अगम अगम है ठाकुर।

लाल लाल है रंगन, मन रंगन कौ गुर दीजै। राम राम राम रंग राते, रस रसक घटक नित पीजै। वसुधा सप्त दीप है सागर, कड कंचन काड तरीजै। मेरे ठाकुर के जन इन्हो ना बांछ है, हर मांग है हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन को बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा, राम गुर पारस परस करीजै। हम निर्गुणी मनूर अत फीके, मिल सतगुर पारस की जय रहाओ। सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछ है, नित आसा आस करीजै। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है, मिल दर्शन तृप्त मन तीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगीजै। मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते, ज्यों मरगाई पंक ना पीजै। चंदन वास पुयंगम वेड़ी, किव मिलिया चंदन लीजै। काड खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिख छेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहु कीनी, पल बै संतर पसम करीजै। महा उगर पाप साकत नर कीने, मिल साधु लूकी दीजै। साधु साध साध जननी के, जिन अंतर नाम तरीजै। परस न परस भये साधु जन, जन हर भगवान दिखीजै। साकत सूत बहु गुर जी भरिया, क्यों करतान तनीजै। तंत सूत किस निकसै नाही, साकत संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते लीजै। मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है।

साध जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मलाव हो जग थमन को थम दीजै। बसदा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रलीजै। अति उत्तम अति उत्तम हो वो सब सिष्ट चरण तल दीजै। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सकत परीजै। मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पीजै। राम नाम अनग्रह बहु किया गुर साधु पुरख मलीजै। गुण राम नाम बिस्थीरन किए हर सगल भवन जस दीजै। साधु साध साध मन प्रीतम।

खुल फल गुर ज्ञान दरडाया बहकार बास जग दीजै एक जोत एको मन वसिया सब ब्रह्म दृष्ट एक कीजै आत्म राम सब एक है पसरे सब चरण तले सिर दीजै नाम बिना नकटे नर देखो तिन कस कस नाक वडीजै साकत नार अहंकारी कही है बिन नावे त्रिग जीवीजै जब लग सास सास मन अंतर तत बेगल सरन परीजै नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखीजै कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण तवीजै तिल बिक दहन होहे खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा कीजै रहाउ मंगत जन दीन खरे दर ठाढे अत तरसन को दान दीजै त्राहे त्राहे सरन प्रभ आए मोको गुरमत नाम दृढ़ीजै काम क्रोध नगर मह सबला नित उठ उठ जूझ करीजै अंगीकार करहु रख लेवहु गुरपूरा काड कढ़ीजै अंतर अग्न सबल अत बिखिया हिव शीतल शब्द गुर दीजै तन मन शांत हुए अधिकाई रोग काटै सूख सवीजै ज्यों सूरज किरन रविया सरबठाई सब घट घट राम रवीजै साधु साध मिले रस पावै तत निज घर बैठिया पीजै जन को प्रीत लगी गुर सेती ज्यों चकवी देख सूरीजै निरखत निरखत रैन सब निरखी मुख काढ़ै अमृत पीजै साकत सुहान कहियै बहु लोभी बहु दुर्मत मैल परीजै आपन सवाए करहै बहु बाता तिना का वसाहु क्या कीजै साधु साध सरन मिल संगत जित हर रस काढ़ कढ़ीजै पर उपकार बोलहै बहु गुणिया मुख संत भगत हर दीजै तू अगम दयाल दया पत दाता सब दया धार रख लीजै सर्ब जी जग जीवन एको नानक प्रतपाल करीजै कल्याण महला चौथा रामा हम दासन दास करीजै जब लग सास होए मन अंदर

जाय। प्रभाती महला पहला, तेरा नाम रतन कर्म चानन, सुरत तिथे लोए, अंधेरे अंधी वापरे, सगल लीजे खोए। इहो संसार सगल बेकार, तेरा नाम दारू अवर नासत, करनहार अपार रहाओ। पताल पुरिया एक पार, होवे लाख करोड़, तेरे लाल कीमत ता पवे, जा सिरे होवे होर। दुखा ते सुख उपजह, सुखी होवे दुख, जित मुख तू सलाही है, तित मुख कैसी भूख। नानक मूर्ख एक तू, अवर भला संसार, जित तन नाम ना उपजै, से तन होहे खुआर। प्रभाती महला पहला, जय कारण वेद ब्रह्मै उच्चरे, संकर छोड़ी माया, जय कारण सिद्ध भये उदासी, देवी मर्म ना पाया। बाबा मन साचा मुख साचा कहिए, तरिय साचा होई,

धर्म नाही नाही सोच माला सेव जोत कन्नो बुद्ध पाई सत गुरु रखवाला जाकै बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई गत अवगत की चिंत नाही सत गुरु फरमाई जाकै आस नाही निरास नाही चित सुत समझाई तंत को परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला ताका कहया दर परवान बिख अमृत दोहे सम कर जान क्या कही है सर्बे रहया समाय जो किछ वरतै सब तेरी रजाय रहाउ प्रगटी जोत चूका भवान सतगुरु दिया अमृत नाम।

मैल हरे सतगुर पाए पूरा नावण पशु परे तो देव करे रत्ता सच नाम तल हील सो गुर परमल कही है जाकी वास बनास पत सौर तास चरण लिव रही है गुरमुख जी प्राण उपज है गुरमुख शिव घर जाई है गुरमुख नानक सच समाई है गुरमुख निज पद पाई है प्रभाती महला पहला गुर प्रसादी विद्या विचार है पढ़ पढ़ पावे मान आपा मदे आप परगासिया।

रहाल। पंच तस्कर तावत राखी चूका मन अभमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान। जत सत चावल दया कणक कर प्राप्त पाती तान दूध कर्म संतोख कियो कर ऐसा मांगो दान। हिमा तीर्ज कर गऊ लवेरी सहजे बछरा खीर पिए सिपत शर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रह। प्रभाती महला पहला आवत किने ना राखिया

है उल्टी नदर परगासी मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी कौन गिरही कौन उदासी जिसकी आशा तिस ही सौंप कै एहो रहया निर्वाण जिसते हो आसोई कर मानिया नानक गिरही उदासी सो प्रवान प्रभाती महला पहला दिष्ट बिकारी बंधन बंद है हाँ तिस

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गवार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक वखाणी कहो ना देखिया जाए खोटो पूठो।

आई जात जन्म नह पूछी है सच घर लेहो बताई सा जात सा पत है जेहे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटी है नानक छूट सुनाई प्रभाती महा।

ऐ कहावै सोई प्रभाती मोहल्ला पहला खाया मैल बधाया पेंदै घर की हान बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान बाबा ऐसा बिकम जाल मन वासिया बिबल झाग सहज प्रगासिया रहाउ बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाई जम दरबादी मारी है छूटस साच नाई जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाय मन मुख मूल गवाया दरगाह मिले सजाय जग खोटो सच निर्मलो

जर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल को मीन सै थे पावै राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

आचरह लिवलाई, हर हर नाम जपहु जन पाई। गुर प्रसाद मन अस्थिर हुए, अन दिन हर रस रहया आगाई रहाउ। अन दिन भगत करहु दिन राती, इस जुग का लाहा पहाई। सदा जन निर्मल मैल न लागे, सच नाम चित लाई। सुख शिंगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई। अखोट भंडार भरे कदे तोट ना आवे, सदा हर सेव पाई। आपे करता जिसनो देवै, तिस वसै मन आई। नानक नाम त्याए सदा तू, सतगुर दिया दिखाई। प्रभा

शब्द समाहे प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर जियो सदा त्याहु जब लग जी परान गुर शब्दी मन निर्मल हुआ चूका मन अभमान सफल जन्म तिस प्राणी केरा हर कै नाम समान मेरे मन गुर की सिख सुनी जै हर का नाम सदा सुख दाता सहजे हर रस पीजै रहाऊ मूल पछाणन तिन निज घर वासा सहजे ही सुख होई गुर कै शब्द कमल परगासिया हम मैं दुर्मत खोई सबना मह एको सच वरतै बिरला बूझै कोई।

गुरमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुरे अपने बिटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सत गुरु ना सेविया बिरथा जन्म गुआया नदर करी ता सत गुर मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे भाग त्याया प्रभाती महला तीजा आपे भांत बनाए बहुरंगी।

हृदय अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवहु संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाइए प्रभ अपना मोको करहो उपदेश हर दान। सत संगत मह हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान। बड़े भाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान। गुण गाव है प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा तारी हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा उगवै सूर गुरमुख हर बोल है सवरैन समाल है हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करह प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु धूर रवाल हर हर नाम दरडायो गुर मीठा। गुर पग झारह हम बाल रहाओ साकत को दिन रैन अंधारी मोहे फाथे माया जाल। खिन पाल हर प्रभ हृदय ना वस्यो रिन बांधे बहु विदबाल। सत संगत मिल मत बुद्ध पाई हौ छूटे ममता जाल। हर नामा हर मीठ लगाना गुर किए शब्द निहाल। हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल। दिख पौ जल डुब दे काढ ले हो प्रभ गुर नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा एक खिन हर प्रभ कृपा तारी गुण गाए रस कर सीक। गावत सुनत दो पय मुक्ते जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक। मेरा मन हर हर राम नाम रस पीक। गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस चीक रहाओ। जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिन्ना मस्तक उजल टीक। हर जन सोभा सब जग ऊपर जो विच उडवा सस कीक। जिन हर हृदय

मिल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवा बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सहजा धरत बर्तन कौ पानी निमख ना वसार हो सेव हो सारग पानी मन सतगुर सेव होए परम गते हरख सोग ते रह निरारा ता तू पावह प्राण पते रहाओ कापड़ भोग रस अनक पुंचाए मात पिता कटंब सगल बनाए रिजक समाहे जल थल मीत सो हर सेव हो नीता नीत तहां सखाई जह कोई ना होवे कोट पराध एक खिन महत होवे।

साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिले आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहु मरार, प्रभाते महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै भंडार।

अंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जिस रस आया सोई जानै पेख पेख मन मह हैरानै सो सुखिया सब ते उत्तम होए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए सोई निश्चल आवै न जाए अन दिन प्रभ के

देवा, नानक उदर है जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद, आठ पहर सिमरो भगवंत, जा कै सिमरन कल मल जाहे, तिस गुर की हम

बल जाई अगमे अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाइये लाहा खाट हुइये तनवंता अपना प्रभु ते आइये आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिख सब नास्ते सच नाम गुरदीनी रास्ते प्रभ की दरगाह सुभावंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोख सब बिन सह अज्ञान।

जो तिस पावै सो पल होस तिस गुर को हो सद बल जाई जिस प्रसाद हर नाम त्याई ऐसा गुर पाई है वड भागी जिस मिलते राम लिव लागी कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल कटा के अंतर जामी आठ पहर अपनी लिव लाए जन नानक प्रभ की सरनाए प्रभाती महला।

मोन ना पवे ईहा ऊहा चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल थल मैयल पिखै भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवां कुरबान जाई गुर पूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाउ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल सात शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक पय निहाल प्रभाती महला।

अपरगास हर हर जपत पूर्ण भई आस सर्ब कल्याण सुख मन बूठे हर गुण गाए गुरु नानक तूठे प्रभाती महल।

क्रोध अहंकार बिनसै लगै कै प्रीत रहाउ। नाम लागै दुख भागै शरण पालन जोग। सतगुर भेटै जम ना तेटै जिस तुर होवै संजोग। रैन दिन सत्याए हर हर तजहो मन के भरम। साध संगत हर मिलै

अनेक प्रभाती अष्टपदियां महला पहला बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुबदा बौरी मन बौराया झूठे लालच जन्म गवाया लपट रही फुन बंद ना पाया सतगुर राखे नाम दिरडाया ना मन मरे ना माया मरे जिन किश किया सोई जाने शब्द विचार पौ सागर तरे रहाउ माया संच राजे अहंकारी माया साथ ना चले प्यारी माया ममता है बहुरंगी।

मन वसाई विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी सतगुर से

आई करो अढ़ाई धरती मांगी बावन रूप बहाने क्यों पयाल जाए क्यों चली है जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती बर्ज ब्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह कहाय कीर्तना चले चलाया गणतना गणी हुक्म पछाना बोली भाए सुपाई जो किच वरतै तुदै सलाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे ना लागै सदा रहै सरनाई मनमुख मुगदे आगै चेतै नाही दुख लागै पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचियै हर अभमान ना जाई जियो अभमाने पै पचियै भुलण विच किया सब कोई करता आप ना भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद अकुलै प्रभाती महला पहला आखना सुनना नाम आधार धंधा चुक गया बेकार ज्यों मनमुख दूजै

लागै बिन गुर बूढ़ै बारो बार रहाउ। इस मन माया मोहे बनास तुर हुक्म लिखिया ता कही है कास। गुरमुख विरला चीनै कोई नाम बिहु ना मुक्त ना होई। ब्रह्म ब्रह्म डोलै लख चौरासी बिन गुर बूझे जम की फासी। एहो मनुआ खिन खिन ऊब पयाल गुरमुख छूटै नाम संभाल। आपे सदे ढिल ना होई शब्द मरै सहला जीवै सोए। बिन गुर सूझी किसै ना होई आपे करै करावै सोए।

कर्म धर्म पथ पूजा काम क्रोध अग्नि मैं पूजा हर रस चाखिया तौ मन पीजा प्रणवत नानक अवर ना दूजा प्रभाती महला पहला राम नाम जप अंतर पूजा गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा एको रब रहया सब ठाई अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई रहाऊ मन तन आगै जीअड़ा तुझ पास ज्यो पावै त्यों रखो अरदास सच जिहवा हर रसन रसाई गुरमत छूटस।

ना पाई। प्रभाती महला पहला, एक तोर बख्श लए गुरपूरे, सच्ची बणत बनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख बिसरे पत पाई। झूठी दुर्मत की चतुराई, बिन सतबार न लागे काई। रहाओ मनमुख को दुख दर्द व्यापस, मनमुख दुख ना जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल लए सरनाई। मनमुख ते अब भगत ना होवस, हौ मैं पचै दीवानी। इह मनुआ खिन ऊब पयाली, जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग भया, तिपत नहीं बिन सतगुर पाई। सहजै सहज मिलै सुख पाई, दरगाह पैंदा जाई। दरगाह दाना बिना एक आपे, निर्मल गुर की बाणी। आपे सुरता सच विचारस, आपे बूझै पद निर्वाणी। जल तरंग अग्नि पवन फुन, त्रै मिल जगते उपाया। ऐसा बल शल तिनको दिया, हुक्मी ठाक रहाया। कैसे जन विरले जागे अंदर,

तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

ज्ञान रतन प्रगट होए, मनमुख मूल ना जाननी, मानस हर मंदर ना होए, हर मंदर हर जियो साजिया।

मन लोहट है मोहया दूजै पाई पारस भेटिया कंचन भया कीमत कही ना जाई हर मंदर मह हर वसै सर्ब निरंतर सोई नानक गुरमुख वणजिए सच्चा सौदा होई प्रभाती महला तीजा पै पाए जागे से जन जागरण करह हौ मैं मैल उतार सदा जाग है कार अपना राख है पंच तस्कर काढ़ मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार्ग हर पाई है मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरमुख सहज तुन उपजै दुख हो मैं विचों जाए हर नामा हर मन वसै सहजे हर गुण गाई गुरमती मुख सोहणी हर राखिया उर तार ऐतै उतै सुख घणा जप हर हर उतरे पार हो मैं विच जागरण ना होवई

ऐटिक एकसकी सिर छाहा वद पुरख स्वामी रहाउ छल नागन स्यों मेरे टूटन होई गुर कहया एह झूठी तोही मुख मीठी खाई कौराय अमृत नाम मन रहया अघाय लोभ मोह स्यों गई विखोट गुर कृपाल मोहि कीनी छोट एह ठगवारी बहुत कर गाली हम गुर राख लिए कृपाली काम क्रोध स्यों ठाट न बनिया गुर उपदेश मोहे कानी सुनिया जह देखो तह महा चंडाल राख लिए अपने गुर गोपाल दस नारी मैं करी दुहागन गुर कहया ए रसै बिखागन इन संबंधी रसातल जाई हम गुर राखे हर लिबलाय अहम एव स्यों मसलत छोड़ी गुर कहया एह मूरख होड़ी एह नी कार कर कहीं ना पाई हम गुर राख लिए लिवलाय इन लोगन स्यों हम भये बैराई एक ग्रह मह दोए ना खटाई आए प्रभ पह अंचर लाग करहुत पावस प्रभ सरबाग।

सोए तिस बिन बीजो नाई कोए बैर बरोध शेडे पै परमा प्रभ पुन आत्मै कीने धर्मा महा तरंग ते कांडै लागा जन्म जन्म का टूटा गांडा जप तप संयम नाम संभालिया अपने ठाकुर नदर निहालिया मंगल सुख कल्याण तथाई जह सेवक गोपाल गुसाई प्रभ सो प्रसाद।

माहे निदाना कहां उड़ीसे मजन किया क्या मसीत सिर नाए दिल में कपट निवाज गुजारे क्या हज का पै जाए एते औरत मर्दा साजे ए सब रूप तुम्हारे कबीर पुंगरा राम अल्लाह का सब गुर पीर।

करना प्रभाति अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे लोगा परम ना भूलो पाई खालक खलक खलक मह खालक पूर रहो सब ठाई रहाओ माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुंभारे सब मह सच्चा एको सोई तिसका किया सब कछ होई हुक्म पछाने सो एको जाने बंदा कहिए सोई अल्लह अलख न जाई लखिया गुर गुड़ दीना मीठा कह कबीर मेरी शंका नासी सर्ब निरंजन दीठा प्रभाती बेद कतेब कहो मत झूठा।

विनाशी माटी को बिस्मिल किया, ज्योत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया, क्या उजू पाक किया मुंह धोया, क्या मसीत सिर लाया, जो दिन में कपट नवाज गुजार हो, क्या हज का बह जाया, तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मर्म ना जानिया, कह कबीर पिस्त ते चूका, दोजक स्यो मन मानिया, प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत आद समाई, सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पहाई, ठाढ़ा ब्रह्मा निगम बीचार, अलख ना लखिया जाई, रहाओ तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझै बूझनहारा, पंचे शब्द अनाहद बाजी, संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बाणी।

आपे निर्भउ समत बीचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ताकी अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आदि जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया सर्व निरंतर राम रहिया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजय शब्द बाजय आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन भीखू बन भीखे बास ते सुख लागेला सर्वे आद परमलाद काष्ट चंदन पहला तुम चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन पहला तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया काट काट अंतर

भज जन्म सिरात है, कहो कहां बार बार समझत नह क्यों गुवार, बिनसत नह लगे बार पूरे समगात है। रहाउ सगल भरम डार दे, गोविंद।

बिखियन स्यों अत लुभान मत नाहिन फेरी रहाउ मानस को जन्म लीन सिमरन नह निमुख कीन दारा सुख पयो दीन पगहों परी बेरी नानक जा

सहस कृति महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समाधं मुख झूठ बेभूखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दोय धोती बस्तर कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै निःपलं तस्य जन्म स्य जावद ब्रह्म न बिन्दते सागरं संसार स्य गुर प्रसादी तरह के करण कारण समर्थ है कहो नानक विचार कारण करते वास है जिन काल रखी तार जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है क्षत्रि शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं

कर्ता पुरुख निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरप्रसाद कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनोद सुतह कतंच प्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कटंबयत।

कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं क्रोत रहंत संग भगवान सिमरन नानक लभदेह अचुत तन है किरगंत मात पिता स्नेह त्रिग स्नेह प्रात बांध वह त्रिग स्नेह बंता बलास सुत है त्रिग स्नेह गिरहार्थ कह साध संग स्नेह सत्यं सुखियं बसंत नानक है मिथ्यंत देहं खिनंत बलनं बरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा अथित्य पवनं गनंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ्य देहं तात आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रक्त चरमण है नमंता द्वारं पीत रहतं बाय रूपं असथंबन है गोविंद नामं नह सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्त्रिं दुर्लभ दे उदरंत साध सरन नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत त्वं अच्युत गुणज्ञं।

विलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं शरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं धर्म लखियण नानक जेहे सो परसन माध वह मृत मोहं अल्प बुद्धिहं अरचंत बनता बनोद साहं जौवन बह क्रम कनक कुंडल विचित्र मंदर सोभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापतं हे अच्युत शरण संत नानक ओ भगवानी नमः जन्मंता मरणं हर।

वर्तंत बनासन गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिंग नानक भगवंत भजनासन किरपंत हरियं मत तत् ज्ञान बख्शी देह बुदा कुशल थान बसे अंतरिक्षं त्याग मानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं रहंत जन्मं हर दर्श लीना बाजंत नानक शब्द बीना कहंत बेता गुणंत गुनिया सुनंत बाला बहु विद प्रकारा दृढ़ंत सो विद्या हर हर कृपाला।

पीवतं संतना तृप्यते सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत

मिल साध संग है नानक से प्राणी सुख बासन है सेना साध समूह सूर अजितं सन्नाहंग तन निमरता आवद है गुण गोबिंद रमण ओट गुर शब्द कर चरमण है अरुणते अश्वरथ नाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पांच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नच विद्या निदान निगमं नच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नच राग रतन

जत कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकह सर्वत्र रमण गोबिंद है नानक लेप शेप ना लिप्यते विख्या पयंत अमृतं दृष्टां सखा सुवजन है दुखियं पयंत सुखियं तय पीतंगता निर्भय है थान बिहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममंग शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव्य ममंग कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते।

नानक शीतलं साध स्वजन है मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरन है दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है उपदेशं सम मित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी पर निंदा नह सरूत श्रवणं आप त्याग सगल रेणु कह खट लखियन पूर्णं पुरख है नानक नाम साध स्वजन है अजापो गंत कांड मूलं बसंते समीप केह रह ततरगते संसार है नानक सोग हर खंग व्यापते छलं छिद्रं कोट बिघ्नं अपराधं किल बिखमलं परम मोहं मान अपमानं।

रमण सील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रभु पूर्ण है, निराश आस करण सगल अर्थ आलय, गुण निधान सिम

इद परमं साकत पिसनं तां सुर्जनः अस्थितं सोगहर्खं पै खीनं तां निर्पवः पै अत्मियं महानगरवासं धर्म लख्यन प्रभमय साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं के अजित सूर संग्रामं हत बलना बहुमर्दनः गण गंधर्व देव मनुखियं पास पंखी बमोहनः

परमावण है। चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारण है। अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावण है। तब भय विमुंचित साध संगम ओट नानक नारायण है। हे काल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपर्जते। विखियंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मर्कट है। अनक शासन ताड़ंत जमदूत है। तब संगे अदमंग नर है। दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रख्या करोत। हे लोबा लंपट संग सिर मोर है। अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारं। अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधो नच मात पिता तब लज्जिया। अकर्णं क्रोध अखाद्य है खाद्यं असाज्यं साज समझ्य। त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञा।

दृढ़ंत अनक माया बस्तीर नह आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है ब्रह्म प्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है वैद्यम पार ब्रह्म परमेश्वर अराध नानक हर हर हरे।

दुत्त रहै, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख बनासन है, भगत वच्छल अनाथ नाथी, शरण नानक पुरख अचुत है, जेन कला धार्यो अकाशं, बैसंतरं काष्ट बेष्टं, जेन कला सस सूर नक्षत्र ज्योतियं, सासं शरीर धारणं, जेन कला मात गर्भ प्रतपालं, नह सिदंत जठर रोगण है, तेन कला अस्तंभं सरोवरं, नानक नह सिजंत तरंग तोयण है, गुसाई गृष्ट रूपेण, सिमरणं सर्वत्र जीवन है, लब्धहं संत संगेण, नानक श्वास मार्ग हर भगतन है, मस्कं पगनंत सैलं, कर्दमं तरंत पपील कह, सागरं लगंत पिंगं, तम प्रकाश अंध कह, साध संगेन सिमरंत गोविंद, शरण नानक हर हर हरि, तिलकहीनं जथा बिपरा, अमरहीनं जथा

नं संत स्वजन है आचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रति सिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासती रचंत पुरख है कटंब लीला अनित आसा बिख्या बनोद परमहंत परमहंत बहु जन्म हारियो शरण नानक करुणामय हे देहबे हे रसगे मदर प्रिय त्वं सात हतं परम बादं वर्त इथ है सुध असरण है गोविंद दामोदर माधवी गर्भंत नारी मधुन मतं बलवंत बलात् कारण है चरण कमल नह पजंत त्रिण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन त्वं तने नानक अनक बार नमो नमः त्रिणं ता मेरं सहकं ता हरियं बूडंग ता तरियं ऊनंग ता परियं अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं ब्राह्मण है संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्म रतं संसार गहंते नर नानक निहपल है पर दर्भ हिरण बहु विघ्न करण उच्चरण सर्व जी कह लो लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म कर

कर्पूर पोहप सुगंधा परस मनुखे देहं मलीनं मज्झा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्भेण अज्ञान

समंतर साध बचना कोट दुख बनासन है हर चरण कमल त्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमन गोबिंद है नानक लब्धिहंग बड भागण है हर लब्धो मित्र सुमितो विदारण कदे ना चित्तो जा का अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो आप जसंग मटंत सत पुत्र है सिमत बिहर दै गुरमंत्रण है प्रीतम भगवान अच्युत।

कसो वरंगण है। रोग सोग बियोगं नानक सुख ना सुपन है। हुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती। उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूपावती। उस्तत कहन न जाए मुख तोहारिया। मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा। हरपी सब शिंगार एहो जियो सब देवा। आस प्यासी सेज सो कंत बछाई है। हर हां मस्तक होवे भाग तां साजन पाई है। सखी काजल हार तंबोल सबे किस साजिया। सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया। जे घर आवे कंत तां सब किछ पाई है। हर हां कंते बाज शिंगार सब बिरथा जाई है। जिस घर वसिया कंत सा वड भागणे। तिस बनिया हब शिंगार साई सुहागणे। हों सुती होए अचिंत मन आस पुराइया। हर हां जा घर आया कंत तां सब किछ पाइया। आसा इती आस के आस पुराइया। सतगुर भये दयाल तां पूरा पाइया। मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया। हरे हां सतगुर भये दयाल तां मन ठहराया। कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया।

हर का नाम सतगुर ते पाया मेरा हाथ पदम आंगन सुख बासना सखी मोरे कंठ रतन पेख दुख नासना बासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हां रिद सिद्ध नव निद बस है जिस सदा कर पार प्रिय रावण जाहे सेरी तां लाजी है नित प्रत हिरह पर दर्ब छिदर कत ढाकी है हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते पए पनीत पार ब्रह्म बीचारई ऊपर बने आकाश तले तर सोहती दह दिस चमकै बीजल मुख को जोहती खोजत फिरो उपदेश पियो कत पाइए हर हां जे मस्तक होवे भाग तां दर्श समाइए दिठे सबे थाम नहीं तुद जेहया बदहो पुरख बधातै तां तू सोहया वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर हर हां नानक कसमल जाहे नाया रामदास सार चात्रक चित सुचित सो साजन चाहिए जिस संग लागे प्राण तिसे कहो आहिए बन बन फिरते उदास बूंद जल कारने हर हां त्यों हर जन मांगे नाम नानक बलिहार ने मित का चित अनूप मरम

है सच तना, सुपने ऊ भी पई गहयो की ना अंचला, सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला।

सब जावै औखद नाम अपार अमोलक पीजई मिल मिल खावे संत सगल कौ दीजई जिसे प्राप्त हुए तिसे ही पावनी हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावनी वैदा संदा संग इकट्ठा होया औखद आए रास विच आप खलोया जो जो ओना कर्म सुकर्म होए पसरे।

प्रेम की दम के हो होती साट रावण होते सो रंक नह जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच न राई होत चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांधे कमल मह भवर रहे लपटाए जप तप संयम हरख सुख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म ना जाने मरत हित संसार प्रेम पिरम ना बेदेओ उर्जेओ मिथ व्यवहार कब दब जब जारी है बिसरत प्रेम बेहाल।

चरण चितव मन माहि, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहु जाहि। लख घाटी ऊंचो घनो, चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी, करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम, चंदर बदन चित चार, मूसन मगन मरम सिंह, खंड खंड कर हार। मगन भयो प्रिय प्रेम सिंह, सूद न सिमरत अंग, प्रगट भयो सब।

हम तज भलो सब कोए जिने ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए कबीर आई।

आई गुरु वो साकत बापरे जो हाथ हाथ बिकाई कबीर साकत ऐसा है जैसे

पवन चपोलन हार संतोह माखन खाया शास पिय संसार कबीर माया डोलनी पवन वह हे अवतार जिन बुलोया।

कह यार हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार कबीर हाड जरे ज्यो ला करी केस जरे ज्यो कास इहो जग जरता देख कै भयो कबीर उदास कबीर गर्ब ना कीजिए चामल पेटे हाड है वरी ऊपर शत।

कोय सांझा करे कबीर स्यों हर संग बणज करे कबीर एह चेतावनी मत सहसा रह जाय पाछे भोग जो भोगवे तिनको गुड़ लै खाय कबीर मैं जान्यो पढ़बो पलो पढ़बे स्यों पल जोग भगत ना छाडो।

फैसलों की कुकर भली साकत की बुरी माए। ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाए। कबीर हर

क्या दर्पना जब हाथ सुधोरा लीन, कबीर रस को गांडो चूसिया गुण को मरिया रोए, अवगुण यारे मानस है भलो ना कह है कोय, कबीर गागर जल भरी आज काल जय है फूट, गुर जो ना चेत है अपनो अदमहा।

लोग सब आया चल गयो, हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो, उड़ उड़ दह दिस जाए, जो जैसी संगत मिले।

रहम हुए। चार पुरख दोए नार, कबीर देख देख जग ढूंढिया, कहूं ना पाया ठोर, जिन हर का नाम ना चेतेओ।

आए जिन हर का नाम ना चेतेओ बद है जन्मे आए कबीर आसा करिए राम की अवरै आस नरास नरक पर है ते मानई।

क्या करे जो राम ना करे सहाय। जेह जेह डाली पग धरो सोई मुर मुर जाय। कबीर अवरह को उपदेश ते मुख में।

पाप किए राखे तलै दुराए परगट भय निदान सब जब पूछे धर्म राय कबीर हर का सिमरन छाड़ के

आई सर्पन हुए कह अवतर जाए अपने खाई कबीर हर का सिमरन छाड़ के ओहो ईरा खै नार गद ही हुई कै अवतर पार सह मन चार कबीर चतराई अत कणी हर जप हृदय माए सूर्य।

कबीर सोई कुल भली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या भली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हो फिरे मांडल कंध चढ़ाए।

आए जोत बिना जगदीश की जगत अलंगे जाए। बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल हर का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजै कोय पाछे पाओ ना दीजिए आगे हुए सो होए। कबीर जग बांधे हो जे

रहूं हरख गुन गाय। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचरह कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया, बरख परे सरताल, चातरक ज्यों

रात जो नर बिसरे राम सिंह ना दिन मिले ना रात कबीर रह नायर बिशोरिया रहो रे संख मचूर देवल देवल ताहड़ी देस है उगवत सूर कबीर सूता क्या करह।

कारण सो भयो जो कीनो करतार किस बिन दूसर को नहीं एक सिर जनहार कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आम जाए पहुंचे खसम को।

स्वांग तार भूले पटका खाए। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजै सब संसार, इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार। कबीर कागज की ओभरी मस के कर्म कपाट, पाहन बोरी प्रथमी पंडित पाड़ी बाट।

सो जपया परवदगार कबीर कस्तूरी भया पवर पये सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गह गच परयो कटंब कै कांठे रह गयो राम आए परे धर्म राय के बीच है धूमा ताम कबीर साकत ते सूकर भला राखै आछा गांव ओ साकत बपरा मर गया कोई ना लै है नाम कबीर कौडी कौडी जोर कै।

बार बाहर कंचन बारहा भीतर परी पंगार कबीर रोड़ा हुए रहो बाट का ताजमान का अपमान ऐसा कोई दास हुए

नीच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराय ताते भली मधु करी संत संग गुण गाय कबीर पाटन ते उजर भला राम।

आए मान मुनि मुनिवर गले मान सब है को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया शब्द जो बाहया एक लागत ही भोए मिल गया परया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या कर है जो सिखा मह चूक अंधे एक ना लागे ज्यो बांस बजाइए फूक। कबीर है गै बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पतंत्र ना पुजै

हाथ जब ही पाई है पारखू तब ही रन की साठ कबीर काम परे हर सिमरी है ऐसा।

आलस मोहा सरवर भरा पी ना सके कोई नीर पाल बड़े तह पायो तू पर पर पियो कबीर कबीर पर बाते तारे खिसह।

असंत मने आगर कोई अंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी सिर जनहार की जाने नाही कोई कह जाने आपन तनी कह दास देवानी होए कबीर भली पई जो पौ परया दिसा गई सब भूल उरा

पास चोट सहारे शब्द की पास गुरु मैं दास कबीर मुन्ना मनारे क्या चढ़ है साई ना बहरा होए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए सेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए कबीर जाकी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जेहे सिमरत

तब हुई गो कौन हवाल, कबीर खूब खाना खीचरी, जा मह अमृत लोन, हेरा रोटी कार ने गला कता वह कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए, मिटै मोह तन ताप, हरख सोग दाजै नहीं, तब हरे आपह आप। कबीर राम कहन मैं भेद है, ता मह एक विचार, सोई राम सबै कह है, सोई कौतक हार। कबीर रामे राम कहो, कहबे माहे बबेक, एक अनेक कह मिल गया, एक समाना एक। कबीर जा कर साधना सेवी है, हर की सेवा नाए, ते कर मरहत सारखे, भूत बस है तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पावह ते पिंगल भया, मारिया सतगुर बान। कबीर सतगुर सूर में, बाहया बान जो एक, लागत ही पोए गिर परया, परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूम बेकार, बिन संगत इउ मानई, होए गई पाठशार। कबीर निर्मल बूंद आकाश।

आए। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलया खुदाई। साई मुझ सो लर पर तुझे किन फरमाई गाय। कबीर हज का

हुआ मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू कबीर।

अस कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोले जिस राखै सिर जनहार कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छड़ाए परा पूर्व ली भावनी प्रगट होई आए कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए महला पंजवा कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ ताए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छड़ाए महला पंजवा कबीर धरती साध की तस्कर बै सहगाए धरती भार ना

आए संगुक संगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे शी पोषाय लै।

कोठे मंडप हेत कर काहे मरहो सवार कारज साडे तीन हाथ कनी ता पौने चार कबीर जो मैं चितमो ना करे या मेरे चितवे होए अपना चितवे आ हर करे जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नान

वीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग छाया रूपी साद है, जिन तजया बाद विवाद कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत, कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत, पंखी चले दसावरी बिरखा सुफल फलंत, कबीर साधु संग प्राप्ति लिखया हुए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई ठाक ना अवकट घाट, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोसटे

लोहिन कर रहो ले साजन घट माहे सब रस खेलो पीसो किसी लखावो नाहे आठ जाम चौसठ करी तो निरखत रह जियो नीचे लोहिन क्यों करो सब घट देखो पियो सुन।

बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पच मुआ, चारों बेदोह माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, पाके से ती खेल। काची सरसों पेल कै, ना खाल पई ना तेल। टूंडत डोल है अंधगत, हर चीनत नाही संत। कह नामा क्यों पाई, बिन भगत हो भगवंत। हर सो हीरा छाड कै, करह आन की आस। ते नर दोजक जाहेंगे, सत पाख है रविदास। कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग। बैरागी बंधन करह ता को बड़ो अपाग। सलोक सेख फरीद के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जित दिहाड़ है धनवरी।

चलनी जिंदू को समझाए जिंद वहटी मरनवार ले जासी परनाए आप।

सौ नंडड़ा ता थोड़ा मान करी जे जाना लर सिजना पीदी पाई गंड तै जीवड़ मैं नाही को।

आए फरीदा शक्कर खंड नवात गुड़ माखियों मांझा दुध सबे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तो।

कंत सिंह अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागनी तुम क्यों रैण विहाय सोहरे ढोई ना लह पेय नाई थां फिर वातड़ी ना पुछई।

नाती तोती संभही सुती आए निचिंद फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी गई कथूरी गंद जो बन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए फरीदा कितनी जो बन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए फरीदा चिंत खटोला वान दुख बिरह बिछावन लीप यो हमारा जीवना।

चित तन बिरो ना उपजै सो तन जान मसान फरीदा ए विस गंदला तरियां खंड लिवाड़ एक राहिंदे रह गए एक राधी गए उजाड़ फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम लेखा रब मगेसिया तू आहू केरे कम फरीदा दर दरवा जय जाए कै क्यों दिठो कड़ियाल एहो न दोषा मारिए हम दोषा दा क्या हाल कड़िए कड़िए मारिए पहरी लह सजाए सोहेड़ा कड़ियाल ज्यों दुखी रहण विहाई।

मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मेत फरीदा मंडप माल ना लाए मरगस पानी चित धार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाए परांद दरवे सानू लोड़ी है रुखा दी जीरांद फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वीस गुनही।

वत कुवारी ना थी कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवह उड्डन संधी डंज हंस उडर कुदर पया लोक बडारन जाए गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाए चल चल गईया पंखिया जिन्नी वसाए तल फरीदा सर भरिया पी चलसी थके कवल अकल फरीदा इट सराने भोए सौन कीड़ा लड़े ओ मास केतड़िया जुग वापरे इकत पया पास फरीदा पन्नी कड़ी समन्नवी टुटी नागर लज अजराइल फरेसता कै घर नाथी अज फरीदा पन्नी कड़ी समन्नवी।

पंजे वक्त मसीत कोठ परिदा उजू साज सुबह निवाज गुजार जो सिर साई ना निवे सो सिर कप उतार जो सिर साई ना निवे

तै पासों उए लद गए तू अजय ना पतीण होहे। फरीदा मन मैदान कर टोए तिब्बे लाही अगे मूल ना आवसी दूजक संदी पाही। महला पंजवा फरीदा खालक खलक मह खलक वसै रब माहे। मंदा किसनों आखिया जा तिस बिन कोई नाहे। फरीदा जे देह नाला कपया जे गल कपह चुख पवन ना इती मामले सहा ना इती दुख। चबण चलन रतन से सुनियर बह गए हेड़े मुती ताहा से जानी चल गए। फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगई पल्ले सब किश पाए। फरीदा पंख परहोनी दुनी सुहावा बाग नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज। फरीदा रात कथूरी वंडी है सुत्या मिले ना पाओ जिन्ना नैन मिंदरावले तिन्ना मिलन को आओ। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग ऊचे चढ़ के देखिया ता घर करे हा अग। महला पंजवा फरीदा भूम रंगावली

सो सजन वीही एक टोनेंदी नालाहा तुखां ज्यों मालीही कारण तिना मां फिरे फरीदा एहो तन भौंकना नित नित दुखी है कौन कन्नी बुझे दे रहा कित्ती वगै पौन फरीदा रब खजूरी पक्कियां माखिया नहीं वहन जो जो वंजे दिहड़ा सो उमर हाथ पवन फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया तलिया कुंडह काग अजय सो रब ना बहुड़ो देख बंदे के भाग कागा क्रंग टंडोलिया सगला खाया मास ए दोए नैना मत शुहो फिर देखन की आस कागा चूंड ना पिंजरा बसै ता उडर जाहे जित पिंजरै मेरा सहो वसै मास ना तिदू खाहे फरीदा गोर नमाणी सड करे ने करया।

चल गई फरीदा लोकां आपो अपनी मैं अपनी पई आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख होए फरीदा जे तू मेरा होए रह सब जग तेरा होए कंदी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्ने तीर फरीदा कच्चे पांडे रखिए किचर ताई नीर फरीदा महल सखण रह गई वासा आया तल गोरां से निमाणिया।

आप ही धारण धारी कुदरत है देखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाने हां की बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निदानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीचे प्रभ तेरो थानं मन धन तेरो प्राणं एक है सूत है जहानं कवन उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलाखे अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दार

हर अकार अशल पूर्ण अविनाशी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को होहि कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहो थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पणिय दूसर आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिय अमृत हर को नाम लैक मन सब सो

अवधारण सौ चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहयो कत तौ मूर्त करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लो होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जनम कहां दुख पौ सिख्या संत नाम भज नानक राम रंग आत्म स्यों रौ रंच करेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देह सवार करी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता भाई अरबंदप बूजन की सब सूझ परी वर्तमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी

नानक काट भ्रम भरी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तां स्यों मोह बढ़ियो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत उंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना।

असव ना गज सिंघासन छिन मह त्यागत नाग सदारु सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहारु कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत विकार धू कर चारु मित्र ना पुत्र कलत्तर साजन साख उल्टत जात बिरख की शारु दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरु अगम अपारु श्री पतनाथ सरन नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारु प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सैन मीत सुत पाई।

सगल बिदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव संत मनीसर।

सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बिरंग करत भ्रम मोह कै कूप गुबार परियो है एता गब आकाश नाम आवत बिस्ता अस्त क्रिम उदर परियो है दह दिस ताए महा बिखिया को पर धन शीन अज्ञान हरियो है जोबन बीत जरा रोग ग्रसियो जम दूतन दन मृत मरियो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गरियो है प्रेम भगत पुदर है से नानक कर कृपा संत आप करियो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रवतारी साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अधारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्स मग पावक जरियो ना जात रहियो जन तूर लग नीर ना साकस बोर चल है हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह छिदे हर नाम खग उदम कर लागे बहु पांति विचरह अनक शास्त्र बहु खटुआ भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते सूखम देह बंद है बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत।

दुर्त निवारण शब्द सरी गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरी गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह जनकाद जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्ब कला गावह सनकाद साध सिधादिक मुन जन गावह अशल चला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आद जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावह जमदगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावह सर्वात्म जिन जानियो कब कल

खत दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावे गुण शेष सहस जिहवा रस आद अंत लिव लाग तुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बसियो निरवैर निरंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावह सनकाद आद जनकाद जुगह लग धन धन गुर धन जन्म सकियत भलो जग पाताल पुरी जयकार धुन तब जन कल बखाणियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै मानियो सत जोग तै मानियो छलियो बल बावन पायो त्रितै तै मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतारत कियो उग्र सैन कौ राज अपै भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबचल अटल

योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रब अवर ना जाने सुख देव प्रीख्यत गुण रवे गौतम रिख जस गायु कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायु गुण गावे है पायाल भगत नागाद पुयंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुक्म सब श्रेष्ठ सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मानियो गुण गावह नवनाथ धन गुर साच समायु मां धाता गुण रवे जेन चक्रवै कहायु गुण गावै बल राऊ।

सपत दीप मजार लहना जगतर गुर पर समरार दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बनासन लोभ मोह वस करन सरन जाचक प्रतपालन आत्मरत संग्रहण कहन अमृत काल ढालन सतगुरु काल सतगुर तिलक सत लागै सो पै तरै गुर जगत फिरन

खवै कस बिमल बीचार है, एह तत जानियो सर्वगत अलख बिडाणी। सहज भाए संचियो किरण अमृत कल बाणी, गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्राहज लयो। हर परस्यो कल समुल वै, जन दर्शन लहने पयो मन विसास पायो। गहर गहो हदरथ दियो गरल नास तन नठियो, हम्यो अंतरगत पियो रिद बेगास जागियो। अलख कल धरी जुगंतर सतगुर सहज समाद, रव्यो समान निरंतर उदारो चित दारद हरन। पिखंते कल मल त्रसन सद रंग सहज कल उचर, जस जंपो नहने रसन। नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाद।

नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे ऐ गुरु कै अठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगती बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुपाई दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाई सोइये महले तीजे के

मुखहु भगत उच्चरे अमर गुर इत रंग रातौ मस्तक निशान सच्चो कर्म काल जोड़ कर त्यायु परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायु चरण ता पर सके अथ चरण गुर अमल पवल रै हाथ ता पर सके अथ हाथ लगे है गुर अमर पै जी ता पर सके अथ जी गुर अमर पणिजै नैन ता पर सके अथ नैन गुर अमर पखिजै श्रवण ता पर सके अथ श्रवण गुर अमर सुनिजै सक्यात सो ही ओ जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित सक्यात सो सिर

जे मत गही जय देव, जे मत नामै सम्मानी, जे मत त्रिलोचन चित, भगत कंबीरह जानी, रुक मांगद करतूत, राम जंप हो नित पाई, अमरीक प्रहलाद, सरन गोबिंद गत पाई, तैं लोभ क्रोध तृष्णा तजे, सो मत जल जानी जुगत, गुरे अमरदास ने

गुर अमरदास परसीय सिद्ध साधक असासह। गुर अमरदास परसीय ध्यान लहिय पौ मुकह। गुर अमरदास परसीय अपौ लभै गौ चुकह। एक

सो दृढ़ नानक संग रहियो ताते अंगत लहना प्रगट तास चरण है लिव रहियो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवण बखाणो जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत ना जानो बोहिथो विधाते निर्मयो सब संगत कुल अधरन गुर अमर।